0: धीरे समाए चंगे चंगा कर मन ने मंदे मंदा होए आस के नया किए जले खबरते सोए महला दूजा
1: सलाम जवाब दो वह करे मुंडो कुत्ता जाए नानक दो वह कुड़िया थाए नकाई पाए और जित सेवे सुख पाई।

0: एक नहीं दांत आपस ते जो पाई है, एक नहीं दांत आपस ते जो पाई है, नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ कसम जाए, नानक सेवक ताड़ी है, जिसे ती खसम समाए, पौड़ी नानक अंत ना जापनी।

तूने चल करता सोई, तूने चल करता सोई, तूने चल करता सोई।

तुसी सुन रहे सी सुफिया ना कलाम 103.6 मेगावाट से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र है। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस दिन दी पंजाबी सेवा। साडे स्टूडियो कटे दे मुताबिक सवेर दे 6:30 हो रहे ने। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

0: तव्हां कंवर राम जी जे मिठड़े आवाज़ में नाले अलग जी ॿुधी रहिया हुयो। हाणे तव्हां ॿुधो तबसरो।
1: साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंटिसिस एंड PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवा सेट पेंशन एटॉमिक एनर्जी जे स्पेस केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चयो आहे त हिमालय अर्थव्यवस्था विकसित भारत 2047 जे विज़न ॾांहुं वधियल भारत जे भविष्य जे आर्थिक विकास में हिकु वॾो योगदान कंदड़ प्रोजेक्ट लाइ तयार आहे। मंत्री महोदय, इहो विचारु त भारत जे आर्थिक विकास जो अॻियो मरहलो उन्हनि क्षेत्रनि ऐं वसीलनि मां उभरंदो जेके कई ॾहाकनि खां पूरी तरह सां वापराया न थिया आहिनि, ख़ासि करे हिमालय इलाइक़नि में। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी पालमपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रोग्राम के संबोधित करें डॉक्टर

चेतन सिंह चैन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में हिमालय क्षेत्र में केंद्रीय वैज्ञानिक कौशन के बेमिसाल तेजी मिली है। यो अरोमा मिशन ए फ्लोरिकल्चर मिशन जन प्रोग्राम के जरिए थो है जेके हिमालय राज्य ए केंद्र शासित प्रदेश में हारिन महिलाओं सजाग जवान स्टार्टअप्स ए कारोबार रोजगार ज नवा मौका पैदा कर रो है। मंत्री बहादुर याद तो इन संस्थान जो ट्यूलिप जो गुल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रस्म के दौरान प्रधानमंत्री पारा कयल अर्प जो एक हिस्सो हो। डॉ जितेन सिंह संस्थान जे मुख्तलिफ जुदा जुदा विभाग के दौरों कर CSIR IHBT पारा हलाय विंद अलग अलग हिमाली टेक्नोलॉजी मिशन से जुड़ियल वैज्ञानिक खोजकार हारियन स्टार्टअप्स ए कारोबार से गाल बोल कई। इन संस्थान हिमालय के जैविक वसीलन के दवायन तंदुरुस्ती न्यूट्रालिस्टिक्स कॉस्मेटिक्स गुलन की खेती एग्री बायोटेक्नोलॉजी जन क्षेत्र लाए व्यापारिक तौर पर फायदेमंद उत्पाद ए टेक्नोलॉजी में तब्दील करना एक अहम किरदार निभाए रो है। प्रोग्राम में CSIR के डायरेक्टर जनरल एंड DSIR के सेक्रेटरी डॉक्टर एन कैलिट सेल्वी CSIR IHBT जा सीनियर साइंटिस्ट ए अफसर ए इन सवायत संयत अकादमी आबादकार खोज संस्थान जा नुमाइंदा शामिल थिया। CSIR IHBT के एक अनोखो वैज्ञानिक इदारो चंदे जो हिमालयी विविधता रिवायती जान ए व्यापारिक इजाद जी बहुआयामी रूपन के पान में गाड़े तो। डॉक्टर जितेन सिंह इदारो हिमालयी जै संस्थान जे टिकाऊ इस्तेमाल लाए देश जी अगवान केंद्रीय हिको बनजी उभरो है। इदारे जो कम विभिन्न क्षेत्र में फैलल है जिनमें एग्रो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पर्यावरण विभाग पोषण टेक्नोलॉजी फाइटोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मिटिक्स टेक्नोलॉजी शामिल है। अरोमा मिशन की कामयाबी के हवाले डींदे मंत्री चयो तो हिमाचल प्रदेश खुशबूदार जंगली गेंदे जो तेल जो मुल्क जो अगवान उत्पादक बनजी उभरियो है जैसा खेती हारन ए कारखानदार सुठी कमाई थी आई। इंस्टीट्यूट कई सूबन ए केंद्र शासित प्रदेश में खुशबूदार फसल की खेती खी वाधायो है जैसा गल हिमालय की हालत के मुताबिक लड़ंदर ए चमू माइल्स जीव सुधरू भी तैयार कई वही है। फ्लोरोकल्चर मिशन के असर के उजागर कंदे डॉ जितेन सिंह चैन CSIR IHBT हिमालय खेतन में गुलन की खेती खे रोजगार में कृषि पर्यटन जो एक अहम जरियो बनाने में मदद कई है। यह भी चाहो हिमाचल प्रदेश जे ट्यूलिप गार्डन की कोशिश प्रदेश के ट्यूलिप गार्डन की कोशिश जो जिक्र कर जैसे मकानी खेती हारन पारा पोखल बलबस सा तैयार किया है जैन साल एक डाक 5 लाख का सलाइन के पासे आकर्षित कर यो भी चाहो इंस्टीट्यूट तरफा सपोर्ट कल गुलन की खेती जो सरगर्मियों हिमाचल प्रदेश लद्दाख उत्तराखंड पंजाब ए हरियाणा के हजारी खेत हारन फायदो पहुंचाए रही है। मंत्री आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत हिम केसर दालचीनी ए मार्क फ्रूट की खेती जन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन निशान में मंत्री आत्मनिर्भर भारत डिवीजन के तहत हिम केसर दालचीनी ए मार्क फ्रूट की खेती जरिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन निशान में इंस्टीट्यूट के योगदान जो भी जिक्र किया। लाहौर में स्पीति के ऊंचे इलाकों में हिम में कामयाबी से गुल बीजन जो उत्पादक थे से भारत में इन फसल की मकानी खेती लाए न्यू राय खुली गयी है। डॉ जितेन सिंह चौ तो CSIR IHBT पोषण अभियान के तहत कुपोषित मारन लाए ताकतवर पोषण प्रोडक्ट ए खराब जीवन शैली से थियण वाली बीमारियों लाए वैज्ञानिक रूप से जांच परखे

सम्मेलन तैयार करे पोषण ए सेहत संभाल जी कोशिश में भी वो योगदान दे रही है। खेती बाड़ी ए जीव विविधता मैनेजमेंट में ड्रिप टेक्नोलॉजी के वधा गढ़ किरदार खे रेखांकित करे मंत्री इंस्टीट्यूट फसलन में सुधार बीमारियों की पेशी नगोई जीव विविधता के रिसर्च लाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जीनो मिक्स एंड ड्रोन आधारित प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रो है। मंत्री इंस्टीट्यूट तरफा मौसम के बदलाव से मुकाबलो कंदर तौर तरीके कचरे का कमाई वाली टेक्नोलॉजी ग्रीन केमिस्ट्री बायोप्लास्टिक्स जीव विविधता की संभार ए हिमालयी वसीलू जे टिकाऊ इस्तेमाल जे कयल कदम जो भी जिक कयो। डॉक्टर जितिन चयो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगुवाई में वैज्ञानिक संस्थाओं विज्ञान इनोवेशन ए उद्यमिता के ग्रामीण विकास ए आर्थिक सशक्तिकरण का गठजोड़े जमीनी स्तर ते बदलाव जो चरियो बढ़ज्य मन रही आई वैज्ञानिक खेती हारण उद्योग ए स्टार्टअप विच में वधिक तालमेल जी अपील करने राज्य मंत्री चयनित हिमालय क्षेत्र ने बेइंतहान छुपल ताकत है जैमे भारत जी मुस्तकबिल जी बायो इकोनॉमिक ए टिकाऊ विकास की यात्रा में वडा योगदान देने की सहूलियत

0: Vidite.
1: Hina, आज जो मेरे सजो पगर जी वियो आए तो मैं घबराए जी छो पे गालायो सुख त आए ने
0: घबराए जेरी गाल आए वरी सेण माश कोठायो आए शाम जो 5 बजे कुछ गाय बोल करण लाए
1: असा त संदन सब मर्जी रखी आए मिस्री घोटे ता घर में वठंदा हन हेडो वडो हाल अथन पर पेंजे खर्च बचाए ला असा के खर्चन में विदो अथन रिंग सेरेमनी हाल में करयो भले कुआरे पे पे कुछ जन मुखे पैर का ना ठीक न था लगन तमा चाय तो पियो
0: मुखे तो मूंज पे दे सोनू अजे तो सांस का सलाह करियो
1: तमा मुंजो चोता असा जी सोनू तो हिम्मत वाली है समझो आए
2: छो डैडी तमा ठीक ना आयो छा तमारो चेहरो ये पीलो पीलो पियो लगे
1: सच डैडी तवाजी पेशानी तो पगर में शलती पई आए छा गाल आए डैडी
0: ए पुटा मां ठीक आया पुटा तू कार छपला दे है ना
1: ना डैडी मुझे ऑफिस से कलीग चयो तो सुमरड़ी कार्ड छपाने ला वेंदो बिल्लियन ने छपाए दिंदो इन टेंशन में वाचा विनो तो ये पी जो फोन आयो चई तो 5 बजे आचो तो गाल बोल कर खबर ना आए तो वरी कहो फटको विझंदा बाकी केड़ी गाल करें अथन सब गाली तो संदन मर्जी मुजब तय थी है न फोन ते पुछो तो कार्ड छुपाया तो न तुझे डैडी के इन गाल ते घबराहट वठी वई आए दिस त अन्या पे तो पगड़ निकरेन डैडी मुखे तो अजब तो लगे तो तुम घबराए जो छोटा वो अल्लाह त ना हैन
0: अल्लाह त ना हैन पुत्र पर छोकरे वाला त हैन कि ते पिछाड़ी जो असा दे वित का बाहर घुर करे असा के सोनो न घुटे हां
1: तवां समझो था त मां तवां के गुड्डन दिनस तरी चयऊं त जे को पुजे वसो दिजो असा के छोकरी पेजे पसंदी जी मिली आए वरी रिंग सेरेमनी ए मिस्री हाल में खपे तदे मु तवां के मने कई हुई ए चयो हो त उनन का डिजी छोता उनन जी हर फरमाइश पूरी कंदा त वतो
2: तू उनन जे पसंदी जी छो न लगनी है
1: सब गाल में विनोद खान सर साईं
2: पेजे पुजंदी आए दाजो दिजो इन करे चाहे उनऊ त चंगो खासो कमाए थी सोडा जो भी सुठो डाइंदी
1: न सिर्फ ये सब गाली सोचे माइटी खुशी सा कयऊ लेकिन मम्मी ए डैडी के सीधा सवाटा सादा सुदा इंसान समझी फिर फासाए जी बेमानी भी उनन में हुई न त कच्ची मिस्री खा पो फरमाइश जो शुरू थे ना
2: सच्चा है डैडी जदे फरमाइश शुरू थियो तदे तवा के सोनो चयो हो त डैडी पक्के इरादे सा नाकार करयो संदन अग्या एक दफो झुकया हमेशा झुकना ही रहंदा पर तवा न मनो
1: चलो चलो बड़ा जल्दी करे छोकरियो मानी गरम करे आई है चाय भी तैयार अथव जल्दी करो जी 5 बजे हली पहुंचो कोने को जरूर 5 बजे पहुंचाने जो अनु तू विनोद जी डैडी के फोन करे चो तो हन वक्त असा वट के मेहमान अची वया हैं इन करे 7:30 बजे मम्मी डैडी पहुंची वेंदा
2: ठीक आ मां फोन करे थी छड्या
1: दिस मुंजो नालो न वठ जे न त अज जी अपॉइंटमेंट फेराए फोन ते कुछ गाल बोल करे मामलो गोल मोल करे छदीदा 7:30 बजे तई विनोद भी अची वेंदो पुट सोनू अरे वक्त ते जोश का कम न वटबो आए शादी सुख सा थी वने पो केरी फरमाइश कंदा भला हेरो कमाओ पुट ता कडी देऊ
2: मम्मी तू डाडी सादी है दिजणी आई अजु कल दिसी ता बैठी शादी सुख सा थे थी तब पोए घणे दुफेड़ा ता पवन इन करे घणाई छोकरियो घुट जी खत्म थी वेन भला छोकरन या पी छोकरन जे माइटन अग्या ई ता झुकन जो असल अल्लाह जे अग्या भी ना झुकना होला
0: ये ये ये दिस बेन जी पोए लगे बाबा धीरे जी शादी जी जवाबदारी जेड़ी तेरी गाल कोने पुत्र दादो दुखियो कमा
2: अरे डैडी दुखियो कम ता छोकरी ने माइटन कयो आए उए ये बेचारा थी ना देखारन या जवाबदारी विचा छोकरी जे माइटन जी झुकेल तस्वीर पेश न कन त हन नए जमाने में जदे छोकरियों छोकरन का हर फील्ड में सरस है न हर कदम अगते है तदे तो बई तरफ सागे वन गुर्जन न छोकरे वारा तोरे छोकरी वारा
1: हाने बहस बंद करो बिरादरी समाज में उथणो वणो तो पवे ही तो जे कदे समाज में को नुक्स हो जे तो उन नुक्स के कढण गुर्जे जे कदे समाज में देती लेती है घोटे ता ऊंचा ए कुआरे ता हेठियो पड़ एड़ी नुगरी बीमारी फैल जन तो उन बीमारी के रोकण जरूरी आए फकत छोकरी ही सजाग थी बीमारी जो खात्मे करे सकनी
2: छाकाण त इन बीमारी जो शिकार थियन भी

0: एडो उतावल छो थियो आही? तू त सुनीता खे रोज गॾजंदो हूंदे।
1: न मम्मी, गुज़र पंजनि ॾींहनि खां सुनीता सां मुलाकात ई कान थी आहे। ऑफिस मां सिधो ई वेंदी आहे परचेसिंग करण। डैडी
2: चओ पुटु।
1: डैडी तव्हां ॻाल्हि त कंदो था, पर सोचे सम्झी करिजो, किथे किथे सुनीता बखेड़ो न करे छॾे।
2: अड़े पुट, सुनीता थोरी अचणी आहे, हिन जा मम्मी ऐं डैडी ईंदा, हिननि सां मां ॻाल्हि अहिड़ी तरतीब सां कढंदुसि त तूं वेठो ॾिसजांइ।
1: उहो त ठीकु आहे डैडी, पर तव्हां अजाय होटल में रिसेप्शन रखण जो किटरा शुरू कयो। ॾिसो न, तव्हांजी मर्ज़ी रखी, हुननि साम्हूं वारनि मिसरी या रिंग सेरेमनी हाल में रखी, मथां 100 माण्हुनि जे डिनर जो बंदोबस्त बि कयाऊं, तंहिंखां सवाइ शादी लाइ हाल बि हुननि ई बुक करायो आहे ऐं डिनर जो बंदोबस्त बि कयो अथऊं। तव्हां डैडी अजायो कूड़े शान विचां अॻियनि खे 30,000 जो ख़र्चु था करायो।
2: हू मञींदा ॾुखियो? अड़े वाह जो मञींदा, हाणे सभु ॻाल्हियूं पकियूं थी रहियूं आहिनि, हाणे को पुठे ते मोटंदा छा?
1: तव्हां डैडी सुनीता खे कोन सुञाणो, हूअ पंहिंजे सौमान सदिके मुता तुखण खां कीअं हटकंदी। मां त अञा चवां वठो, हेॾा होॾा जूं ॻाल्हियूं करे हीअ ॻाल्हि हिते ई पूरी करे छॾियो।
2: ॿुध विनोद, हिकु त सुनीता अचणी कोन्हे, ॿियो त मां गुलाब राय खे चङी तरह सुञाणा।
1: उहो ठीकु
2: आहे, ऐं वरी अॼु ॾींहं ताईं हू असांजी हर का ॻाल्हि मञींदो आयो आहे। हींअर पक पकाणी बि थी वई आहे, आख़िर त असीं घोटे था आहियूं, घोटे था।
1: ओके, जीअं ठीकु लॻे तव्हांखे।
2: केरु? सेठे गुलाब राय। अचो साईं, अचो अचो अचो, भाभी अचो, सोन पुट अच, तूं बि अचु धीउ अच।
3: साईं राम राम।
2: बिल्कुल साईं,
3: ॿार बचा सभु ठीकु आहिनि?
2: बिल्कुलु
3: साईं, ठीकु आहे न?
2: हा साईं बिल्कुलु।
3: हुकुम कयो साईं, अॼु ख़ासि यादि कयो अथव, कहिड़ी फरमाइश आहे साईं?
2: सेठ, फरमाइश वारी कहिड़ी आहे? ॾिसो न गुलाब राय, हिकिड़ो ई पुटु आहे ऐं थोरी मन में ख़्वाहिश थी त रिसेप्शन रखिजे ऐं वरी साहिबु होटल में मिठी आहे। मुंहिंजे ॿिन्हिनि किकिन जी बि इहा ई ख़्वाहिश आहे।
0: सभिनी साहेड़ियुनि जे पुटनि धीअरनि जूं शादियूं खाधियूं अथमि 5-स्टार होटलुनि में, सो सोचियुमि त मां बि सिकी लॾो थी पढ़ण आहियां त होटल में रिसेप्शन रखूं। तॾहिं चयो मां न त अञा वक़्तु वियो न आहे, ॻाल्हि करे वञायूं। तमामु सुठी ख़्वाहिश आहे, फंटेस्टिक। सची ॻाल्हि आहे ममा, तव्हीं 5-स्टार होटलुनि में रिसेप्शन खाई अचो ऐं पंहिंजे लाडले जी शादी हाल में कयो, इहो को सुए?
1: अरे सुनीता, तूं थी चवी, मूं त समुझो त तूं इहा ॻाल्हि ॿुधी बमबाज़ी शुरू कंदी आहे।
2: सुनीता सियाणी निंगर आहे।
0: तव्हां मूंखे बराबरि सुञातो आहे मिस्टर करमचंद, इन करे मुंहिंजो सियाणप भरियो सुझाव बि ॿुधी छॾियो। जॾहिं तव्हांजी हीअ ख़्वाहिश आहे, तव्हांजे पत्नीअ जी बि इहा सद आहे त 5-स्टार होटल में रिसेप्शन भली रखो, ख़र्च को घणो कोन ईंदो। 40,000 ख़र्चण पंहिंजे लाडले जी शादीअ में बिल्कुलु स्वाभाविक ऐं मामूली आहिनि।
2: तो मूंखे न समुझो धीउ।
0: असांजो इहो मतिलबु न आहे धीउ, मूं अव्हां जो मतिलबु चङी तरह समुझो आहे। सोनू पुट, सुबुह खां कमु वठि, सब्र ऐं हेठाईअ खां तव्हां कमु वरितो आहे, इन करे मिठी भाई ऐं दीवान करमचंद तव्हांखे सोड़ो घुटण था चाहिनि। तव्हांजो मतिलबु समुझण को ॾुखियो कोन्हे मिस्टर करमचंद, अव्हां समुझो हूंदो त बाक़ी 15 ॾींहं आहिनि, सभु तयारियूं थी चुकियूं आहिनि, कार्ड बि छपजण ते आहिनि, सो तव्हीं जेको चवंदा सो बिना चूचा जे मञींदासीं, छाकाणि त असीं कुंवारे त आहियूं न, असांजी कुंवारी थींदी। लेकिन मां उन्हनि छोकिरियुनि मां न आहियां जे डिॼनि ऐं झुकनि। तव्हांजी घणे में घणी कुंवारी थिए इन ॻाल्हि ते मां ख़ासि ध्यानु ॾींदसि। तव्हीं घोटे त आहियो, अला त न आहियो? सुनीता, तूं त अॼु नए रूप में ज़ाहिर थी आहीं, न मरम न शरम न वरी नंढ वॾाईअ जो लिहाज़। तव्हां मरम शरम ऐं लिहाज़ जी था ॻाल्हि कयो, जिन खे एतिरो लिहाज़ कोन थो रहे त मिडिल क्लास जे पीउ खे शादीअ जे वेझे पवण ते हुन हिन नमूने सोड़ो घुटियो था।
4: सोड़ो कीअं था घुटियूं? अञा 15 ॾींहं पिया आहिनि, असांखे बि पंहिंजे शान खे ॾिसणो आहे।
0: त पोइ इहे ॻाल्हियूं शुरूअ में कयो हा न, त असीं रिश्तो न वेंदो आहे। सोड़ो नथा घुटियो त छा था कयो? तव्हांजे शान रखण लाइ छा मुंहिंजो डैडी पंहिंजी जाइ विकणे? तव्हांजी ख़्वाहिश पूरी करण लाइ कर्ज़ खणे? तव्हां जेकॾहिं पंहिंजी ख़्वाहिश पंहिंजे ख़र्चे ते पूरी करे सघो त मां शादी करण लाइ तयारु आहियां, न त हीउ रिश्तो ख़तमु समझो। हलो।

0: रेडी हलो मैं तो एक मिनट बना थी तरसान चाया गुड बाय
1: अरे अरे एक मिनट सजा एक मिनट प्लीज डैडी एक मिनट ये मजो किए था डैडी थोड़ा समझो तो करें गाज जो खुला सुनो था करे सगो
0: समझो तो करण जो को सवाल ही न थो थे तवा पेंजी ख्वाहिश जाहिर कई जेका असा के ना मंजूर आए हाने मुंजी भी कड़ी ख्वाहिश बुद्धि छड्यो
1: ओके तुजी कड़ी ख्वाहिश आए
0: मुंजी ख्वाहिश बु बुद्ध विनोद जे कदे तो मुसा शादी करण तो चाहिए
1: हां
0: तो मुझे एक शर्त आए
1: कर करो
0: न कार्ड छपबा न रिसेप्शन थींदी न मिश्री न रिंग सेरेमनी बिल्कुल सादे नमूने की शादी थींदी जे मंजूर हो जाए तो 24 कलाकन के अंदर इतला डिजे हाने असि हलूं था

तहां तवहां ड्रामा प्ले बुधी रहा हो गोपी मोटवानी पारा लिखल तू अल्लाह त नहीं हाणे आहे कुछ खास खास खबरूं। पश्चिम एशिया में हलदड़ जंग जे करे हुकूमत सरकारी तेल कंपनियों के घट में घट टीह डीहन जो एलपीजी जखीरो रखण लाइ चयो आहे। माली खिदमतन जे महकमे लावारिस माली असेशन जी ॼाण आसान कंजण लाइ कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू कयो वियो आहे। म्यांमार जो राष्ट्रपति यूंग आंग ह्वांग भारत जे पंज डीहन जे दौर ते अॼु सुबुह जो बिहार जे गया में पहुतो। एनसीआर में हवा जी क्वालिटी जे इंतजाम वारे कमीशन सीएक्यूएम ग्रैप जे पहिरे मरहले जा सब कदम वापस खणी छॾिया आहिनि। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में थियल क्वालिफायर ब मैचन में गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स के 7 विकेटन सा हरायो।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾु ॼाणींदी थी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6:30 लॻे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजी सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी भी है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर
0: गृह मंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ

पत्रकारों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Mama,

है, आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना बलजीत सिंह के गाए शब्द। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:25 हुए हैं और यह समय है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जहां सुबह सुबह का वक्त हमारे लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा होता है। और कल की बारिश के बाद तो दिल्ली की तपिश कुछ कम हुई है और मौसम बेहतर हो गया है।

श्रोताओं कहते हैं कि उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही आपके जीवन को पंख देती है। कुछ इस तरह

बताऊं आप सुन रहे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज गीतों भरी गुड मॉर्निंग के इस सफर में मैं हूं आपका हम सफर सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी वो है जिसमें हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं, किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाकर तो कभी किसी का दर्द बांटकर।

दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कुछ मन का होता है तो कभी मन का नहीं, कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। लेकिन ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि इसी उतार और चढ़ाव का नाम ही जीवन है। इसके बावजूद भी आपको जीवन की राह में चलते रहना है।

मरता जा मित्रा, करता जा मित्रा, किसी से झुकाता

जी हाँ, जीवन चलने का नाम और चलते रहो सुबह शाम, चलते तो जाना है लेकिन कभी कभी जीवन में चलते चलते एक ऐसा पल आता है जब रुक कर अपने अतीत की ओर देखने का मन करता है। मन करता है उन सब बातों को याद करने का जो बीते दिनों में हमने की। कुछ ऐसे ही खास पलों को याद करते हुए दिल से यही जज्बात निकलते हैं।

0: तो दोस्तों ये थी गीतों भरी गुड मॉर्निंग आपके दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ सिंह के साथ। उम्मीद है कि आपको गीतों भरी गुड मॉर्निंग पसंद आई होगी। श्रोताओं में आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और बजने को है से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो ये सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
1: नमस्कार। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो भूल ही गई थी, तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आल्सो, और मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज रिजर्व, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। एंड सिमिलरली

0: फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज डलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
4: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।

0: पूर्ण दया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों के उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण पर पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीईटी पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है डीके शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार झारखंड बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.

0: में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने जबरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ है मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के अखबार ने अलग अलग खबरों को शासोसी बनाया है। मरकजी और दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भूज में भारत पाकिस्तान सरहद प्रवासी चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजुर्बात पर मबनी किताब के रस्म की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतादिन निकात पर इतफाक राय में पेशरफ हुई है। नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिलातातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के निश्चित अखबार में उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बंद के इंतकाल पर उर्दू दुनिया उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और तारीखी नशिस्तों के इंतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से मां और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर विन ऑन ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का गोल्ड बाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हर साल 31 मार्च को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन, यानी आकर्षण की सच्चाई उजागर करें और निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करें। इस वर्ष का संदेश खास तौर पर युवाओं को जागरूक करने पर केंद्रित है क्योंकि तंबाकू और निकोटीन कंपनियां आकर्षक पैकेजिंग फ्लेवर और विज्ञापनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे तंबाकू और निकोटीन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव, युवाओं में बढ़ती लत के कारण और इस आदत से छुटकारा पाने के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आइए मिलकर संकल्प लें, स्वस्थ जीवन अपनाएं, तंबाकू को जीवन से हटाएं। सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष परिचर्चा। विषय है तंबाकू के कुप्रभाव। हमारे प्रतिभागी हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सिसेशन ESIC डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही हैं टीना शर्मा। तंबाकू का सेवन बेहद खतरनाक है, ये चेतावनी हर तरह के तंबाकू के पैकेट पर लिखी होती है लेकिन तंबाकू के शौकीन इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बन जाती है आफत। तंबाकू का सेवन जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है, ये कई गंभीर समस्याओं को बुलावा देता है।

0: लगता है। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर मानसी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि तंबाकू के विभिन्न रूपों में कौन कौन से उत्पाद आते हैं?
1: नमस्कार। तंबाकू ज्यादातर देखा गया है कि भारतवर्ष में दो रूप में प्रयोग किया जाता है, या तो चबाने के फॉर्म में या फिर धूम्रपान के फॉर्म में, जिसे हम या तो स्मोकलेस एंड स्मोक फॉर्म कहते हैं। स्मोकलेस फॉर्म में ज्यादातर खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला, ये ज्यादातर देखे गए हैं। और दूसरा है धूम्रपान के फॉर्म में, जिसको हम सिगरेट, बीड़ी या फिर हुक्के के फॉर्म में ज्यादातर देखते हैं। एक और भी फॉर्म है जो हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो है जब हम तंबाकू को मसूड़ों पे लगाकर या उसको एक पेस्ट की तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये तीनों तरह से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू में मुख्य रूप से कौन सा नशीला और जहरीला तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है और सेहत बिगड़ने लगते हैं? तंबाकू दिखने में तो एक पुड़िया में आ जाता है या एक सिगरेट में दिख जाता है, मगर इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा केमिकल होते हैं और जो बहुत ही खतरनाक है। निकोटीन इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। निकोटीन के साथ साथ अगर देखें तो निकोटीन इतना खतरनाक नहीं है जितना एडिक्टिव है। मतलब ये हमें एक बार मिलना शुरू हुआ तो हमारा शरीर से छोड़ नहीं सकता, मगर उसी तरह से बहुत से ऐसे केमिकल हैं जैसे टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोसमीन्स, ये सारे जो हैं ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग है या कैंसर को होने में बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं। तो तंबाकू का कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें बहुत सारे पदार्थ हैं जो खतरा कर सकते हैं। डॉक्टर सृष्टि, आपसे जानना चाहेंगे कि तंबाकू के सेवन से कैंसर के अलावा कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है?
2: ये तो सबको पता है कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है, बट जो सबसे पहले साइंस जो हमें दिखना शुरू होते हैं वो हमारे मुंह से शुरू होते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई भी इंसान है, हम उसका मुंह खोलते हैं और हमें दिखता है कि उसके दांतों का रंग बदल रहा है, जिसको स्टेनिंग बोलते हैं, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट साइन होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसके कैंसर होने के चांसेस हैं। सेकेंड, अगर उसके मुंह में कोई अल्सर, इसको छाला बोलते हैं, जो 2 से 3 हफ्तों के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो हमें पता लगता है कि हमें उसके अंदर और जांच करने की जरूरत है। या उसके गालों पे या उसके जीभ पे लाल या सफेद रंग के पैचेस आ जाते हैं। और इसका लास्ट स्टेज होता है जब पेशेंट का मुंह ही खुलना बंद हो जाता है या बहुत कम, 2 उंगलियों समान उसका मुंह खुलता है, तब हमें पता लगता है कि अब ये कैंसर के स्टेजेस में जाना पॉसिबल हो रहा है उसका।
0: डॉक्टर लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण लोग तंबाकू का सेवन करते हैं?
3: देखिए, सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है कि ये स्टार्ट कब होता है। ये होता है स्टार्ट 12 से 14 साल के बच्चों में। हमें ये समझना होगा कि कुछ बच्चे वल्नरेबल होते हैं, जिनको चांसेस होते हैं कि वो नशा स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, जो बच्चे जिनको थ्रिल्स पसंद है, थोड़े डिमांडिंग होते हैं ना, बार बार उनको कुछ न कुछ चाहिए, उनको थ्रिल्स चाहिए, रोमांच चाहिए जिंदगी में, ऐसे बच्चों के दिमाग में ही ऐसा होता है कि उनको कुछ करना है, कुछ करना है, तो वो नशे की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, वो बच्चे जिनको आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस कहते हैं, जिसको टीनेजर्स होते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, उनको बड़ा बनना है, उनको बड़े जैसी फीलिंग लेनी है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि बड़े की फीलिंग के लिए कि मैं पी रहा हूँ, उसका मतलब मैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस को ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद जो बहुत बड़ा रीजन है जिसमें लोग पहली बार इनिशिएट करते हैं, उत्सुकता से, क्या होता है इसमें, क्या चीज है ऐसी, और अपने दोस्तों के साथ पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं, कि अगर एक दोस्त ले रहा है तो दूसरा दोस्त, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह से ये बच्चे फिर धीरे धीरे धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो बच्चे जो पढ़ाई में ठीक नहीं कर रहे हैं, जो थ्रिल सीकिंग है, थोड़े एडवेंचरस है, थोड़े जिनको हम नॉटी बच्चे कहते हैं ना, उस तरह के बच्चों की संभावना होती है। और जरूरी है कि उसी समय पहचान कर अगर हम इलाज करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। एक बार जब वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैडम कह रही थी कि निकोटीन बड़ा एडिक्टिव है, वो इतना एडिक्टिव है कि उसके बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: सर, जैसे युवाओं में स्टेटस सिंबल और फैशन के तौर पर धूम्रपान यानी स्मोकिंग और अल्कोहल का चलन बढ़ता जा रहा है, और साथ ही किशोर अवस्था में पान मसाला और कई तरह के अन्य तंबाकू का क्रेज भी बढ़ गया है, स्थिति अभी कितनी गंभीर है और आने वाले समय में कितनी और हो सकती है?
3: अगर हम देखें हिन्दुस्तान में, हिन्दुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें कि तंबाकू का लिया जाता है एडल्ट में, और 13 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे देश में यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 लाख लगभग लोगों की डेथ ये हर साल करता है तंबाकू की वजह से होता है। 25% कैंसर इसकी वजह से हो रहे हैं। क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो पार्टीज एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है, जिसमें लोग पार्टीज करते हैं, गेट टूगेदर करते हैं, जैसे वीकेंड पार्टीज हैं, उन पार्टीज में जो

0: युवाओं से जुड़ा एक सवाल और भी है कि आजकल युवाओं में फ्लेवर्ड हुक्का, फ्लेवर्ड पान का चलन, ई सिगरेट का चलन बढ़ गया है, ये कितना हानिकारक है?
1: कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो हुक्का है, फ्लेवर्ड पान है, ये ई सिगरेट है, इसमें क्या होगा, पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये भी उतना ही खतरनाक है। कारण क्या है कि निकोटीन तो उसमें होता ही होता है जो उसकी आदत डालता है, इसके अलावा उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें निकल और ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि नुकसान करते हैं, और ये आश्चर्यजनक है कि उतना ही उसकी आदत पड़ती है और उससे होने वाली जैसे हार्ट की बीमारी है, लंग की बीमारियां हैं, कैंसर्स हैं, ये सारी बीमारियां भी वैसे ही बढ़ती हैं जैसे कि सिगरेट से बढ़ती है। ये जो एक चलन है कि उनको लगता है कि कम खतरनाक होता होगा, ये कम खतरनाक नहीं है, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि सिगरेट और बाकी तम्बाकू के प्रोडक्ट्स।
0: डॉक्टर सृष्टि, धूम्रपान हानिकारक है क्योंकि इसमें धुआं शरीर के अंदर जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम तो खैनी गुटखा का इस्तेमाल करते हैं जो धुआं रहित है। धुआं रहित होने का ये मतलब नहीं है कि वो बेटर है या सेफ है धूम्रपान से, हानिकारक वो भी है क्योंकि जैसे मैम ने बोला, डॉक्टर मानसी ने, चीजें उसमें वही है जो एडिक्टिव है, तो वो खैनी गुटखा को अपने गालों में एक पुड़िया बना के रख देते हैं और वो अपना काम वहां से शुरू करता है। तो जितना धूम्रपान हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उतना ही तंबाकू मुंह के कैंसर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो वो भी इक्वली ही हार्मफुल है या हानिकारक है जितना स्मोकिंग होता है। तो आपने पूछा कि धूम्रपान से वो अंदर जा रहा है तो लोगों को लगता है ये ज्यादा हानिकारक है, मगर जबकि चबाने वाला तम्बाकू मुंह या गाल में रखा जाता है तो ये हमारे मुंह के जो सलाइवा होता है उसके साथ घुलता रहता है और ये काफी लंबे समय तक रखा जाता है। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट कोई भी इंसान जो इसे खा रहा है वो इसे अपने गाल में दबा के रखता है। धीरे धीरे यही जो थूक बनती है इसके साथ में और इसी के जो रसायन सारे हमारे मुंह में भरते हैं वो आधे से ज्यादा शरीर के अंदर जाते हैं, तो जब वो अंदर जाते हैं तो वो हमारे रक्तचाप में जाते हैं और उसी से ही हमारे बाकी सारे शरीर के अंगों को भी नुकसान देते हैं। धूम्रपान से तो सिर्फ लंग्स ही अफेक्ट हो रहे हैं, मगर अगर चबाने वाला तम्बाकू खाया जा रहा है तो उससे खून की नली में जाने की वजह से वो हर एक शरीर के भाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये ज्यादा नुकसानदायक है।
2: डॉक्टर मानसी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, तम्बाकू का सेवन वैसे तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन बात अगर महिलाओं की करें तो आजकल बड़ी संख्या में महिलाएं इसकी शिकार हैं। कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खतरा ज्यादा है। कितना खतरा है महिलाओं को?
0: खतरा सभी को है, परंतु महिलाएं ज्यादातर, उनके शरीर पर इसका नुकसान ज्यादा देखा जाता है क्योंकि या तो वो प्रेग्नेंट हैं या फिर उनके जो प्यूबर्टी स्टेजेस हैं उसमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाता है। वो बदलाव और हार्मोन्स की वजह से जो महिलाओं पे असर आता है वो उसकी मात्रा ज्यादा गंभीर है एज कम्पेयर टू पुरुषों पे। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई ज्यादा या कम है, मगर उनका प्रभाव, खासकर अगर महिलाएं उसका सेवन ज्यादा कर रही हैं तो उसके शरीर पे जो असर पड़ रहा है वो अधिक है एज कम्पेयर टू मेल्स।
2: और मैम, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के टाइम पर धूम्रपान ज्यादा करती हैं उनको आप क्या सलाह देंगे?
0: कोई भी समय सही समय नहीं है धूम्रपान के लिए, मगर प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल ही मना होता है क्योंकि ये देखा गया है कि बच्चे को पूरी तरह से नुकसान दिया जाता है जो महिलाएं इसका सेवन कर रही हैं। जैसे मैंने कहा, रक्तचाप के थ्रू भी बच्चे तक इसका नुकसान पहुंच रहा है और बहुत ज्यादा अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर महिलाएं इसे अपनी गर्भावस्था में इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो
2: डॉक्टर लोकेश, जिन लोगों की सोच है कि तनाव डिप्रेशन को दूर करने के लिए तम्बाकू एक ऑप्शन है, उन्हें क्या कहेंगे?
1: देखिए, जो तम्बाकू की जो है तलब जिसको कहते हैं, क्रेविंग कहते हैं जिसको, दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग, जिसमें स्ट्रेस होता है तो लोग तम्बाकू या कोई भी नशा करके तरफ जाते हैं। एक होता है क्यों इंड्यूस क्रेविंग होती है, जब उनको वो परिस्थितियां दिखती है तो उनको तलब होती है, जैसे वो पुराना दोस्त मिल गया, वो बस स्टैंड मिल गया या वो जगह मिल गई, या जैसे पार्टीज हैं या कोई अल्कोहल ले रहे हैं, वो सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम स्ट्रेस को कारण माने तो तनाव को दूर करने के जो दूसरे तरीके हैं वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। जब भी तनाव होता है उसको कम करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, योगा करें, अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने खाने में लें और उन परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें जिनसे स्ट्रेस होता है। कुछ लोग होते हैं जब भी कभी उनकी परिस्थितियां ऐसी आती है पर्टिकुलर, जैसे भावनात्मक रूप से वो ट्रिगर हो जाते हैं या किसी परिस्थिति की वजह से होते हैं, उनको अवॉइड करके और स्ट्रेस रिडक्शन के दूसरे तरीकों पर ध्यान दें जिससे कि स्ट्रेस इंड्यूस क्रेविंग भी ना हो उनको तलब, जैसे कल तो दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने ले ली। ये वाला स्टेटमेंट बहुत कॉमन होता है लोगों का कि मैंने 2 महीने छोड़ के रखा पर घर में ऐसी एक परिस्थिति।

0: गलती हुई जिसके बाद मैंने उसके बाद वापस स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पिछली बार जो मैंने छोड़ा था कौन कौन सी परिस्थितियां जो मुझे ऐसा करती है, और उसके लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, और जरूरत पड़े तो मनोचिकित्सक से सलाह लें कि इस परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं।
1: डॉक्टर मानसी, तंबाकू के सेवन से ओरल हेल्थ किस तरह से प्रभावित होती है?
2: बहुत प्रभावित होता है। तंबाकू के सेवन से ऐसा मुंह का कोई भाग नहीं है जिसका उस पर असर ना देखा जाए। जैसे बताया गया कि तंबाकू चबाने वालों को हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि उनके दांतों का रंग बदल जाता है, लाल ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। तंबाकू के चबाने की वजह से दांतों का ऊपरी परत घिसना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको ठंडा पानी लगना ज्यादा लगेगा, दांत घिसे रहेंगे, दांतों में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी तरह से मसूड़ों में भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखा गया है। मसूड़ों में लालिमा, सूजन बहुत अधिक देखा जाता है। ज्यादा तंबाकू के सेवन की वजह से हड्डी का बैठना होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाएंगे, पायरिया लगना शुरू हो जाएगा। लोग बहुत सोचते हैं, ये एक गलत धारणा है कि अगर हम तंबाकू खाएंगे तो हमारे मुंह का स्वास्थ्य सही रहेगा, मगर ऐसा नहीं है। लंबे समय तक इसके सेवन की वजह से मुंह में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, या तो अल्सर के रूप में दिखेंगे या फिर सफेद या लाल दाग के रूप में देंगे। धीरे धीरे खाने में नमक मिर्ची खाना भी दुश्वार हो जाता है, और धीरे धीरे मुंह का कम खुलना शुरू होता है जिसकी वजह से गाल में पकाव आना शुरू हो जाता है, और मुंह की बनावट है वो कसाव में बदल जाती है, और धीरे धीरे वो आवाज में भी बदलाव लाने शुरू हो जाता है। ये सारी जो बदलाव है ये कैंसर की तरफ निशानियां आदेश देती है। तो अगर ये तुरंत ही डॉक्टर से सलाह ना की जाए और इसका इलाज ना शुरू किया जाए, और जिसका सबसे पहला इलाज दवाई का असर तब आता है इस सिचुएशन में जब तंबाकू छोड़ा जाए, तो सबसे पहले मरीज को ये कहा जाता है कि अब तंबाकू नहीं छोड़ा तो फिर कोई रास्ता नहीं, कोई दवाई भी आप पे काम नहीं करेगी। तो आपने जब तंबाकू छोड़ा उसके बाद ही हम उसको दवाइयों से शुरू करते हैं, और धीरे धीरे इसको रोका जा सकता है। पर अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो फिर ये कैंसर में बदल जाता है। गले और मुंह या जीभ का कैंसर आमतौर से देखा गया है इसके बाद।
1: डॉक्टर सृष्टि, सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकिंग, ये स्वास्थ्य के लिए कितना जोखिम भरा है, कैसे बचाव किया जाए?
2: एक तो एक्टिव स्मोकिंग, मतलब जब इंसान खुद ही धूम्रपान कर रहा है, वो तो हमें पता है कि वो हानिकारक है, पर अगर ये व्यक्ति उस एनवायरमेंट में हो जहाँ पे बाकी लोग भी आसपास स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो धुआं हमारे शरीर में जाता ही है, हालांकि हम उसको डायरेक्टली अपने मुंह में नहीं ले रहे हैं, पर बाकी लोगों की करने की वजह से वो हमारे सांस लेने से अंदर जा ही रहा है। तो जितना हानिकारक एक्टिव स्मोकिंग है उतना ही हानिकारक पैसिव स्मोकिंग भी है। उसको बचाने के लिए हमें ऐसी जगहें अवॉइड करनी चाहिए जहां पे लोग ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो व्यक्ति खुद ही एक्टिव स्मोकिंग का पार्ट है, और ऐसे लोगों के साथ भी घूमना प्रिवेंट करना चाहिए जहां पे उसको लगता है कि वो लोग, जैसे सर ने बोला हर वीकेंड पार्टीज होती है, तो उन लोगों को लगता है कि हम धूम्रपान करेंगे या नशे में बस एंजॉयमेंट के नाम पे करेंगे, तो उस व्यक्ति को उस एनवायरमेंट में जाना भी अवॉइड करना चाहिए।
1: और मैम, सेकेंड हैंड स्मोक या ये पैसिव स्मोकिंग से ओरल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है?
2: ओरल हेल्थ पे सबसे ज्यादा हमारे मसूड़ों पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो जितना एक्टिव स्मोकिंग से पड़ता है, सेम इफेक्ट हमारे पैसिव स्मोकिंग से पड़ता है, जहां हमारे मसूड़े जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब जैसे हमारे शरीर पे घाव बनने शुरू होते हैं वैसे हमारे मसूड़ों में भी घाव बनने शुरू हो जाते हैं। पर इसमें एक चीज ये है कि निकोटीन हमारी ब्लड की जो नलियां है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ब्लड फ्लो हमारा कम करता है, तो मसूड़ों में से खून नहीं आता है, इसलिए लोगों को लगता है कि तंबाकू खाने से हमारा मुंह ज्यादा हानिकारक नहीं हो रहा है। पर ये बहुत ही गलत नोशन है, क्योंकि जैसे ही हमारी नसों की नलियां कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है हमारे पूरे मुंह में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हमारा पूरा मसूड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है, और जैसा लगता है जैसे कुछ जल रहा है, एंड अलॉन्ग विद इट के जैसे पायरिया लग जाता है, जैसे स्टेनिंग लग जाती है, वो इस कदर की हो जाती है कि उनके पूरे दांत ही लाल हो जाते हैं।
1: डॉक्टर मुकेश, जो लोग इस लत का शिकार हो चुके हैं और अब इससे बाहर आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं छोड़ने की लेकिन छोड़ नहीं पाते, काउंसलिंग अप्रोचेस कितनी मददगार साबित हो रही है?
0: काउंसलिंग जो है वो मदद करती है, उसको हम कहते हैं मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी। उसके लिए हर वीक आना है, काउंसलर से मिलना है, साइकोलॉजिस्ट से मिलना है, वो इफेक्टिव होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो तंबाकू छुड़वाने के लिए दवा है स्पेशली, वो दवाई बहुत कारगर होती है। हमने देखा है कि जिन लोगों को हम दवा देते हैं वो छोड़ पाते हैं। काउंसलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम उसको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है, इससे आपको आगे जाके कितनी बड़ी गंभीर समस्याएं हो सकती है, और ये नहीं है कि सिर्फ आप पी रहे हो, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, उन सबको भी उसके लिए एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि सिगरेट वो घर में पीते हैं तो वो धुआं जो है वो बच्चों को

0: जा रहा है, उनके भी दिमाग को नुकसान कर रहा है, उनको भी सेकेंड हैंड स्मोक से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में उनको ये समझाना, फिर उसके बाद उनको ये स्टार्ट करवाना कि अब आप क्या सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग उन्हीं की लेनी होती है कि क्या डिसीजन बनाना है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार हम कहते हैं उनको कि आप अपने और अपने परिवार की हेल्थ से ऊपर क्या रखना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्मोकिंग को उससे ऊपर नहीं रखूंगा। तो इस तरह से हम उनको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और मैं तो जनरली जो लोगों को एक बहुत सिंपल टिप देता हूँ काउंसलिंग के तौर पर, एक सिंपल आइडिया है, आइडिया मीन्स तम्बाकू छोड़ने का आइडिया। आइडिया में स्टार्ट करते हैं हम आई से, इंटेंशन है, आई से स्टार्ट करते हैं कि इंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, इंटेंट की मुझे छोड़ना है, ये निश्चित करना है और डेट फिक्स करनी है। बहुत बार लोग कहते हैं छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, एक हफ्ते बाद छोड़ दूंगा, न्यू ईयर पे छोड़ूंगा, डेट फिक्स करनी है कि मुझे छोड़ना ही छोड़ना है, इस दिन से मैं नहीं पीऊंगा। दूसरा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हर उस इंसान को इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके साथ वो पीते हैं, क्योंकि वही लोग है जो ट्रिगर करेंगे, वही लोग कहेंगे या कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लो ऐसे करके, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करना कि मैंने छोड़ दिया और मैं नहीं पीऊंगा, मुझे दोबारा आपको पूछना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है डी, जिसका कहते हैं डिले एंड डिस्ट्रैक्शन, क्रेविंग की जो अर्ज है, इंटेंस डिजायर जिसको कहते हैं, वो शॉर्ट लास्टिंग होती है। अगर उसको 15 मिनट आधा घंटा डिले कर दिया जाए तो वो चली जाएगी। जब उनके मन में आता है कि मुझे अभी चाहिए तो उनको कहना है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में ले लूंगा, 15 मिनट बाद ले लूंगा, आधे घंटे बाद ले लूंगा, कि जैसे आया कि भाई मैं इस बस स्टैंड पे जाता हूँ और वहां पे दुकान है उससे लेता हूँ, कहना कि अभी नहीं लूंगा, कल देखूंगा, डिले करना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि डिस्ट्रैक्ट करना अपने आपको, जब तलब आ रही है किसी से बात कर लें, कुछ अपना फोन देख लें, कुछ और कर लें, ऐसा जिससे कि किसी घर वालों से बात कर लें, उससे नहीं जिसके साथ पीते हैं, उनके साथ जो पीते नहीं है, जो आपको एनकरेज कर सकते हैं कि यार थोड़ी तलब हो रही क्या किया जाए, तो कहेगा अरे थोड़ी देर छोड़ दो तो छूट जाएगा, तुमने देखो कहा था तुम छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो। तीसरा आता है एंगेजमेंट, अगर आपको बोर्डम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बोर हो रहा था तो मैंने एक सिगरेट पी, अरे यार मैं वेट कर रहा था 15 मिनट में, तेरे पता है मैंने 2 सिगरेट पी ली, तो अगर बोर हो रहे हैं तो अपने आपको एंगेज करें ऐसी किसी चीज में जो उनके माइंड को एंगेज रखे, उस तरफ जाने ना दे। और फोर्थ पॉइंट ए पे आता है एप्रिशिएशन एंड अवॉइडेंस। अवॉइडेंस कैसे, उन सारी परिस्थितियों से जिनसे ट्रिगर होता है, वो पार्टी जिनसे ट्रिगर होता है, वो दोस्त जिनसे ट्रिगर होता है, जो परिस्थितियां जिनसे ट्रिगर होता है, वो पान की दुकान या वो दुकान जिसपे ट्रिगर होता है, और वहां से वो कुछ सामान लेते हैं, दुकान वाला भी कहता है 10 रुपए बच के एक सिगरेट दे दूं, ऐसी दुकान पे नहीं जाना है, बिल्कुल उनको अवॉइड करना है। और अगर उन्होंने छोड़ दिया है, सपोजली 2 दिन छोड़ दिया, तो अपने आपको अप्रिशिएट करना है कि मैंने 2 दिन छोड़ा, मैं 2 दिन और छोड़ सकता हूँ, तो एप्रिशिएशन से वो 4 दिन हो जाएंगे, 4 के बाद कहेगा कि मैं 4 दिन छोड़ सकता हूँ, तो 4 दिन और छोड़ सकता हूँ। ये जो आइडिया है सिंपल, इसके बाद भी लोगों को अगर संभव नहीं होता है तो मनोचिकित्सक से सलाह लें और ये छूट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग इस बात से निराश हो जाते हैं कि अब तो ये मेरे जिंदगी के साथ ही जाएगा, इस तरह की निराशा नहीं रखनी है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये छूट सकता है।
1: सर, ये जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम और हेल्पलाइन किस तरह से सहायक होते हैं?
0: देखिए, मैं गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं बहुत ही अप्रिशिएबल है, उन्होंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बंद किए, बहुत सारे जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस किए, स्कूल प्रीमिसेस में नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्विक लाइन दी है कि 2356 जिसको है उस पर क्विक लाइन पे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे छुड़वाना है। और किसी को ये चाहिए कि मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ, ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि छोड़ने का प्रयास जो है कई बार करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने 2 बार प्रयास कर लिया मेरे से नहीं छूटेगा, निराश हो जाते हैं। जब तक लोग 5 से 6 बार ट्राई नहीं करते छोड़ने की, तब तक छूटता नहीं है। और छूटना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए। जो लोग सोचते हैं ना 1 महीने में छोड़ दिया, अब तो मैं छूट गया, और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते फिर ले लेते हैं, छोड़ना तभी मानना है जब 1 साल हो जाए, क्योंकि 1 साल में जाके दिमाग में वो बदलाव आएगा जो आपको निकोटिन और जो तम्बाकू की लत है उसको कम करने में मदद करेगा।
1: डॉक्टर मानसी, जो लोग तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं, घर परिवार के सदस्य और दोस्त उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा बीमार होता है तो दवा के साथ परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, प्यार बहुत जरूरी है, तो उसी तरह इस तम्बाकू की लत को छोड़ने के लिए भी दोस्तों और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमें छोड़ने की डिसीजन ले लिया होता है या हम मन बना लेते हैं कि हमें तम्बाकू छोड़ना है, तो सबसे पहले हम मरीज को ये सलाह देते हैं कि वो अपने घर के अंदर से हर जगह से तम्बाकू और उससे संबंधित सभी चीजें, चाहे वो मैचिस की डब्बिया हो या फिर तम्बाकू का पैकेट या फिर वो सिगरेट का पैकेट, वो सब उसे वहां से निकाल के बाहर करना है, ताकि ना घर में उससे संबंधित कोई बात हो और घर परिवार उसके साथ इस पूरी जर्नी में उसके साथ रहे। जब आपका मन बन जाए तो आप अपने परिवार और अपने दोस्तों को ये बात जरूर बताएं कि आपने अब तम्बाकू न लेने का निश्चय कर लिया है, वो आपका सहयोग जरूर करेगा।
0: बहुत बार परिवार वालों को लगता है कि अभी 20 दिन छोड़ी थी फिर स्टार्ट कर दी, फिर महीना छोड़ा फिर पहले स्टार्ट कर दिए, तुम तो छोड़ने नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रिटिकल नहीं होना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि आपने 10 दिन छोड़ दी इसका मतलब तुम 10 दिन और छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कहना कि वो स्टार्ट कर दी ना तुमने। क्रिटिकल जो कमेंट्स हैं वो उनको स्ट्रेस देते हैं और फिर वो कहेंगे अगर आप ये सोचते हो तो मैं फिर पीता रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए अप्रिशिएबल होना है और अप्रिशिएट करना है, जितना अप्रिशिएट करेंगे जितना एनकरेज करेंगे छोड़ने की संभावना बढ़ेगी, क्रिटिकल होंगे कम हो जाएगी।
1: जी, परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऑलवेज मेक पॉजिटिव कमेंट्स, जितना पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा आप उनको सहयोग दे सकते हैं।
2: जी,
1: क्योंकि वो मानसिकता से मतलब बीमार है, एक तरह से उनको सहयोग की जरूरत है। कोई भी नेगेटिव कमेंट इस चीज के लिए सिर्फ आपको और उनको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो एज मच एज पॉजिटिव सपोर्ट फैमिली दे सकते हैं देना चाहिए। मैम, जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं कहाँ वो हेल्प ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स क्या है? सरकार ने बहुत से हेल्पलाइन बनाए हैं जो क्विकलाइन सर्विसेज की तरह से आप उनको संपर्क कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किया जाता है क्विकलाइन नंबर है, आप उसे नोट कर सकते हैं 1800112356। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार, 1800112356। ये सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्विकलाइन सेंटर है। इसके अलावा हर डेंटल कॉलेज में सरकारी या प्राइवेट और एक टोबैको सीजेशन सेंटर चलाया जा रहा है, जहां पर भी जाकर आप उनसे परामर्श कर सकते हैं और आसानी से उनके साथ संपर्क करके अपनी इस आदत या लत को छुड़वाने में मदद ले सकते हैं।
2: डॉक्टर सृष्टि, तंबाकू को लेकर मिथ्स क्या है? सबसे पहला मिथ तो ये है कि तंबाकू से हमें एंजॉयमेंट और खुशी मिलती है, लोगों को ऐसा लगता है, पर उनको ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली उनकी जिंदगी और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उसको बर्बाद या खराब ही कर रहा है। सेकेंड चीज ये है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनको लगता है कि तंबाकू खाते हैं तो हमारे मुंह में कोई बीमारी ही नहीं होती, पर इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। वो एकदम से इंसान को नहीं समझ में आता है कि बीमारी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चोट लगी और हमें घाव दिख गया। इट्स अ प्रोसेस जहां से वो धीरे धीरे स्टार्ट होकर अल्टीमेटली जब तक उनको नहीं दिखता कि मुंह में कैंसर शुरू हो गया, वो नहीं मानते हैं कि बीमारियां शुरू हो रही हैं।
0: जो यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि मेरा अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी बढ़ जाती है, जब मैं पी लेता हूं तो मुझे उसके बाद अच्छी पढ़ाई होती है, मैं कॉन्सेंट्रेट हो सकता हूं। ऐसा नहीं है, निकोटिन अल्टीमेटली उनका कॉन्सेंट्रेशन और लर्निंग को, मेमोरी को इम्पेयर करता है, न कि बढ़ाता है। जो शॉर्ट टर्म में उनको दिख रहा है वो लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान करता है। दूसरा, उनको एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों को कि सुबह जब तक पहली सिगरेट नहीं मिल जाएगी या तंबाकू नहीं मिलेगा पेट साफ नहीं होगा मेरा। ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। तो इसके लिए क्या है कि अगर वो ब्रश भी करेंगे, अगर वो सौंफ भी ले लेंगे, वो भी उनके गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करके उनको जो उनको कॉन्स्टिपेशन या जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक कर सकता है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा मिथ है कि हमारी मेमोरी बढ़ती है, कि इसके बिना मेरा पेट साफ नहीं होगा। तीसरा बड़ा मिथ है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता। ये बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, ये छोड़ा नहीं जा सकता। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो निकोटिन के जो गम्स आते हैं उनको यूज करते हैं कुछ टाइम के लिए, उनको लगता है इसे छूट जाएगा। उसको सिस्टमेटिक तरीके से जब तक नहीं होगा, मनोचिकित्सक की सलाह के तरीके से नहीं होगा, जब तक नहीं छूट जाएगा। एक या दो आपने कोई चिंगम ले लिया या कोई लोजेंजेस ले ली तो इसका मतलब नहीं छूट जाएगा। उसके लिए सिस्टमेटिक तरीके से जब मनोचिकित्सक से सलाह लेंगे, और उसको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, उसके बाद दूसरे तरीके आते हैं, दूसरी दवाइयां आती है, काउंसलिंग आती है, जो छुड़वा सकते
1: हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि ये खाने की भूख को भी कम करती है। जो हमारे देश में इस चीज को आधे तक ज्यादा लोग, खासकर चबाने वाले तंबाकू के जो फॉर्म है, उनको बहुत इसी तरह सिखाया जाता है कि हमारी एक टाइम की भूख कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय भर के लिए आपकी भूख कम हो जाएगी, आप एक टाइम का खाना कम कर लेंगे, मगर ये पूरे पेट और अंतरियों को इस तरह से जला देगा इसका रसायन कि आपको बहुत नुकसान देने वाला है लंबे समय में।
2: जिसमें एक और चीज है कि जो लोग पढ़ाई करते हैं रात भर, जिनको आदत होती है पढ़ने की, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम धूम्रपान करेंगे तो हम रात रात भर तक, जिसको बोलते हैं ऑल नाइटर्स, वो पुल ऑफ करके पूरी रात पढ़ के सुबह हम एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर एक ट्रेंड है जो लोग फॉलो करते हैं कि हम रात में ये करेंगे और सुबह तक हम उठे रह के एग्जाम अच्छे से लिखाएंगे। तो ये टीनेजर्स में बहुत पाया जाता है।
1: अच्छा मैम, एक मिथ ये भी है कि कई लोग सोचते हैं कि धूम्रपान करने से या तंबाकू लेने से
2: हम लोग स्लिम ट्रिम रहेंगे, एक ही मिथ ये भी है
1: कि यूथ में ये भी बहुत।
2: तो इसमें आप क्या कर रहे
0: हैं? इसमें ऐसा है कि बहुत पेटेड सप्रेसेंट तो है
2: जी,
0: है ना। अब क्या है कि बहुत सारे स्पेशली टीनेजर्स जो है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी देखा गया कि जो स्मोकिंग एक बार छोड़ते हैं थोड़ा सा वेट बढ़ता है और उस वेट से वो डर जाते हैं
2: जी।
0: ओके, वेट बढ़ गया इसलिए वापस स्मोकिंग।

0: कर देते हैं, वो वेट बढ़ता नहीं है, वो इनिशियल टाइम में जो सप्रेसेंट का काम करे वो ठीक है, अल्टीमेटली भी सेट हो जाएगा।
1: एक आखिरी सवाल सर आपसे, किसी भी तरह के तंबाकू, अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन किसी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से कैसे कमजोर बनाता है और वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकता है?
0: देखिए, बहुत बार लोग है ना अपने स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण की वजह से दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए क्यूरोसिटी में स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं इन नशे के ऊपर मानसिक और भावनात्मक रूप से। जैसे इमोशनली डिस्टर्ब हुए, भावनात्मक रूप से कोई गड़बड़ हुई, किससे कुछ भी घटना है, जैसे टीनेजर्स में कोई फ्रेंड से कुछ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम इश्यूज है उनको हुआ, उन्होंने स्टार्ट किए, जो स्ट्रेस को हैंडल करने का ये तरीका है वो एक्चुअली और स्ट्रेस बढ़ाता है। एल्कोहल जो है वो और स्ट्रेस बढ़ाता है, टोबैको भी और स्ट्रेस बढ़ा देता है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, मेंटली वीक कर देता है।
1: तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों पर इतनी सारी आवश्यक जानकारी देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विल पावर मजबूत हो तो व्यक्ति किसी भी तरह की परेशानी या बुरी लत से आसानी से बाहर आ सकता है। बस कोशिश है एक शुरुआत की, वो शुरुआत कल से नहीं आज से कीजिए, बल्कि अभी से कीजिए और अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। नमस्कार। तम्बाकू के कुप्रभाव। अभी आप विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर ये विशेष परिचर्चा सुन रहे थे। हमारे प्रतिभागी थे डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर आरएमएन हॉस्पिटल, डॉक्टर मानसी अत्री एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड टोबैको सेशन ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और डॉक्टर सृष्टि ग्रोवर डेंटल सर्जन। संचालन कर रही थी टीना शर्मा। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती आकाश। धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस महीने दिल्ली सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा। ऐसे में चर्चा हो रही है नौतपा गर्मी की। आखिर क्या है, कब कब होता है, इसके क्या कारण हैं और बचने के उपाय सावधानियां क्या होगी, इन सब पर जानने के लिए सुनते हैं ये वार्ता, नौतपा का वैज्ञानिक विश्लेषण, प्रकृति का संतुलन या चेतावनी। वार्ताकार है स्वास्थ्य पत्रकार निशी भाट।
3: अगर हम बात करें मौसम की तो जैसा कि आप देख रहे हैं तपती धूप, तेज गर्मी, लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री पहुंच गया है। इस बीच नौतपा भी शुरू हो गया है। नौतपा वह समय होता है जबकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। गर्म हवाएं धरती से अधिक ऊपर नहीं उठ पाती और सूरज की तेज, बहुत तेज रोशनी धरती को चीरती हुई जनजीवन को प्रभावित करने लगती है। दिन के साथ ही रातें भी गर्म होने लगी है। आमतौर पर इसका असर मई के अंतिम सप्ताह में और जून के शुरुआती दिनों में रहता है। अब हम प्रश्न करें तो गर्मी, नौतपा, हीट वेव, सबका जिम्मेदार कौन है? हाल ही के वर्षों में उत्तर भारत में हीट वेव और नौतपा जैसी परिस्थितियां बढ़ी हैं। भौगोलिक कारणों को देखें तो इस साल अल नीनो को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है, जो विषुवतीय प्रशांत महासागर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि भूमध्य रेखा की व्यापारिक हवाएं कमजोर हो गयी जिससे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पूर्व की ओर बह गया। लेकिन इसे केवल एक वजह मानना अधूरा होगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, पेड़ों की कटाई भी धरती के अत्यधिक गर्म होने के कारण माने गए हैं। सबसे पहले समझते हैं अल नीनो क्या है। यह प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है। यह समुद्र का तापमान बढ़ता है तब वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण भी बदल जाता है। इसका असर भारत के मानसून, हवा की दिशा, नमी और तापमान पर पड़ता है। भारत में अक्सर अल नीनो के दौरान मानसून कमजोर पड़ता है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत में गर्म और शुष्क हवाएं अधिक प्रभावी हो जाती हैं। यही कारण है कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार और मध्य भारत में लू का असर सबसे अधिक दिखाई देता है। वैज्ञानिक दृष्टि में नौतपा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह सूर्य की स्थिति और पृथ्वी के मौसमी चक्र से जुड़ी प्राकृतिक घटना है। मई के अंतिम सप्ताह में सूर्य की किरणें भारतीय उप

आदि पर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे जमीन तेजी से गर्म होती है। यदि इसी समय अल नीनो सक्रिय हो जाए तो वातावरण में नमी कम हो जाती है और गर्मी कई गुना अधिक महसूस होने लगती है। इसलिए अब पहले की तुलना में नौतपा अधिक तीव्र और लंबा हो गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह संतुलन बनाने का प्रकृति का अपने तरह का तरीका है। दार्शनिकों पारिस्थितिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करती है। पृथ्वी का तापमान एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण, जंगल की कटाई, कंक्रीट का विस्तार, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता है, तब प्रकृति आपदाएं जैसे हीट वेव, बाढ़, सूखा, चक्रवात अधिक तीव्र होने लगते हैं। इसे प्रकृति की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं कहते कि पृथ्वी हमें सजा देती है, बल्कि यह भौतिक तरीका है। हम जितनी अधिक ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में डालते हैं, पृथ्वी उतनी अधिक गर्म होती है। फिर अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं उस गर्मी को बढ़ा देती हैं। इसलिए आज जो हीट वेव का प्रकोप है, वह प्राकृतिक चक्र व मानव जनित जलवायु परिवर्तन दोनों का संयुक्त परिणाम कहा जा सकता है। यहाँ अहम बात यह है कि पहले नौतपा की गर्मी के बाद अच्छी बारिश का पारंपरिक संबंध माना जाता था, क्योंकि तीखी गर्मी से निम्न दबाव गति लो प्रेशर मजबूत होता है, जो मानसून को खींचने में मदद करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जलवायु परिवर्तन के कारण यह संतुलन अस्थिर हो गया है। कहीं अत्यधिक बारिश है तो कहीं सूखा है, या कहीं अधिक लंबे समय के हीट वेव के दौर देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति हमें एक चेतावनी भी देती है कि सहयोग में हर एक क्षेत्र को बढ़ाना होगा, जल संरक्षण करना होगा, कार्बन उत्सर्जन कम करना होगा। अर्बन हीट आइलैंड के प्रभाव के कारण कंक्रीट की इमारतों और काली सड़कों के निर्माण पर भी नकेल कसनी पड़ेगी। सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़ भी गर्मी को अत्यधिक बढ़ाती है, जहरीला धुआं छोड़ती है, जिसे निश्चित रूप से कम करना होगा। बड़े शहरों में लगे अरबों एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवाएं भी धरती को गर्म करती हैं, इसे भी नियंत्रित करना होगा। और हीट वेव को केवल मौसम से नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य आपदा की तरह भी देखना होगा। जी हाँ, स्वास्थ्य आपदा की तरह देखने का आशय यह है कि इस दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। घर से बाहर निकलने वालों के लिए हीट वेव यानी कि लू से बचना एक अहम चुनौती बन जाता है। स्वास्थ्य पैरामीटर की बात करें तो हीट स्ट्रोक में सबसे पहले मरीज के शरीर का तापमान जांचा जाता है। इसके बाद अस्पताल में पहुंचने के बाद 150 लीटर पानी और 70 किलो बर्फ के टब में मरीज की गर्दन को छोड़कर बाकी हिस्से को डिप किया जाता है, जिससे कि उसके सर को अत्यधिक इमीडिएट ठंडक ना पहुंचे, लेकिन बाकी जो शरीर है उसको एक सामान्य टेम्परेचर दिया जा सके। सिर को ठंडा करने के लिए स्पॉन्ज से धीरे धीरे सर पे पानी डाला जाता है। निरंतर मरीज के शरीर को तापमान को नापा जाता है। इसके दो तरीके हैं, एक तो थर्मामीटर जो हम टब में लगाते हैं, दूसरा तरीका एक शरीर के तापमान को नापने का होता है मल द्वार के जरिए। दोनों ही तरीकों से जब मरीज के शरीर का तापमान 100 डिग्री तक पहुंच जाता है, इस स्थिति को हम सामान्य स्थिति बनाते हैं। इसके बाद मरीज को वेंटिलेटर या नेक्स्ट में जो बेड होता है उस पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस स्थिति में भी डॉक्टर लगातार मरीज के तापमान पर निगरानी रखते हैं कि उसका इमीडिएट कहीं शरीर का तापमान बढ़ ना जाए या कम ना हो जाए। शरीर का तापमान सामान्य होने के बाद मरीज को लगभग आधे से एक घंटे के बीच में नॉर्मल होने दिया जाता है। पानी दिया जाता है, ठंडा लस्सी दूध वगैरह दिया जाता है। इस दौरान भी मरीज का तापमान गिर सकता है, लेकिन मॉनिटरिंग के बाद ही उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है। हीट स्ट्रोक के प्राथमिक इलाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमने जो अभी बात करी वो ये बात करी कि हम जब अस्पताल पहुंच गए तो डॉक्टर ने क्या इंटरवेंशन किया, लेकिन इससे पहले क्या है, क्योंकि मरीज को पता नहीं है कि वो हीट स्ट्रोक के संपर्क में आ गया। तो जो हमारी बातचीत हमने की डॉक्टर से, उससे पता चला कि हीट स्ट्रोक के प्रारंभिक इलाज का सबसे अहम योगदान होता है। हीट स्ट्रोक में प्रारंभिक इलाज में देरी होने पर मरीज को किडनी फेलियर हो सकता है। इनमें हम दो तरह का इलाज देते हैं, पहले तो उन्हें प्राथमिक और उसके बाद दूसरा पेरिफेरल इलाज दिया जाता है। इस समय मरीज का शरीर बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए जरूरी यह है कि जो भी मरीज के आसपास हो, सबसे पहले वह मरीज को पंखा हाके ठंडे पे यानी कि बाजू के नीचे थोड़ा सा बर्फ लगाएं और साथ ही उसे ठंडी यानी छांव वाली जगह पे ले जाएं। इससे होगा कि मरीज को अस्पताल पहुंचने से पहले ही थोड़ा बहुत सामान्य किया जा सकेगा, जिससे कि बाकी चीजों पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमें हीट स्ट्रोक में इलाज ना मिले, कहने वाली बात यह है कि बहुत सारे जो आम राहगीर होते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता है कि वो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गए। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने किसी भी मरीज का हीट स्ट्रोक में सही समय पर इलाज नहीं दिया तो इससे मरीज का किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले मरीज अपना सुध-बुध खो जाता है। कई बार उसका अपनी बातों पर भी नियंत्रण खो जाता है, वो कांपने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, या फिर उसका बोलने का सेंस होता है वो खत्म हो जाता है। इस स्थिति को गंभीर स्थिति कहा जा सकता है। डॉक्टर्स इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि हमें अपने भी बचाव के प्रयास लगातार करते रहने चाहिए। इसके लिए हमें लगातार लस्सी और आम पन्ना
पना का इस्तेमाल करें। अब लस्सी और आम पना इसलिए कहा जाता है कि केवल और केवल पानी पीने से आप हीट स्ट्रोक से नहीं बच सकते, क्योंकि गर्मी में पसीना आने के बाद हमारे शरीर का सोडियम स्तर भी लो होता है। सोडियम हमें नमक से मिलता है, इसीलिए

0: केवल पानी पीने की जगह आप ऐसा पेय पदार्थ पिएं जिसमें आप लस्सी या पन्ना भी ले सकते हैं, या फिर एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिला के भी आप पी सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना शरीर का, वो सामान्य रहेगा और आप किसी भी तरह के लू की स्थिति में तुरंत चपेट में नहीं आएंगे।
1: हालांकि भारत मौसम विभाग ने 29 मई को कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में चल रही उष्ण लहर थम गई है और 30 मई से मध्य भारत के अधिकांश भागों में भी इसके थमने की संभावना है। 1 से 4 जून तक उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है। 29 से 31 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से गंभीर गरज चमक की संभावना है। और अब सुनिए राधा गुप्ता से कुछ पर्यावरण संबंधी कविताएं।
2: कविताएं विज्ञान की एक ऐसी काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो कठिन तथ्यों को सरल शब्दों में ढाल देती है, जो विज्ञान संचार को अधिक सुगम, अधिक रोचक और अधिक ग्राह्य बनाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेशन की मुख्य थीम पृथ्वी के जलवायु संकेतों और मानवता के इस पर प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहेगी। तो आज इसी संदर्भ में मैं अपनी इस रचना के माध्यम से आपको ले चलती हूँ प्रकृति और मनुष्य, अर्थात माँ और पुत्र के संवाद स्थल पर, जहाँ पुत्र मनुष्य अपनी माँ प्रकृति का जन्म दिवस मनाना चाहता है। माँ, तूने मनाए कई जन्मदिन, आज तेरा भी दिन मैं मनाऊंगा। किया जो तूने मेरे लिए सब, वो सारा कर्ज चुकाऊंगा। माँ प्रकृति, 5 जून मैं पर्यावरण दिवस मनाऊंगा। माँ पहले थोड़ा मुस्काई, कुछ आंखें नमसी हो आई, बोली अश्रु आंचल में समेटकर, रुद्र रुदन दोनों को सहेज कर, पुत्र कहो भला आज तक माँ का कर्ज किसी ने चुकाया है? मैंने अपनी रगों से सींचा तुझे, तू मेरा कर्ज उतारने आया है। क्या लौटा सकता है मुझे मेरा यौवन, जो तुझ पर बलिदान किया? हरी भरी धरती, वो स्वच्छ हवा, जिसको तुझ पर मैंने वार दिया। निरुत्तर सा खड़ा वो मानव, शर्म से सर झुकाया था। देखो, विनाश का कारक मानव प्रकृति का कर्ज उतारने आया था। जो कर सको प्रकृति पर एहसान, तो इतना ना मुझको बर्बाद करो। मेरी जमीन, जल और वायु को अपने लालच से आजाद करो। बस यही उपहार मुझे दे दो, जो सदा लुटाते आए हो। वृक्ष की छैया कर दो सर्वत्र, जिसको काटते आए हो। प्लास्टिक पन्नी को अलविदा कर, कपड़े का थैला अपनाओ। मेरे जीवों की घुटती सांसों से कार्बन की परत दूर हटाओ। भूल का प्रायश्चित करें सभी, एक दिन नहीं हर दिन हरियाली हो। हवा नदी जमी हो शुद्ध स्वच्छ, चारों तरफ खुशहाली हो। समझे प्रकृति के संदेश, गिरते जलवायु स्तर को उभारे हम। बने मानव, मानवता सहेज कर, माँ प्रकृति का कर्ज उतारे हम। तो मेरे श्रोतागणों, अगर हम सच में माँ प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसे सहेज कर रखें। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस धरा को जब विज्ञान मिला, मानव मस्तिष्क को मान मिला, केवल धरती के भीतर ही नहीं, शोध के लिए आसमान मिला। कहीं पारस मिला, कहीं पत्थर, कहीं कड़वे तेल की धार मिली। जब औजारों पर हाथ रखे, तो आविष्कारों की कतार मिली। मानव फिर पल पल बढ़ता गया, विज्ञान की सीढ़ी चढ़ता गया। कोई सही गलत का भान नहीं, अपने ही नशे में बढ़ता गया। कल कहीं नहीं थी कल, लेकिन अब कल ही कल यहाँ दिखती है। ऊंचे ऊंचे कंक्रीट के वन, डाली ढूंढे नहीं दिखती है। विज्ञान की गोद में बिठा लिया, एक नया विश्व ही बना लिया। क्या सही क्या नहीं सही, यह तो मस्तिष्क से मिटा दिया। यह धरा भी कब तक धैर्य धरे, यह रोष अपना दिखाती है। कहीं भूकंप से कांपता जीवन, तो कहीं सुनामी तड़पाती है। ये अपने ही कर्मों का फल कि अम्ल वर्षा होने लगी। इस बार सुनो स्मोग से, तो दिल्ली ही धुएं में खोने लगी। विज्ञान की शक्ति को परखा, पर असर धरा पर ना जाना। परमाणु बम का आविष्कार, जैसे खुद फांसी चढ़ जाना। बढ़ जाना यूं आंखें मूंदे, विज्ञान पकड़ यह ठीक नहीं। हम करें तबाही और भोगे आने।

वाले यह ठीक नहीं। आंखें खोलो अंतर मन की, विज्ञान ज्ञान है विवेक का, है जन जन का विज्ञान यह है अमृत नहीं किसी एक का। विवेक को अपनाएं हम, संयम से हम काम लें, थोड़ा हम इसका उपयोग करें, कुछ भविष्य के लिए संभाल लें। और अब एक और कविता आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, संतुलित आहार पर। शरीर को रोगों से बचाए, करे ऊर्जा का संचार, तन सृजन में हो सहयोगी, वही है संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट वही है जिसमें हम बॉडी बिल्डिंग की भी बात करें, जिसमें प्रोटेक्टिव फूड भी हो और एनर्जी गिविंग फूड भी हो। और अब हम बारी बारी इस पर चर्चा करेंगे। ABCD तो हमने सीखी, अब विटामिनों में इन्हें स्वीकार करो। ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी से रिकेट्स रोगों का प्रतिकार करो। ई और के को भी पाने को, पीली हरी सब्जियां हम खाएं, खनिज लवण को भी शामिल कर हर बीमारी को दूर भगाएं। शरीर सृजन को उचित गति दे, दुग्ध उत्पाद दालें अपनाएं, मछली और अंडे से भी प्रोटीन को शरीर में पहुंचाएं। ऊर्जा का भरपूर स्रोत, वसा कार्ब्स को पहचाने, सभी अनाजों का करे सेवन, घी तेल से शक्ति हम मांगे। रेशे की भूमिका भी कभी न जाए भूल, पाचन को दे गति ऐसे फल खाएं भरपूर। जल बिन ना जीवन कहीं, बात नहीं ये अनजानी, दो तिहाई धरती और दो तिहाई हम भी पानी। पानी बिन ना चले क्रिया, बिन पानी सब सुन, 7 से 8 गिलास पानी पिए सभी जरूर।

0: सुबह का ही प्रोग्राम में अभी आपने लता मंगेशकर के गाए हुए भजन सुने और आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आज का दिन और किन मायनों में खास है।
2: And today is 30th of May. We celebrate a crop that may seem ordinary but plays an extraordinary role in feeding the world. We are talking about the humble potato. So Jaya, let me ask you, do you like having potatoes?
1: बिल्कुल, समोसा हो या फिर पराठे हो, आलू की तो जरूरत हर जगह है और बहुत ही क्या भरपूर पोषक वाला खाना है ये।
2: दैट्स ट्रू। आई थिंक आई डोंट नो एनीवन हु डजंट लाइक पोटैटो, एंड बी इट मैश्ड, बेक्ड, रोस्टेड, फ्राइड और एडेड टू योर फेवरेट करी, दिस वर्सेटाइल क्रॉप हैज फाउंड प्लेस

0: on dinner tables across the globe. But potatoes are much more than a comfort food. They are a vital source of nutrition and income for millions of farming families. And this is known as Solanum tuberosum. This is the scientific name of potato. It's enjoyed by billions of people every day, not just in India, but across the world. International Potato Day also reminds us of the potato's important role in tackling hunger, reducing poverty and helping communities adapt to environmental challenges. The day builds on the legacy of the International Year of the Potato, celebrated in 2008, firstly highlighting how this simple crop contributes to more sustainable and resilient food systems.
1: और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इस वर्ष आलू दिवस की थीम है विश्व आलू दिवस, उसे रखा गया है कि जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है. तो बिल्कुल रसोई का एक ऐसा राजा जिसके बिना हर सब्जी अधूरी है, तो इस पर हमें बात करना ही चाहिए. सब्जियों का राजा स्वाद में सबसे ताजा, और आज है विश्व आलू दिवस, तो आलू का मजा लीजिए ज्यादा से ज्यादा.
0: दैट्स ट्रू. सो व्हाट आर यू हैविंग टुडे जया?
1: Let's see. जाने के बाद देखा जाएगा.
0: All right, and let's talk about the particular day. How is this 30th of May important? In 1539, on this particular day, Hernando de Soto, a Spanish explorer, landed on the west coast of Florida, marking a significant event in the history of European exploration of the southeastern United States.
1: और हमने जैसा कि शुरुआत में ही बात की थी कि आज का इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं है बल्कि एक बदलाव की गवाही है. जहां देश को पहला हिंदी अखबार मिला, वहीं 1919 में इसी तारीख को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश दमन के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर राष्ट्रीय अस्मिता को सर्वोपरि रखा था.
0: In the year 1631, Gazette de France, the weekly first magazine of France, was published.
1: और इसके कुछ दिन बाद अगर हम जाएं तो 1966 में पहला अमरीकी अंतरिक्ष यान सर्वेयर एक प्रक्षेपित किया गया था, और नासा का यह ऐतिहासिक मानव रहित मिशन पूरी तरह सफल रहा था जिसने विज्ञान की एक नई इबारत लिखी थी.
0: इन द ईयर 1975 द यूरोपियन स्पेस एजेंसी वॉज फॉर्मड.
1: और आज ही के दिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह बना भारत का 25वां राज्य.
0: And moving on to our next segment, here we are going to talk about some special personalities. So let me begin with the first person, and he is Gopi Sundar. Today is his birthday. An Indian music director, programmer, playback singer, songwriter, actor and performer who works in the Malayalam, Telugu and Tamil film industries. He began his career composing music for television commercials and is credited with writing nearly 5,000 jingles. As a keyboardist, he has collaborated with many music directors, including the composer duo Vishal Shekhar, and he has won several accolades for his soundtracks and even film scores, be it a National Film Award, a Kerala State Film Award, and also two Filmfare Awards of South. So let's enjoy a beautiful Malayalam song from the film Charlie, whose music has been composed by him.

श्रोताओं, आज जहां पूरा देश हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहा है, वहीं हिंदी साहित्य जगत के लिए आज का दिन एक और बड़ी याद लेकर आता है। आज हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने भाषा, साहित्य और समाज को एक सूत्र में पिरोकर देखना सिखाया। साहित्य जगत के एक और बड़े स्तंभ का नाम कैलेंडर में आज के दिन दर्ज है। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ साहित्य के प्रख्यात लेखक, शोधकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित देवेगौड़ा जवरेगौड़ा जी की, जिन्हें दुनिया आदर से देजव गौ से भी जानती है। आज के ही दिन साल 2016 में 100 वर्ष का गौरवशाली जीवन जीने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उन्होंने कन्नड़ भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई बड़े आंदोलन किए, बच्चों के लिए बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियां लिखी और 34 से अधिक

0: जब कला और सहेला के उस गलियारे की तरफ हम मुड़ ही गए हैं तो उन हस्ती का भी जिक्र करते हैं जो भारतीय सिनेमा के कैनवास पर जज्बातों को बेहद खूबसूरत रंग से बिखेरे हैं। आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्देशक और लेखक ऋतुपर्ण घोष जी की पुण्यतिथि है। घोष एक ऐसे संवेदनशील फिल्मकार थे जिन्होंने इंसानी रिश्तों की परतों को कैमरों के जरिए बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर जारी है उर्दू सर्विस। अब खबरें नशर की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है और आप मुझे अख्तर से खबरें सुनिए। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नजर LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जदगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सर मिन आंग हेलाइंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार में बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे हासिल किए। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वे LPG के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामा निगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मुहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मुहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है जिसमें आजाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत तगजिया और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खास तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जदगी में जो पहले 88.6% थी इजाफा होकर 90.6% हो गई है। आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जदगी के बाद की निगहदाश्त मिलती है जबकि माओं को पहली से माही में मिलने वाली जदगी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले 70% थी जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% पर बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के

सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, पीएमजेएवाई और इफ्जान सेहत के तौसीशुदा इकदाम से इफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग हेलियांग भारत के 5 रोजा दौरे पर बिहार के बुद्धगया पहुंचेंगे। उनके हमराह एक आला सतह का वक्त भी होगा जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सर यूमिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का ये पहला दौरा है। म्यांमार के सदर यूमिन ऑंग हेयोंग बोधगया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे। यहां वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तजारती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रंजीत रेजवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा हैं, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशिक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। कर्नाटक के सुदूर शोर है वजी अला सिद्धरमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज से पहले 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डी के शिवकुमार वजी अला सिद्धरमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धरमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजी अला के तौर पर फरार अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मकामी बल्दियाती इंतखाबात में बसर इकदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणि अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह रही कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मकामी बलदियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सर सीपी राधाकृष्ण पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आजादी से लेकर इंसानी तरक्की और मियार जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। नायब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीमशान इम्तिजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय जियाफत का चेहरा पेश करता है। नायब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना ताउन जारी रखेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में ज्यादाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और

0: तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4 चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में वो चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलेट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ अब कल हैदराबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और डिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जीत के लिए मुकर्रर 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 919 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से मां और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। म्यांमार के सद मिन ऑंग हेलंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार में बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलेट्स का बोलबाला रहा। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश है अखबार जर्री का प्रोग्राम शम्मे फरोजा।
2: जाहिल जालिम अपने हद से आगे बढ़ जाने वाला, यह सिफत है अमली कुवत की बे एतदाई की और जहल अकल जहनी कुवत की बे एतदाई का नाम है। जुल्म का मुकाबिल अदल और जहल का मुकाबिल इल्म है। अदल और इल्म जो इंसान को हासिल नहीं, उनको हासिल करने के लिए उसकी अमली कुवत अदल में मियान रवि और एतदाल जहनी कुवत पर इल्म मारफत की जरूरत है। दुनिया के तमाम आसमानी सहीफे, तमाम मजहबी किताबें, तमाम अखलाकी किस्से और इंसान के बनने बिगड़ने की तमाम हिकायतें जुल्म जहल और अमले सोहले की दो रंगियों से मामूर हैं। एक तरफ जुल्म जहल शर तारीकी, दूसरी तरफ अदल अमले सोहले और नूर की हिकायतें दास्तानी और तारीखी हैं और जिन अफराद ने इन इंसानी जिम्मेदारियों को कबूल किया उनकी तारीफ और जिन्होंने इनसे इनकार किया उनकी बुराई के बयानात हैं। हर कौम के सामने उसके बड़े अशखास और अकाबिर की जिंदगियों से इल्म जहल, जुल्म अदल, खैर शर, बदी व नेकी की मार का आराइयों की इबरत आमोज मिसालें हैं, ताकि हर कौम जुल्म जहल शर फसाद के इबरत खेज नतीज से बचकर अदल, खैर और नेकी की मिसालों से फायदा उठा सके। तौरात, जबूर, इंजील और कुरान हकीम के बेशतर मजामीन क्या हैं? जालिम, शरीर और फसादियों की तबाही, आदिल, नेक और अमन पसंद अफराद की सआदत, फलाह और कामयाबी की नजीरें हैं, ताकि उनको सुनकर जालिम आदिल बने और शरीर नेक हों। चुनांचे अदल को सामने रखते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुम्हारे दरमियान अदल करूं। अदल की दुनिया का कानून सब के लिए यकसा है, किसी के लिए भी इम्तियाजी सलूक नहीं। कुरान करीम में खुदावंद करीम अपने नबी को ये ऐलान करने का हुक्म देता है, यानी मेरे लोग इंसाफ पसंदी अख्तियार करने पर मामूर हों। मेरा ये काम नहीं है कि किसी के हक में या किसी के खिलाफ तासुब बरतूं। मेरा ताल्लुक तो सभी इंसानों से यकसा है और वो है अदल इंसाफ का ताल्लुक, जो हक है सबके लिए हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमसे कबल जो उम्मतें गुजरी वो इसीलिए तबाह हुई कि वो लोग कमजोर लोगों को कानून के मुताबिक सजा देते थे और ताकतवर लोगों को छोड़ देते थे। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर

इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब सुनिए जनाब मोहम्मद हसन का तहरीर करदा ड्रामा, उनवान है लम्हों का कैदी, पेशकश अनवर खान की है।

0: इंतजार रूबरू हजरत आलमे आलमियान जिल्ले सुभानी गेती पना सिराजुद्दीन अबू जफर शहंशाह हिंद मुजरा करो अदब से।
1: गजब हो गया, जिले सुभानी की हमशीरा सत्यपति जी को
2: जल्दी कहो
1: क्या हुआ।
2: लाल किले के फिरंगी किलेदार ने लाल पर्दे के पास रोक दिया है।
3: मगर क्यों?
1: मुझे मालूम नहीं जिले सुभानी।
3: वो तो हर साल के दस्तूर के मुताबिक हमारे हाथ में राखी बांधने आ रही थी।
4: वो दस्तूर से वाकिफ न होंगे, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है।
3: ये मुगल

0: बेटी, जरा आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं।
1: मुझे मालूम है।
0: ये आज क्या कथा ले बैठे हो? 16वां रोजा है, रोजे रमजान में गुस्सा शैतान का काम है बेटी।
1: मगर जब जी जिल्लतों से टूट जाए, सितम अपनी बुलंदियों से गुजर जाए और सब्र का पैमाना छलकने लगे तो आदमी किसकी तरफ देखे, कैसे चुप रहे?
0: बेटी, तुम्हारे दिल का दर्द हम जानते हैं, मगर हमारे दिल का दर्द जानने वाला वही एक पाक परवरदिगार है।
1: हाँ बेटे, मैं का ठीक कहती हूँ। चिराग रात भर जलता है, लोग इससे रोशनी पाते रहते हैं, मगर सुबह को इसकी लौखड़ाती लौ को देखने वाला कोई नहीं होता।
2: वजीरे सल्तनत किबला हकीम साहब बारियाबी चाहते हैं।
1: इजाजत है।
3: मुजरा अर्ज करता हूँ आलमपना, हुजूर का मिजाज तो बखैर है?
1: बस कुछ नकाहत है।
3: जहाँ पना से हकीर ने अर्ज किया था कि रमजान में रोजे न रखें, मगर आलमपना ने तवज्जो न फरमाई। इस साल तो अभी से आग बरस रही है, पता नहीं मौसम गर्मा इस बार क्या रंग दिखाएगा। 16वां रोजा आन लगा, कमजोरी और नकाहत ना हो तो ताज्जुब है।
1: फिरंगी रेजिडेंट से हमारी जानशीनी के बारे में कोई मरासला वसूल हुआ?
3: फकीर ने फिरंगियों की शरायत खिदमत आली में अर्ज कर दी थी।
1: क्या फिरंगियों ने ये शरायत लिखकर भेज दी है?
3: आलमपना, फिरंगी रेजिडेंट के कासिद ने ये शरायत बयान की है।
1: बयान की है? आखिर जबानी मुआहदे की कीमत क्या है?
3: शायद उन्हें लिखकर भेजने की जरूरत नहीं समझी।
1: यही तो हम पूछते हैं, आखिर क्यों नहीं समझी गई?
3: क्योंकि
1: बयान हो,
3: क्योंकि आलमपनाह के वारिस और जानशीन शहजादा क्वैश ने उन शरायत को मंजूर कर लिया है।
1: ये नामुमकिन है।
3: खामोश। जहां पनाह, ये हकीकत है।
1: हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों कर हुआ। लाल किले को खाली करने, निस्फ पेशकश और शाह की जगह शहजादे के लकब की जिल्लत हमारे खानदान ने बखुशी कबूल कर ली।
3: हकीर के पास इन सवालों का जवाब नहीं। सल्तनत के खैरखा की हैसियत से हकीर सिर्फ इस कदर अर्ज कर सकता है कि इस वक्त मसलहत यही थी। ये हकीर इस वक्त एक अहम खबर लेकर खिदमत आली में हाजिर हुआ था।
1: फिरंगियों की हिंदुस्तानी फौज बिगड़ गई है और मेरठ से दिल्ली आ गई है, हर तरफ लूट मार हो रही है।
0: खुदा खैर करे।
3: और फिरंगी अफसर हमारे पास ये दरखास्त लेकर आए हैं कि हम उनकी हिफाजत करें, उन्हें उनके हिंदुस्तानी सिपाहियों से बचाएं।
0: उनके सिपाही शहर वालों को लूटे मारें तो उसकी जवाबदेही तो मुए फिरंगियों को करनी चाहिए।
1: नहीं बेगम, इनकी मंथक निराली है। परछाइयां इंसानों की हिफाजत करें और हथियार परछाइयों को कत्ल करते गुजर जाएं।
3: आलमपनाह, फिरंगियों को इत्मीनान दिला दीजिए कि हमसे जहां तक बन पड़ेगा उनके जानो माल की हिफाजत करेंगे।
0: मैं कुछ नहीं समझी जहां पना।
1: दिल्ली का बूढ़ा शहनशाह गुजरे दिनों की परछाइयों के सिवा और क्या है? हमारे पुरखों के पास आने वाले जमाने के ख्वाब थे जो फतेहपुर सीकरी और ताजमहल बन गए। हमारे पास कुछ है तो बीते दिनों की परछाइयां, गुजरे लम्हों की शान और उनके गुजर जाने का कलक। इस शान और कलक की कोई निशानी है तो हमारे शेर। हड्डी हड्डी मेरी ऐ सोज निहां जलती है, शमा जलती है पर इस तरह कहां जलती है।
0: हुजूर का कलाम ताजमहल की तरह रहती दुनिया तक जगमगाता रहे।
1: बेगम, कोई नहीं जानता कि दिल्ली के शहंशाह को न ताकत की हवस है न हुकूमत की। हमें अमन का एक गोशा चाहिए जहां हम दो सांस चैन के ले सकें, मगर इसकी भी मोहलत जमाने ने नहीं दी। वक्त का ही कितना हौलनाक मजाक है, हम मजबूर हैं और मुख्तारी और आजादी की सारी तोहमतें हमारी गर्दन पर। बेगम, सामने देखो, जहां जमीन और आसमान मिलते नजर आ रहे हैं वहीं कश्तियों का पुल है, उस पर नजर रखो।
0: एक नजर आसमान को भी तो देखिए कैसा सुर्ख हो रहा है। मुझे

0: कल सुबह हुमायूं के मकबरे में हमारा इंतजार करो बख्त। हाँ, अब तुम जा सकते हो।
1: मेरे लिए क्या हुक्म है आलमपना?
0: कूच की तैयारी करो मेरे बेटे, सामान सफर दुरुस्त करो। हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है
1: आलमपना।
0: आदमी की असल परख इन्हीं मौकों पर होती है, उसके जौहर इन्हीं आजमाइशी लम्हों में खुलते हैं। हिम्मत न हारो, यही वक्त हिम्मत और हौसले का है।
1: आलमपना के हुक्म की तामील होगी।
0: इंसान वक्त के हाथ का खिलौना ही तो है। चलो चलें।

अभी आप सुन रहे थे जनाब मोहम्मद हसन का तहरीर करदा ड्रामा उनवान था लम्हों का कैदी। इस ड्रामे का दूसरा हिस्सा अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 11:30 पर नशर किया जाएगा। पेशकश थी अनवर खान की। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

आराधना फिल्म का नगमा भी अपने किशोरदा की आवाज में सुना। प्रवीण की अगली पेशकश आशा भोसले की आवाज में है, फिल्म है सावन की घटा।

0: বলো কুছ তো বলো বলো বলো।
1: जिद्दी फिल्म का नगमा भी अपने मोहम्मद रफी की आवाज में सुना, और ये है लता मंगेशकर, फिल्म का नाम है पारस मणि।

अशोक कुमार को अपनी सुना फिल्म थी न्यू दिल्ली। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुनिए जनाब मोहम्मद हसन का तहरीर करदा ड्रामा लम्हों का कैदी। इस वक्त आप इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनेंगे।

0: लड़ाई खत्म हो गई जहां पर ना, अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा काबिज हो गए, मजबूरन हजरत हुमायूं के मकबरे में पनाह लेनी पड़ी है।
1: फिरंगियों ने हमारे पैगाम का जवाब भिजवाया,
0: यहाँ खुसूसी कासिद पैगाम लाया है।
1: क्या पैगाम है? कासिद को बुलाया जाए।
0: मेजर हैटसन बारियाबी की इजाजत चाहता है।
1: क्या फिरंगी हमें मुजरिम गर्दानते हैं?
0: कासिद का यही बयान है, मगर मेजर हैटसन इसके लिए तैयार हैं कि हुजूर वाला और मलका मौजमा की जानों की जिम्मेदारी ले ले।
1: 80 बरस के बूढ़े की जान की जिम्मेदारी से क्या हासिल? अलबत्ता क्या वो खानदान मुगलिया के शहजादों और शहजादियों की जानों की जिम्मेदारी ले सकता है?
2: आलम पना गुस्ताखी माफ फरमाएं तो ये गुलाम कुछ अर्ज करे।
1: हमने अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया है। तुम नावाकिफ नहीं कि सारे मामले में उसकी मर्जी पर राजी रहा हूं। अब अगर उसकी यही मर्जी है कि हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का खात्मा मेरी मौत पर हो तो क्या चारा है?
2: तो फिर हुजूर वाला खुद को मेजर हसन के सपोर्ट करने को तैयार है?
3: आलम पना माफ कीजिएगा, तकल्लुफात का मौका नहीं है, बेइजाजत चला है।
1: आ वक्त हाँ, क्या आप भी कुछ कहने को बाकी है?
3: बहुत कुछ बाकी है आलम पना, हमने सिर्फ दिल्ली हारी है, हिंदुस्तान नहीं हारा।
1: बस हाँ, हालात का रुख हमारे खिलाफ,
2: चारों तरफ से फिरंगी फौजें दिल्ली की तरफ यूरिश कर रही हैं आलम पना, यहाँ से बच निकलना भी दुश्वार है।
3: फिरंगी जासूसों को हर जगह फिरंगी फौजें नजर आती हैं आलम पना, आपके जानिसार आज भी पूरे हिंदुस्तान में बिखरे हुए हैं, हर शख्स की नजरें आपकी जात और आपके हुक्म पर लगी हुई हैं। मेरे साथ आज भी 10,000 बहादुर मुजाहिद सर से कफन बांधे हुए हैं।
2: मैं जहां पनाह को हरगिज ऐसा मशवरा न दूंगा, जो अंजाम दिल्ली का हुआ वही दूसरी जगहों का
3: हरगिज नहीं। दिल्ली पाया है, तख्त है, फौजी कला नहीं है, ऐसे मुकामात लड़ाई के लिए मुनासिब नहीं होते। दिल्ली हारी जा सकती है, हिंदुस्तान नहीं हारा जा सकता।
1: बस खां की राय में वजन है,
3: गुस्ताखी माफ फरमाई जाए। ये लड़ाई अंग्रेजों ने जीती नहीं है, हमने हारी है।
2: बख्त खां को फरंगियों की फौजी कुव्वत का अंदाजा नहीं है आलम पना,
3: बख्त खां ने उनके बाजू आजमाए हैं, उनके हथियारों का मजा चखा है और मैदान जंग में उनका मुंह एक दो बार नहीं बार बार फेरा है। आलम पना मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए, मेरे साथ तशरीफ ले चलिए, मैं पहाड़ों में बैठकर ऐसी जबरदस्त मोर्चाबंदी करूंगा क्या अंग्रेजों के फरिश्ते भी वहां ना पहुंच सकेंगे।
2: इसका सबूत?
3: इसका सबूत वो तमाम हिंदुस्तानी रियासतें हैं जो अभी तक खामोश बैठी देख रही हैं कि ऊंट किस कल बैठता है। यहां पना यकीन फरमाएं कि अगर हम महफूज मकामात से अंग्रेजों का मुकाबला करेंगे तो पूरा मुल्क हमारा साथ देगा, सामान रसद हथियार आदमी सब कुछ मिल सकता है। जहां पनाह के सामने अर्ज करना, आफ्ताब को चिराग दिखाना है।
0: हजरत दिल सुभानी इन हालात की ऊंच नीच से खूब वाकिफ हैं।
3: हुजूर के पुरखों ने इससे बढ़कर शिकस्तों और नाकामियों का मुकाबला किया है। शहंशाह बाबर कई बार दुश्मनों में ऐसे घिरे कि तरह भागने के सिवा चारा न था। शहंशाह हुमायूं कैसी बेबसी में ईरान गए थे, मगर उनके इस्तकलाल ने तमाम मुश्किलात पर फतेह पाई। आप भी उसी बज्म की शम्मा है आलम पना, आपसे तो मुल्क के बच्चे बच्चे को हमदर्दी है। अगर हुजूर मेरे साथ तशरीफ ले चले तो चंद रोज में मैं हर चीज दुरुस्त कर दूंगा और दिल सुभानी को हर तकलीफ से महफूज रखूंगा।
0: हम गौर करेंगे।
4: आओ जीनत महल, हम तुमसे शर्मिंदा हैं, हमारी रफाकत में दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला।
5: आपकी जूतियों से लगी रहूं यही मेरे लिए बायस शरफ है मेरे सरताज, लेकिन हुजूर वाला हमारा जुर्म क्या है?
4: बुढ़ापा और कमजोरी, पूरा हिंदुस्तान बूढ़ा और कमजोर हो गया है जीनत।
5: हुजूर वाला ने तो कंपनी की हिंदुस्तानी फौज को संभालने और काबू में रखने की कोशिश की।
4: हार नेकी को गुनाह बना देती है जीनत,
5: और हम हार चुके हैं।
4: हाँ जीनत, हमने शायद सब कुछ हार दिया है। बख्त खां कहता था हमने सिर्फ दिल्ली हारी है, जंग नहीं हारी। रास्ते सिर्फ दो हैं, एक तरफ बख्त खां जंगलों और पहाड़ों से जंग को जारी रखना चाहता है, दूसरी तरफ फिरंगी कासिद इलाही बख्त जो फिरंगी

0: आलम की तरफ से जान की अमान देने आया है। इज्जत की मौत या जिल्लत की जिंदगी, बोलो तुम्हें क्या पसंद है?
1: आलमपना, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। आपके कदमों पर जान दूं, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
0: फैसला बड़ा दुश्वार है।
1: जंगलों और पहाड़ों में भी हुजूरे वाला मेरे कदम न टकमगाएंगे। आप इत्मीनान रखें।
0: सीनत,
1: आपके साथ जिंदगी का सुख पाया है तो दुख भी मार दूंगी। मेरी जान आप पर कुर्बान, आप मेरे लिए जरा भी फिक्रमंद न हो।
0: तुमने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 80 बरस के बूढ़े मौत से नहीं डरा करते, मगर हम सोचते थे हमारे फैसले दूसरों के साथ बेइंसाफी तो न करेंगे।
2: आलमपना, आपकी उम्र अब जंगलों और पहाड़ों में मारे मारे फिरने की नहीं, जिला वतनी की तकलीफें और लड़ाई की सख्तियां झेलना इस उम्र में नामुमकिन है।
0: हम सभी सख्तियों के लिए तैयार हैं।
2: आलमपना, इस तरह बख्त खां के हमराह चले जाएंगे तो फरंगियों के नजदीक मुजरिम करार पाएंगे।
0: और इस वक्त क्या हम उनके नजदीक मुजरिम नहीं हैं?
2: नहीं, हुजूर वाला से अंग्रेज इस वक्त शायद पासपोर्ट न करें। आपका कसूर ही क्या है? फरंगियों की हिंदुस्तानी फौज ने बगावत की, आपको हिमायत पर मजबूर किया और हुजूरे वाला ने मजबूर होकर उनका साथ दिया, लेकिन आप बख्त खां के साथ हो गए और फिरंगी फतह याब हो गए तो जान बख्शी मुमकिन न होगी।
0: फिरंगियों की रहमदिली पर कैसे भरोसा किया जा सकता?
2: मसलहत का तकाजा यही है आलमपना। फिरंगियों से मैं सारे मामला तय करा दूंगा और आप पर हर्फ ना आने दूंगा।
0: तुम?
2: जी हां आलमपना, आखिर एक उम्र उनसे मामलात में सर्फ हुई है।
0: रास्ते बंद हैं और हमें जल्द फैसला करना है।
2: हुजूर वाला, गुस्ताखी मुआफ, बरसात सर पर आ गई है, जंगल पहाड़ों का सफर और बख्त खां की फौजों के साथ मारे मारे फिरना अपने को जान बूझ कर हलाकत में डालना है। आपकी इस ज़ईफ़ी का जमाना है। सारी उम्र हुजूर वाला ने ऐशो आराम में गुजारी, अब ऐसी सख्तियां कैसे बर्दाश्त होगी? जहां बना इस गुलाम ने भी जंगो जदल कर देखा है, अब बागियों के कदम उखड़ गए हैं, अब ये कहीं भी मुकाबला ना कर सकेंगे और नाहक इनके साथ आप भी अपनी जिंदगी को मुसीबत में डालेंगे।
0: जब बहादुरों ने हमारी दुहाई दी तो हमने उन्हें मायूस नहीं किया, क्या अब हम उन्हें वापस लौटा दें?
2: जंग का नक्शा आपके सामने है जहां पना, हारी हुई फौज का साथ देना अकलमंदी नहीं है।
0: ये हारे हुए हिंदुस्तान का साथ देने का सवाल है इलाही बाग।
2: बहरहाल बाजी हारी जा चुकी है।
0: हमारा दिल कहता है कि हमारी जगह मैदान जंग में है। सख्तियां हमें नहीं रोकती, मौत हमें नहीं डराती, मगर हमारी ज़ईफ़ी दामन पकड़कर खींचे लेती है और बुढ़ापा एक कदम आगे बढ़ने नहीं देता। इलाही बख्श, वक्त कितना जालिम है, मजबूरियों की बेड़ियां पांव में डाल देता है और फैसले का इख्तियार देकर कह कहे लगाता है।

0: ये हाल पर छोड़ दो और बिस्मिल्लाह करो।
1: आलम पना, मुझे आपसे ताकत नहीं, सरपरस्ती चाहिए।
0: वक्त कम है बफ़ां, तुम्हारी जान 80 बरस के बूढ़े से कहीं ज्यादा कीमती है। वक्त जाया न करो, जाओ कुछ काम करके दिखाओ। मेरे खानदान से नहीं, न सही तुम या कोई और हिंदुस्तान की लाज रखे, हमारी यही आरजू है। हमारी फिक्र न करो, अपना फर्ज अंजाम।
1: आलम पना, मेरे हाथ कलम मत कीजिए, हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है।
0: हम मजबूर हैं बहादुर।
1: मैं आपको हिंदुस्तान का वास्ता देता हूँ आलम पना, आपको खानदान मुगलिया की गैरत और हमियत का वास्ता देता हूँ। मैं आपको उन हजारों शहीदों का खून का वास्ता देता हूँ जो फरंगियों से आजाद होने के लिए मुल्क पर से कुर्बान हुए हैं। मेरे साथ आइए
2: आलम पना, बख्त खां की बातों में मत आइए, ये आपको धोखा देगा।
1: अंग्रेजों के जासूसों को हर जगह धोखा नजर आता है।
2: आलम पनाह, जानते हैं कि तुम इनकी आड़ में खुद हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हो। शेरशाह के बाद मुगलों ने पठानों से हुकूमत छीनी थी, तुम आज उसका बदला लेना चाहते हो। मुगलों से दिल्ली की हुकूमत छीनकर फिर शेरशाह बनने के ख्वाब देख रहे हो।
1: खामोश फरंगी के जासूस।
0: बख्त खान, तलवार नियाम में रख लो।
1: जिले सुभानी के सामने तलवार चलाना बदतमीजी न होता तो मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर देता। गद्दार, तूने आखिरी मुगल ताजदार के सर का नहीं पूरे हिंदुस्तान का सौदा किया है। तारीख कभी गद्दारों को माफ नहीं करती। याद रखना कि फरंगी ताकत की नहीं, फरंगी दगाबाजी की जीत है। जिले सुभानी, खुदा आपका निगहबान हो।
0: बहादुर, मेरी दुआएं तेरे साथ।
2: मेजर हटसन और कंपनी के फौजी।
0: इलाही बख्श, इनसे पूछो क्या कंपनी हमारी जान लेना चाहती है।
2: मेजर हटसन आपकी जान लेना नहीं चाहते, आगे फैसला इनके इख्तियार में नहीं।
3: हमने हमेशा आपको नजर दी है, आज भी आपको नजर देने के लिए आए हैं। नजर पेश किया जाए।
0: मेरे शहजादो, मेरे शहजादो, तुमने अपने खून से आजादी की कीमत अदा कर दी। मेरे बहादुरो, तुमने वो कर दिखाया जो हमसे न हो सका। जीनत जीनत, देखो मिर्जा मगर, खिजर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर आखिरी सलाम के लिए आए हैं। देखो देखो मेरे बेटे कैसे सुर्ख रू हुए हैं।

अभी आप सुन रहे थे जनाब मोहम्मद हसन का तहरीर करदा ये ड्रामा उन्वान था लम्हों का कैदी। पेशकश अनवर खान की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुरेंद्र सेठी, मंजू मैनी, राम मैनी, एफसी माथुर, जमशेद जहां, हरी मेहता, टीआर मेहता, एचके घई, एलएन भारद्वाज, जलालुद्दीन, राजगुप्त और राजीव। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। म्यांमार के सदर मिन ऑन फ्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंच गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग अब अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है। इसराइल लेबनान जंग में शिद्दत आ गई है, जबकि अमरीका में बातचीत जारी है। अकवाम मुत्तहदा ने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा महफूज बनाने के लिए मुल्कों और टेक्नोलॉजी कंपनियों से और ज्यादा इकदाम करने को कहा है। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। भारतीय एथलीट्स ने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत कुल 7 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। म्यांमार के सदर मिन ऑन फ्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंच गए हैं। उनके हमारा एक आला सतह का वफद भी है, जो कई काबिनी वुजरा, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। म्यांमार के सदर मिन ऑन फ्लैंग बोधगया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में आज वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिजारती फोरम में शिरकत करेंगे। फिर को वो वजीराजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलों पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना है। हमारे नामानिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोस मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के इस सरकारी दौरे से उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है, जैसा कि मैदान जंग में सूरत हाल इस बात की शाहिद है। सदर पुतिन के हवाले से रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि मैदान जंग में सूरत हाल इस अंदाज में सामने आ रही है, जिससे ये कहने का हक हासिल हो गया है कि सूरत हाल अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई के दौरान कोई खसूसी वक्त बताना मुमकिन नहीं है। जनाब पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन में मुजाकरात जारी रखने को तैयार है और उसने मुजाकरात को कभी मुस्तरद नहीं किया। इसराइली फौजी कल मरजयूम के करीब जुनूबी लेबनान के दिब्बीन गांव में दाखिल हो गए। ये लोग लेबनान के काफी अंदर तक चले गए। अगरचे अमरीका में दोनों मुल्कों के फौजी अहलकारों की बराह रास्त बातचीत हुई। यह कदम इसराइल के ताजा हमलों के दौरान उठाया गया है, जिनमें कम अज कम 6 अफराद हलाक हो गए। लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि देर कौन और अल नहार और अब्बासिया पर किए गए हमलों में 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक बल्दियाती पुलिस एहलकार इब्बा गांव पर किए गए एक अलग हमले में हलाक हुआ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निपटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ता नजर को इलाकाई सलामती के नए नजरिए से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी और इस्तेमाल करदा फंड का तफसीली जायजा लेने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान समग्र शिक्षा 3.0 को ज्यादा मौसर, शफाफ और मुहासल मरकूज बनाने पर तवज्जो दी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब प्रधान ने कहा कि इस साल अहम स्कीमों को जम करते हुए मरबूत नुक्ता नजर अपनाया जाएगा। इन स्कीमों में समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, उदास, पीएम श्री और दीगर फ्लैगशिप प्रोग्राम शामिल हैं। जनाब प्रधान ने मजीद कहा कि ये अमल स्कूली तालीम के पूरे निजाम में ज्यादा तालमेल
और इसके असरात को यकीनी बनाएगा। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम अज कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामा निगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिना रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिये और माली तहफ्फुज़ के मैदान में भारत की खातिर खास तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। आदाद शुमार से पता चलता है कि 95.9% हामिला खवातीन को जजगी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सहमाही में मिलने वाली जजगी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामिला होने की मजमूई शरह TFR 2% पर बरकरार है और बच्चों की टीका अंदाजी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज इख्तियार के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। ये भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुनी हो गई है। पहले यह 33.3% थी, जबकि अब यह तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी में इस्तेकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत की लगातार तरक्की जाहिर हो रही है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने मुल्कों और टेक कंपनियों दोनों से कहा है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए महफूज तर बनाने के लिए और भी बड़े इकदाम करें। हाई कमिश्नर ने मौसर जाब्ताकारी, निगरानी और जवाबदेही पर इसरार किया। जनाब टर्क ने एक बयान में कहा कि डिजिटल दुनिया जो बच्चों को सीखने, समाज और तख्लीकियत से जोड़ती है और उन्हें उनकी हिफाजत, राजदारी और खुशहाली को दरपेश असल खतरात से रोशनास करवाती है। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीका में रिहायश पजीर तकरीबन 11,000 लिबनानी शहरियों को मुल्क बदली से दिए गए तहफ़ुज़ में तौसी करते हुए उन्हें अमरीका में अगले 6 महीने तक रहने और काम करने की इजाजत दे दी है। होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे की जानिब से इस फैसले का ऐलान किया गया। ये तौसी ऐसे वक्त में की गई है जब जनूबी लेबनान में इसराइली अफवाज और ईरान की हिमायत याफ्ता लेबनान में मुकीम मुसल्ला ग्रुप हिजबुल्ला के दरमियान झड़पें जारी हैं। ये तहफ़ुज आर्जी तहफ़ुज़ाती दर्जे TPS प्रोग्राम के तहत दिया गया, जो तनाज़ात या गैर मामूली सूरत हाल से मुतासर मुल्कों के लोगों को अमरीका में आर्जी तौर पर सुकूनत इख्तियार करने की इजाजत देता है। हांगकांग में जारी 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने सोने के 4 तमगे समेत कुल 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.93 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और डिफाई चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ग्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंच गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जंग अपने खात्मे की जानिब बढ़ रही है और
اسرائیل لبنان جنگ میں

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। अब खबरें नशर की जाएंगी।

0: आ गई है जबकि अमेरिका में बातचीत जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: मिस्टर नटवर लाल फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है साजन।
1: रेशम की डोरी

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये नगमा भी अपनी गोरा और काला फिल्म से सुना। अब सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म है मांग भरो सजना।

0: फिल्मी दोगानों का ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है अजमेर।
1: अजमेर का नाम आते ही एक ऐसी तारीखी जगह का तसव्वुर ज़हन में उभरता है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर, अन्ना सागर, ढाई दिन का झोपड़ा, जैन मंदिर और मेयो कॉलेज जैसे तारीखी मकामात वाक़े हैं। ये शहर अजय नेहरू के नाम से शिकंबरी चौहान हुक्मरान ने आबाद किया और ये 12वीं सदी तक चौहानों की राजधानी रहा। अजमेर अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके दामन में हिंदुओं का मशहूर तीर्थ स्थान पुष्कर है जो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इस बात के आसार मिलते हैं कि 8वीं सदी में राजा अजय राजा अव्वल ने अजय नेहरू किले की बुनियाद रखी जो बाद में अजमेर के तारागढ़ किले के नाम से मशहूर हुआ। 8वीं सदी के जो दस्तावेजात मिलते हैं उनमें भी अजमेर का जिक्र मिलता है। अजय राजा द्वयम ने शहरी इलाके को वसत दी, महलात तामीर कराए और चौहान की राजधानी शिकंबरी से अजमेर मुंतकिल की। मुगल शहजादे दारा शिकोह की अजमेर में पैदाइश 1615 में हुई। इसके अलावा मशहूर मुगल शहजादी जहांआरा बेगम की भी यहीं चाय पैदाइश है। अजमेर हिंदुस्तान के शिमाली मगरबी हिस्से में वाके है जो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तारागढ़ पहाड़ी की ढलान पर वाके अजमेर का मौसम गर्म है। यहां साल में तकरीबन 55 सेंटीमीटर बारिश होती है जो कि मानसून के महीने में होती है। मानसून का महीना जून से सितंबर तक रहता है। गर्मी अप्रैल से जुलाई तक पड़ती है। दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जाड़े का मौसम नवंबर से मार्च तक होता है जब दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। कभी कभी सर्द लहर भी चलती है जब दर्जा हरारत नुकतरीन जमात तक पहुंच जाता है। अजमेर के तारीखी और मजहबी मकामात में पुष्कर को काफी अहमियत हासिल है। ये शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाके है। यहां पुष्कर झील बहुत मशहूर है। इसके अलावा पुष्कर में 16वीं सदी का ब्रह्मा मंदिर है जहां हर साल मेला लगता है और दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। तारागढ़ का किला एक तरह से अजमेर की हिफाजत करता है जो कि चौहान हुक्मरानों की राजगद्दी थी। पहाड़ी पर बना किला हिंदुस्तान का एक कदीम किला है जिसे राजा अजय पाल ने तामीर कराया था ताकि अजमेर की देखभाल हो सके। इसकी दीवार 3 किलोमीटर घेरे में है। इस किले तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक चढ़ाई का रास्ता है। जब इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो यहां अंग्रेजी फौजों के ठहरने का इंतजाम कर दिया गया। अजमेर की सबसे मशहूर जगह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जो कि तारागढ़ की पहाड़ी के दामन में वाके है। इस जगह सफेद संगमरमर की कई इमारतें हैं। दो बड़े दालानों के अलावा एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसे हैदराबाद के निजाम ने नजर किया था। इसके अलावा मुगल शहंशाह अकबर और शाहजहां की बनवाई हुई मस्जिदें हैं। दरगाह पर एक बहुत बड़ा गुंबद है। एक अंदाजे के मुताबिक यहां रोजाना 1,25,000 जायरीन आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल 6वीं और 7वीं रजब को होता है। दरगाह के अंदर दो बड़ी देगें हैं जिनमें खास तौर पर उर्स के दौरान एक खास किस्म की खिचड़ी तैयार की जाती है जिसे जायरीन तबर्रुक के तौर पर खाते हैं। अजमेर के मशहूर मकामात में अकबरी किला और म्यूजियम को खास अहमियत हासिल है। शहर का ये म्यूजियम कभी मुगल शहंशाह शहजादा सलीम की रिहाइश का हुआ करता था। यहां मुगल और राजपूत राजाओं के जंगी साजो सामान रखे हुए हैं। ये मुगल तामीराती फन का नमूना है। इसकी तामीर की मंजूरी अकबर बादशाह ने 1570 में दी थी। ये वही जगह है जहां शहंशाह जहांगीर ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान से तिजारत करने के सिलसिले में फरमान पढ़ा था। तारीखी अहमियत की हामिल अन्ना सागर झील की तामीर महाराजा अन्ना जी ने करवाई थी जिसका दौर इक्तदार 1135 से 1150 तक था। झील के साथ मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बाग दौलत बाग के

0: से बनवाया। बाद में शाहजहां ने यहां एक बारादरी की तामीर करवाई। इसके अलावा अजमेर में एक जैन मंदिर भी बहुत मशहूर है, जिसकी तामीर 19वीं सदी में हुई थी। कहा जाता है कि इसमें 1000 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। यह जैन मंदिर फन तामीर का बेहतरीन नमूना है।
1: अभी आप सुन रहे थे अजमेर के हवाले से प्रोग्राम तारीख साज। पहली थी जनाब सालेह अब्दुल्ला की और रावी थे एसिड ममान। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव।
1: प्रगति यानी कि प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख मंच है जो प्रधानमंत्री द्वारा राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साझेदारी में परियोजनाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण की प्रत्यक्ष एवं वास्तविक समय में या रियल टाइम समीक्षा के माध्यम से उन्हें तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रगति इस बात का सशक्त उदाहरण है कि डिजिटल शासन किस प्रकार नीतिगत मंशा को वास्तविक और दृष्टिगोचर प्रगति में बदल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया प्रगति भारत में प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं और महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित कर चुका है। यह केवल एक समीक्षा मंच भर नहीं है बल्कि नौकरशाही की निष्क्रियता को तोड़ने, केंद्र और राज्यों के बीच टीम इंडिया के दृष्टिकोण को सशक्त बनाने तथा ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास है जहां निर्णय समयबद्ध हो, उनके क्रियान्वयन की अपेक्षा की जाए और परिणामों का आकलन किया जाए। दीपक जी, इस बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं और बताएं प्रगति किस तरह सरकार की अटकी हुई या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स या परियोजनाओं को तेजी लाने में मदद कर रहा है और लागत में वृद्धि को भी चेक कर रहा है।
2: आपने जैसे कहा कि ये पूरा जो प्रगति है एक ऑनलाइन सिस्टम है, वेब बेस्ड सिस्टम है। चाहे उसका जो शुरुआत में जब पहले समस्याएं आती हैं, जो जिस प्रोजेक्ट को इस पे रिव्यू किया जाता है वो भी आपके देखेंगे तो वेबसाइट पर इनका डिटेल डाला जाता है। जैसे आपने कहा इसकी जो मीटिंग होती है जो प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं वो भी ऑनलाइन ही होता है। तो देखा जाए तो एक तरह से एक पेपरलेस एक पूरा प्रोग्राम है। और दूसरी बात यहां तक की है कि प्रगति में हम देखेंगे तो आज तक की जब से शुरू हुआ है आखिरी जो हुए थे वो 51वां, तो इसपे ज्यादातर जो किया जाता है वो डिलेड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट प्रकल्प जो है देर हो गए हैं। तो उसपे ज्यादातर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आपका आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उन्हीं का ही होता है, जैसे रोड, रेल, पावर, कोल, हाउसिंग, इस तरह के सब्जेक्ट ज्यादातर आते हैं। उनके साथ साथ बहुत सारे सरकारी स्कीम, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े जिसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम, जो बहुत बड़े स्कीम है, जैसे कि वन नेशन कार्ड, आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जो हमारे हॉकर भाई लोग हैं उनको जो 10-10 हजार उसके बाद 20 और 50 हजार की लोन देने का जो व्यवस्था किया गया, स्वच्छ भारत मिशन, इनका भी रिव्यू होता है। इसके साथ साथ बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जिसपे लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं तो उनका भी पूरा डिस्कशन होता है। उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ, कोरोना को लेकर हुआ था, रेरा जो हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो है, जो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनकी ग्रीवेंसेस को, उनकी जो लोगों की जो शिकायतें हैं उनके ऊपर भी मीटिंग हुई है। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर पे भी हुआ है, आपका जनधन योजना पे भी हुआ है। तो देखा जाए तो जो प्रगति है इस पे खाली आधारभूत या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का नहीं है बल्कि सरकार की बड़े बड़े स्कीम और लोगों की जो समस्याएं होती है उनका भी मीटिंग में बातचीत होती है। जैसे हम जानते हैं सब कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डीएम होता है या उसका लागत में बढ़ोतरी हो जाती है तो देखिए ये देश के लिए तो नुकसान है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये होता है जब आप देर होता है तो लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जब आपका पैसे उसका जो लागत बढ़ जाता है तो हमारे एक्सचेकर पे, हमारे सरकार पे वो दबाव बढ़ता है। तो प्रगति ने ये दो चीजों को तो बहुत ही सही तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एड्रेस किया है, क्योंकि उनको हर स्तर पे देखा गया कि किस प्रोजेक्ट के किस कारण से डिले हो रहा है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे वो आपको एनवायरमेंट और जंगल की जो एनवायरमेंट और फॉरेस्ट का क्लियरेंस हो, कहीं पे आपका जैसे हम किसको यूटिलिटी शिफ्टिंग, जैसे बिजली के बड़े बड़े खंभे हटाना, कहीं पे आपको बड़े बड़े पानी की पाइप जो जमीन के नीचे होता है उनको हटाना, तो ये सब चीजें बारीकी से देखा जाता है। और बारीकी से देखने के बाद ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री तक जाता है, बहुत प्रोजेक्ट हैं जो उससे काफी पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, जो चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं वो प्रधानमंत्री आखिरी में उसका रिव्यू करते हैं। तो प्रगति होने से एक तो व्यवस्था ये हुई है कि जो प्रोजेक्ट विलंब हो रहे थे, जिनका कॉस्ट बढ़ रहा था, अगर प्रगति नहीं होती उनके कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाते, तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको कॉस्ट तो घटा नहीं पर कॉस्ट की जो बढ़ने में जो आगे की संभावना था उसको घटा दी गई। तो एक तरह से आपका जो जिसको मतलब फिजिकल बर्डन होता है हमारे ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन होता है, वो घटा और समय भी इसके कारण बचा जो बहुत डिले लगता है। जैसे आप हम सब जानते हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो रेलवे लाइन है जो कई सालों से अटका हुआ था वो प्रगति के कारण बहुत जल्द

0: संभव हुआ। जैसे हम जानते हैं नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, अगर वो जिस गति से जा रहा था और कई साल लग जाए तो उसको कम्प्लीट होने में, प्रगति होने से उस पर उसको त्वरित गति में उसका काम हुआ है। इसका होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई मीटिंग कोई एक प्रोजेक्ट का, जब हर ऑफिसर को हर ब्यूरोक्रेट को पता चलता है कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो आप देखिए कि वहां पे तत्परता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जितना मेरी जानकारी है मैं ये जानता हूँ, जैसे कि प्रगति मीटिंग की नोटिस आती है और जो जो प्रोजेक्ट का नाम आता है, आप कोई भी मंत्रालय में जाइए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में जाकर बात करिए, वो देखेंगे ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। क्योंकि वहां पे ये कोई नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री अध्यक्षता में ये कोई बोले कि आपने ये काम नहीं किया। और उसके कारण क्या होता है, अचानक से आप देखेंगे जो बैकग्राउंड कोऑर्डिनेशन है मीटिंग के पीछे की, जो एक दूसरे के साथ बातचीत करना, स्टेट गवर्नमेंट और सोचिए कोई मिनिस्ट्री से बात कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसको रिजॉल्व करने के संपूर्ण तरह से प्रयास करते हैं। याद है वाक्य कि कोई एक मीटिंग होने वाली थी जिसपे आपका टेलीकॉम का जो फाइबर नेटवर्क डाला जाता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का मीटिंग होने वाला था, काफी विलंब हो रहा था, मुझे क्योंकि मैं उसके बारे में लिखा था तो मुझे याद है, ठीक मीटिंग से एक दिन पहले जितने भी उसका स्टेक होल्डर है, जितने मंत्रालय है, सबने एक साथ कह दिया कि हमने सारी चीज रिजॉल्व कर दी है। तो देखिए इसका ब्यूटी है, क्योंकि आप देखेंगे तो कि जो है यही इसका जो है सुंदरता है कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग लेते हैं तो उससे पहले ही बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाता है, और जब कॉस्ट ओवररन नहीं होता है, लागत नहीं बढ़ने को हम रोक सकते हैं, समय की देरी को विलंब जो होता है उसको रोक सकते हैं, तो इसके देखिए सबका फायदा होता है, सरकार का होता है और जैसे मैंने कहा लोगों को सुविधाएं बहुत जल्दी मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया, सोचिए आपका जम्मू से श्रीनगर की जो रेलवे लाइन, सोचिए और 5 साल डिले हो जाता तो क्या होता, जो लोगों को इतना लंबा समय रोड से जाना पड़ता है या फ्लाइट की टिकट बहुत ज्यादा देकर जाना पड़ता है, उससे तो बच गए ना।
1: प्रगति में जो परियोजनाएं लाई जाती हैं वो अक्सर ऐसा होता है जो रुकी हुई रहती है या डिलेड होती है, क्या कारण है कि ये परियोजनाएं रुक जाती हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? प्रगति तो करती है लेकिन क्या मंत्रालय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे इनके भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं?
0: एकदम आपने सही कहा, और जैसे कि 4-5 जो सबसे प्रमुख कारण है जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, वो एक तो पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आप कर रहे हैं एक्विजिशन, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिना जमीन के आप शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि रोड आपको बनाने के लिए 100% आपको जमीन चाहिए। आप अगर पावर प्लांट बनाते हैं तो आपको जमीन चाहिए। अगर आप सोचिए कोई बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है तो सब में आपको जमीन चाहिए। अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत खाली प्रगति की बात नहीं, अगर आप हर साल के अगर सवाल देखेंगे जो पार्लियामेंट में आता है, हमारे संसद में आता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, या रेलवे मंत्रालय हो, या आपका सिविल एविएशन मंत्रालय हो, ये सब में देखेंगे तो जो भी सवाल पूछा जाता है कि मुख्य कारण क्या है डिले का, तो कहा जाता है लैंड एक्विजिशन, जमीन के अधिग्रहण में देरी। दूसरा जो सवाल आता है वह आपका क्लियरेंसेस क्या क्या है, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस, इस पे देरी बहुत, एक ये दो जो है सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ जैसे मैं आपको पहले बताया था कि तीसरा कारण है कि जिसको यूटिलिटी शिफ्टिंग देखेंगे, जहां पे एक नया सोचिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पे पहले कभी बिजली के बड़े बड़े हाई टेंशन वायर का जो खंभे लगे होंगे और वो छोटे नहीं है कि अचानक रातों रात बदल सकते हैं, तो इनको सब शिफ्टिंग करने का भी बहुत टाइम लगता है। मेनली ये 4-5 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। और जब प्रगति होती है तो उसपे क्योंकि सारी बातें क्लियरली आती है, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब ये प्रगति मीटिंग होती है उसपे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में होते हैं, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग में होते हैं, सब वर्चुअली जुड़े होते हैं ऑनलाइन माध्यम से, फिर सारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो जैसे जमीन अधिग्रहण की बात अगर हम करें, हम तीनों चीजें, जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण की बात करें और तीसरा जो यूटिलिटी शिफ्टिंग, ये तीनों का जो मुख्य जिम्मेवारी है वो राज्य सरकार का है। तो जब मीटिंग होती है इसकी तो ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या ये आपको जैसे कहें निर्देश दिया जाता है कि आप इसको जमीन के अधिग्रहण को जल्दी से संपूर्ण करें। जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ एग्जांपल, अभी प्रगति हुई थी उस पर रेलवे का भी कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे वहाँ पे भी कोई कंपनसेशन जो आपका लोगों को जो पैसे देने की बात आई थी कुछ प्रोजेक्ट के कारण, तो उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत ही सख्त निर्देश दिया रेल मंत्रालय को कि जल्दी से लोगों को जो कंपनसेशन है दीजिए ताकि काम कंप्लीट हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र का मंत्रालय हो या राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं, देखिए केंद्र सरकार में देखा जाए तो सारे काम कैबिनेट सेक्रेटरी मुख्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का उनका अंडर सेक्रेटरीज हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य सरकार का तो मुखिया ही देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक हेड है, वो तो चीफ सेक्रेटरी है। तो जब चीफ सेक्रेटरी को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है मुख्य सचिव को तो उसका सीधा असर देखने को मिलता है। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताऊं, दिल्ली के एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ये सब प्रोजेक्ट को पीएम ने एक एक करके प्रोजेक्ट का रिव्यू किया हुआ है और इस रिव्यू का कारण प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कम्प्लीट हुए।
1: जी, प्रगति की अभी तक 51 बैठकें हो चुकी है और इसमें 85 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जाए।

0: पहला वाला तो था इसकी कीमत कितना कॉस्ट था। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो करीबन 3300 से ऊपर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कुछ प्रोजेक्ट नहीं, ज्यादातर प्रोजेक्ट ही इस पे आपके एक्सपेडाइट हुए हैं। जितना भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रगति में आई है, उनमें बहुत जल्दी उनकी गति पकड़ी है और ज्यादातर प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गए हैं। दूसरी बात, आपने जो कहा कि इस पे जमीनी स्तर पे क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब मीटिंग होती है जिसपे प्रधानमंत्री होते हैं, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और हर स्टेट गवर्नमेंट के, हर राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं, तो देखिए एक मैसेजिंग होता है कैसे सबको साथ मिलकर काम करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कोई भी अगर प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पावर का प्रोजेक्ट हो, कोई मंत्रालय का जब आता है, उनको ये जरूरी होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से बात करें। तो ये जो कल्चर धीरे धीरे, ये मेरा नहीं है, इस पर मुझे सोचना नहीं, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रेक द साइलोज, कि आप जो अपने अपने हिस्से में बंधे रहते हैं उससे थोड़ा बाहर जाइए। आप ये सोचिए कि खाली मेरा रोड का प्रोजेक्ट नहीं है, रेल का प्रोजेक्ट नहीं है, देश का प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है ये सोच, ये धीरे धीरे सबके जो अंडरस्टैंडिंग और जहन में ये आने लगा है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट में कारण देर हो रहा है, तो आप सोचिए कि कोई सचिव जो है मुख्य सचिव को फोन करके बात करते हैं कि देखिए ये प्रगति में आ रहा है, प्रोजेक्ट को जल्दी किया जाए। जब आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी या कनेक्शन थोड़ा फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उसका असर ये भी होगा बाकी जो प्रोजेक्ट हैं जो प्रगति में नहीं आ रहे, वहां पे अगर डिले हो रहा है तो आप उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा असर है, देखिए हर जो सचिव है, मुख्य सचिव है, अधिकारी हैं, जब उनको ये पता है कि प्रोजेक्ट अगर कोई मेरा बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो प्रगति में चला जाएगा, प्रगति में गया तो फिर मुझे तो बहुत सारे सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो इसका असर क्या होगा, जो प्रोजेक्ट धीमे चल रहे हैं उनको वो लोग भी कोशिश करते हैं वो जल्दी से कम्प्लीट हो जाए, ठीक से होता है, ताकि वो प्रोजेक्ट प्रगति में ना जाए। तो मुझे लगता है पूरा जो है वार कल्चर को प्रगति ने काफी बदलाव लाया है।
1: जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की कि ब्रेकिंग द साइलोस, ये साइलोस को ब्रेक करने में मदद करता है। आपको लगता है कि ये जो बैठकें होती हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज या संस्थागत रूप देने में भी मदद कर रहा है?
0: आपने ये बात तो एकदम सही कहा कि एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये स्ट्रेंथन करता है, इसको जब मजबूत करता है। इसका कारण मैं आपको इसलिए बताया कि जैसे जितना भी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट को तभी सक्सेसफुल हो सकता है, तभी कामयाब हो सकता है जब राज्य सरकार संपूर्ण तरह से उसके साथ काम करे। वो तभी हो पाएगा जब दोनों में सहयोगिता होगा या कोऑपरेशन होगा, तो फेडरल कोऑपरेशन के बिना ये तो काम हो नहीं सकता। दूसरा बात क्या है कि जब हर व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे रहकर बात करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 50वां प्रगति हुई थी उसके बाद हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन साहब ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वहां पर हम लोगों ने सवाल भी पूछा था कि जो है, तो उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कहा कि कोई भी राज्य सरकार या हर राज्य सरकार चाहता है कि ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और कोई सरकार नहीं चाहता उसका डिले हो, क्योंकि विलंब होगा, कॉस्ट ओवरन होगा तो सबको समस्या होता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि हर सरकार चाहती है रोड बने, हाईवे बने, रेलवे लाइन डले, नया ट्रेन चले, अच्छे पावर प्रोजेक्ट आए ताकि वो उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके, और वो तभी कम्प्लीट होगा जब केंद्र और राज्य सरकार साथ मिलकर बात करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल सिस्टम है, इस पे केंद्र में सरकार, राज्य में कौन सरकार है, इसका कोई असर ही नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे हर राज्य के प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेडाइट किया गया है, कंप्लीट किया गया है।
1: जी दीपक जी, आपने बहुत विस्तार से प्रगति के बारे में हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक, विकास परियोजनाओं और जन कल्याण योजनाओं की समीक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास और पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।
3: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, अभी आपने सुना प्रोग्राम सुर्खियों में। हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज पर दस्तयाब हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से आलमी खबरें सुनिए। म्यांमार के सदर मिन ऑंग हेलेंग का भारत का 5 रोजा दौरा आज से शुरू हो गया है। इसराइल लेबनान जंग में शिद्दत आ गई है, जबकि अमेरिका में बातचीत जारी है। अक़्वाम मुत्तहिदा ने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को महफूज तर बनाने के लिए मुल्कों और टेक्नोलॉजी कंपनियों से और जोर और

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब हैं। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। म्यांमार के सदर मिन ओंग हलेंग का भारत का 5 रोजा दौरा आज से शुरू हो गया है। इसराइल लेबनान जंग में शिद्दत आ गई है, जबकि अमरीका में बातचीत जारी है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को महफूज दर बनाने के लिए मुल्कों और टेक्नोलॉजी कंपनियों से और ज्यादा इकदाम करने के लिए कहा है। और हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स छाए रहे। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 4 तमगों समेत 7 तमगे हासिल किए। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां।

ये आकाशवाणी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर अभी तक आप उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात सुन रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक वक्त हुआ है 1:15, चंद ही सेकंड बाकी हैं पहली मजलिस की नशरियात खत्म होने में। दूसरी मजलिस का आगाज होगा दिन में 3 बजे। दीगर प्रोग्रामों के अलावा 3:30 पर आप सुन सकेंगे भोजपुरी लोकगीत। इसके साथ ही आज की पहली मजलिस अब इख्तिताम पजीर होती है।

श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर जिला कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। दिल्ली का एक नौजवान, यूनिवर्सिटी का स्कीइंग चैंपियन गोपाल यहां आकर अपना नाम संजो रख लेता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है कश्मीर की कली उषा से।

दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक रोज बातों बातों में उषा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने गोपाल के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। श्रोताओं, वही हुआ जिसका डर था। गोपाल दिल्ली लौट रहा था कि रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसकी एक टांग काटनी पड़ी। यह सदमा गोपाल सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को उषा की जिंदगी से दूर करने का फैसला किया। उधर कश्मीर में उषा रोज अपने सूरज की राह देखती, रोती और तड़पती।

श्रोताओ, वक्त गुजरता है। गोपाल का सबसे पक्का दोस्त रवीश कश्मीर जाता है और वहां उसकी मुलाकात उषा से होती है। रवीश को उषा से प्यार हो जाता है। उषा के पिता अपनी बेटी को डिप्रेशन से निकालने के लिए रमेश से उसकी शादी कर देते हैं। उषा टूट चुकी थी पर पिता की खातिर मान जाती है।

रमेश कश्मीर से दिल्ली लौट कर आता है और अपने दोस्त गोपाल को सारी बातें बताता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी गोपाल अपनी मोहब्बत को अपने ही दोस्त के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है। शादी के मंडप में गोपाल के कश्मीर वाले नौकर मंदू के जरिए रमेश को सच का पता चल जाता है और उषा का सूरज कोई और नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे जी रहा उसका अपना दोस्त गोपाल है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। रमेश कहता है, गोपाल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अपनी मोहब्बत की बलि दे दी सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रहूं? क्या इतनी कमजोर है मेरी दोस्ती? वहीं गोपाल कहता है कि रमेश मैं मजबूर था, मैं उषा के सामने एक लाचार इंसान बनकर नहीं जाना चाहता था। और यहीं पर उषा दौड़ती हुई आती है और गोपाल को गले लगाकर सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो सरजू, मैं इतनी नादान थी कि जो जिस्म की अपंगता को ही सब कुछ समझ बैठी। असली अपंगता तो मेरी सोच थी। तुम्हारी ये बैसाखियां अब मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। मुझको खुद से दूर मत करो। और उषा और गोपाल का मिलन शादी के बंधन में बन जाता है। श्रोताओं, इस तरह एक महान त्याग और सच्ची मोहब्बत की जीत हुई। आरज़ू सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो आज भी हमारे दिलों को भिगो देता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें भी इस बुलेटिन नाल मैं हरमन पाल चंडीगढ़ खबर।

पहला वोटर सूचियां 31 जुलाई की थाह पे हैं और 10 अगस्त में प्रकाश की दिया जाएगा। इसी तरह वोटर सूचियां जो दावे और इतराज दायर करने की मियाद है और 10 अगस्त को 2 सितंबर तक होगी। दावों और इतराज जो निबेड़ा 10 अगस्त को 28 सितंबर तक किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि बाकी समय सारणी लंबी 14 मई में जारी नोटिफिकेशन पहला वांग ही जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सरहद नेड़े रहने वाले लोगों ने केंद्र सरकार के सरहद के 15 किलोमीटर के घेरे में गैर कानूनी ढांचा और अधिकारित गतिविधियों हटाने के फैसले का स्वागत किया है। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही हुई एक उच्च पदरी सुरक्षा समीक्षा मीटिंग में लिया। अरनिया, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाकों के लोगों ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा पैदा करने वाली किसी भी गतिविधि सख्ती निपटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके सरहद पारों खतरा और देश विरोधी तत्वों वालों गैर कानूनी बुनियादी ढांचा और अणअधिकारित नेटवर्कों की दुर्वरतों करने वाली कोशिशों प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। वसनीकता ने कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा लिए अजिहियां गतिविधियां विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज हिंदी पत्रकारिता दिवस से हिंदी भाषा में समर्पित पत्रकारों लेखकों और बुद्धिजीवियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि हिंदी पत्रकारी ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों की भावनाओं को प्रगट करने में एक शक्तिशाली माध्यम वजों काम किया है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गर्ज चमक नाल गर्मी की पेशगोई की है। पंजाब आज सवेरे हल्की तो दरमियानी बारिश के नाल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पठानकोट में गड़े भी पड़े हैं। गुरदासपुर, अमृतसर, जलंधर समेत बहुत सारे थावां बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग वालों सारे पंजाब में हल्की तो दरमियानी बारिश और तेज हवावां चलने संबंधी येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समाणा, पटियाला, राजपुरा और डेरा बसी में बारिश के संबंधी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पठानकोट के थून डैम इलाके में घट्टो घट्ट तापमान 18.8 डिग्री सैलसियस दर्ज किया गया, जबकि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 18 डिग्री सैलसियस दर्ज होया है। बिहार में तूफान, मीह और बिजली दुकान वक् वक् घटनावां में 7 लोगों की मौत हो गई है। गया में 3, औरंगाबाद में 2 और सारण और खगड़िया जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मौतों के दिन से दुख का प्रगटावा किया है और मृतकों के परिवारों ने राहत राशि वजों 4-4 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलटे कट्टू नहीं आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों अपने विचार साझे करेंगे। यह हर महीने प्रसारित होने वाले रेडियो प्रोग्राम का 134वां एपीसोड होगा। माला क्रिकेट में आज भारत और इंग्लैंड विचकार 20-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की लड़ी का दूसरा मैच आज बिस्टल में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने वीरवार को चैम्सफोर्ड में खेले गए पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड को 38 दौड़ों में हरा के 3 मैचों की लड़ी में 1-0 की जीत बना ली थी। आईसीसी महिला 2020 विश्व क्रिकेट कप तो पहला यह लड़ी महत्वपूर्ण है। विश्व कप 12 जून को इंग्लैंड में खेला जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात नाल भलके खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय इस समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। बीती रात चंडीगढ़ में हुए दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन ने राजस्थान रॉयल्स ने 7 विकेट नाल हरा के फाइनल में अपनी थाह पक्की की थी। आखिर में खास खबर एक बार फिर सुन लो। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के 5 दिन दौरे से आज बोधगया पहुंच गए हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री की चोण करने लई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग अज बेंगलुरु में। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद सेनावां उच्च पदरी चौकसी ते ने अते लोअर पॉइंट ते ऑपरेशन संदूर 2.0 तैयार ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अज फौजी सेवावां ते सेवा खोले ने। लेफ्टिनेंट जनरल एमएस राजा सुब्रमण्यम उन्हां दी थां लैणगे। महिला क्रिकेट विच अज भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा 2020 अंतरराष्ट्रीय मैच बिस्टल विच खेडिया जाएगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। साडा प्रदेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 होगा।

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ओ मिन आउल लाइन

0: बोध गया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून शासन पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। अब खबरें तफसील से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय फौज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस अकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तेहाल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अज़्म और मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत का मुजाहरा किया है। जनरल द्विवेदी ने ग्रेजुएट कैडेट से अपील की कि वो प्रोफेशनलिज्म के आला मेयार, क्यादत और मुल्क की खिदमत के जज्बे को कायम रखें। उन्होंने उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल में मुस्बत नुक्ता नजर अपनाने और सीखने के अमल को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवानों के एतमाद और भरोसे पर मुअसर क्यादत की तामीर होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली के कौमी जंगी यादगार में तीनों फौजों का यादगार गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करने के बाद कौमी खिदमत को अलविदा कहा। इस तकरीब में मुल्क में आला फौजी अफसर के तौर पर उनकी मुमताज खिदमत को याद किया गया। जंगी यादगार में गुलदायरा पेश करने के बाद जनरल चौहान ने कहा कि तीनों फौजों का गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना उनके लिए बड़े फख्र की बात है। 4 दहाइयों से ज्यादा मुश्तमिल खिदमत के बाद एक आम शहरी के तौर पर तब्दीली को बयान करते हुए जनाब चौहान ने अपनी खिदमत को इत्मीनान बख्श बताया। 1981 में भारतीय फौज में शामिल होने के बाद जनाब चौहान ने मुल्क की 40 साल से ज्यादा खिदमत की और अपने पुरकशिश फौजी करियर के दौरान कई अहम ओहदों पर फायज रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी जनरल चौहान की जगह लेंगे। पणजी की कला अकेडमी में आज गोवा का 40वां योम तासीस मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गोवा को एक मिसाली रियासत बताया जहां तरक्की के साथ साथ उसकी मालामाल सकाफती विरसे में तवाजुन बरकरार रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि गोवा इस बात की एक अच्छी मिसाल है कि किस तरह अपनी पहचान और तरक्की एक साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि गोवा ने जदीद तरक्की हासिल करते हुए अपनी सकाफती बुनियादों को भी कायम रखा है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि गोवा एक सियाहती मकाम से कहीं बढ़कर जगह है। उन्होंने गोवा को एक जिंदा तहजीब बताया जहां सकाफती तबादला, समाजी हमाहंगी और खुला जहन पाया जाता है। उन्होंने खानदगी, सेहत, खिदमत और माहौल के बारे में बिहारी और इंसानी तरक्की के शोबों में रियासत की हुसूलियाबी की तारीफ की। पणजी से महेश की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: इम्तहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि उसकी तकनीकी शरीककार टीसीएस की फनी खराबी की वजह से आज उसके कुछ इम्तहानी मराकज में कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट CUET UG 2026 के शुरू होने में ताखीर हुई। एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस मसले को हल कर लिया गया है और इम्तहान जारी हैं और उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा ताकि उन्हें कोई नुकसान न उठाना पड़े। एजेंसी ने यह भी बताया है कि बाद दोपहर शुरू होने वाले इम्तहान के वक्त में रद्दबदल किया गया है। उम्मीदवारों को 2:30 बजे से दाखिले की इजाजत दी जाएगी जबकि इम्तहान 3 बजे के बजाय 4 बजे शुरू होगा। एनटीए ने मजीद कहा है कि सुबह के इम्तहान में बैठने वाले उम्मीदवारों को पूरा वक्त दिया जाएगा और उन्हें पेपर मुकम्मल होने के बाद ही जाने की इजाजत दी जाएगी। एजेंसी ने तलबा और वालदेन को परेशानी होने के लिए अफसोस का इजहार किया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है जिसमें आजाद शुमार से मां और बच्चे की सेहत, तगजिये और माली सेहत तहफ्फुज़ के मैदान में भारत के

0: किया था। अररिया, आरिसपुरा और सुचेतगढ़ समेत सरहदी इलाके के लोगों ने इस हमल में अपनी हिमायत का इजहार किया और कहा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइम आज बोधगया में महाबोधि मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उन्होंने उस बोधि पेड़ के नीचे मराकबा किया जिस पेड़ के बारे में मशहूर है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण हासिल किया था। अपने दौरे के दौरान म्यांमार के सदर तारीखी बखरौर के सुजाता मंदिर गए और बोधगया की बर्नीम मोनेस्ट्री का भी दौरा किया। उनके हमराह एक आला सतह का वफद भी है जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल है। सदर उमिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। कर्नाटक कांग्रेस कानून शासन पार्टी की आज से फिर 4 बजे मीटिंग होना मुतवक्के है जिसमें सुबुकदोश होने वाले वजीर आला जनाब सिद्धरमैया के बाद नए लीडर का इंतखाब किया जाएगा। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धरमैया का इस्तीफा पहले ही कबूल कर लिया है और उनसे नए लीडर के इंतखाब तक कारगुजार वजीर आला के तौर पर काम करने को कहा है। हमारे रामानगार ने खबर दी है कि जनाब डी के शिव कुमार को बाजाब्ता तौर पर कांग्रेस कानून साज पार्टी का नया लीडर बनाए जाने की तवक्को है। कांग्रेस के 136 मेंबरान असेंबली से सीएलपी मीटिंग में शिरकत करने को कहा गया है। बिहार में गरज चमक, शदीद बारिश और बिजली गिरने के कई वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। हमारे नामानगार से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक बिजली गिरने के वाकयात में गया में 3 अमवात हुई है जबकि औरंगाबाद से 2 अमवात की खबर मौसूल हुई है। दरियासना, सरन और खगड़िया जिला से 1-1 मौत की रिपोर्ट मौसूल हुई है। गरज चमक और बिजली गिरने के वाकयात में हुई अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला सम्राट चौधरी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लबैतों में अवार्ड हासिल हुए हैं। ये अवार्ड हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका फिर से फौजी कार्रवाई शुरू करेगा। एशिया की अहम सिक्योरिटी फोरम शेंगरीला डायलॉग से खिताब करते हुए जनाब हेक्सेट ने कहा कि अमरीका के खित्ते में और पूरी दुनिया में फौजी मौजूदगी है और वो जरूरत पड़ने पर इस तरह की कार्रवाई अंजाम दे सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका किसी भी नागहानी सूरत का जवाब देने की अच्छी पोजीशन में है। अमरीका के वजीर दिफा ने इस बात पर भी जोर दिया कि ईरान के साथ तनाजे के बावजूद अमरीका एशिया बहरुलकाहिल खित्ते के लिए पाबंद अहद है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइम ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी अपना नया लीडर मुंतखब करने के लिए आज मीटिंग करेगी। बिहार में तूफानी हवाओं, शदीद बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। और अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि ईरान के साथ कोई मुआहदा न होने की सूरत में अमरीका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislative Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international 3-match series in Bristol today.

0: अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री विलेम एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा

0: पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर सिंह गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वह लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती है। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपने सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सुपड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने

0: लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्र ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमे नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। बिंदु में 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार।

एक ही कलाकार सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं हूं आपके साथ मनोज। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अगर पर्दे पर गुस्सा दिखाया तो लोग डर गए, रोया तो आंखें नम हो गईं, और जब हंसने पर या हंसाने पर आया तो लोग लोटपोट हो गए। जी हां, थिएटर की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड का बाबूराव बनने वाले

श्रोताओं, 80 का दशक था। हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अनिल कपूर जैसे एंग्री यंग मैन का राज था। ऐसे में एक नया विलन आया, फिल्म थी नाम। परेश रावल ने शेट्टी का ऐसा किरदार निभाया कि लोग थिएटर में उनके नाम से कांपने लगे। बाद में फिल्म आई कब्जा, किंग अंकल और राम लखन, भाई साहब, क्रूरता और शातिरपने का दूसरा नाम बन गए थे। जी हाँ, परेश रावल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विलन के रोल में भी वो अपनी कॉमिक टाइमिंग छुपा नहीं पाते थे।

श्रोताओं, साल था 2000 और सदी बदल रही थी और साथ ही बदल रहा था परेश रावल का अंदाज। प्रियदर्शन की फिल्म आई हेरा फेरी, धोती, सोडा वाटर जैसा चश्मा और हाथ में कड़क चाय का कप, बाबूराव गणपत राव आपटे। दोस्तों, इस किरदार ने परेश जी को हमेशा के लिए अभिनय की दुनिया में महान बना दिया। इसके बाद हंगामा, हलचल, मालामाल वीकली, कॉमेडी की ऐसी सुनामी आई कि आज के मीम्स भी बाबू भैया के बिना अधूरे हैं।

दोस्तों, परेश रावल सिर्फ हंसने या डराने तक सीमित नहीं है, वो एक बेहतरीन लेखक की सोच रखने वाले थिएटर थिंकर भी हैं। फिल्म ओ छोकरी और सर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया। आपको याद है ना फिल्म ओ माय गॉड? कांजीलाल जी मेहता बनकर उन्होंने जो सवाल उठाए उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। थिएटर के मंच से लेकर राजनीति और संसद भवन तक उनकी आवाज में वो वजन है जो हर कोई सुनता है।

चलो अभी आपने बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला गीत सुना। आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं परेश रावल जी के बारे में। दोस्तों जब हम 90 के दशक और 2000 के शुरुआती फिल्मों की बात करते हैं तो हॉलीवुड गानों का जिक्र कैसे छूट सकता है। ये वो दौर है जब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, सिजलिंग और बोल्ड गानों का बड़ा क्रेज था। परेश जी भले ही लीड रोमांटिक हीरो नहीं थे लेकिन उन फिल्मों के मुख्य स्तंभ जरूर थे जिसमें ये ब्लॉकबस्टर गाने फिल्में गए।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। बैंड में 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपना 5 दिन का भारत का दौरा शुरू कर दिया है। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेक्सेट ने कहा है कि अगर ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें नाकाम रहीं तो अमरीका ईरान के खिलाफ फिर से फौजी कार्रवाई के लिए तैयार है। वाशिंगटन में जारी बातचीत के बावजूद इसराइल और लबनान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है और आज ब्रिस्टल में खवातीन क्रिकेट में दूसरे 2020 बैन अवी मैच में भारत मेजबान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मजमूरी तौर पर 3 मैच खेले जाने हैं। अब खबरें तफसील से। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा कि अगर हालात का तकाजा हुआ तो भारतीय मुसल्ह अफवाज कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट पर और ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी में 150वें कोर के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुरुस्तगी और अजम के साथ इश्तियाल अंगेजी का जवाब देने में भारत की सलाहियतों का मुजाहरा किया है और उभरती हुई सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में मुल्क के लिए एक मेयार कायम किया है। जनरल द्विवेदी ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मुल्क के मुस्तहकम अजम और

अभी आप सुन रहे थे उर्वशी सक्सेना के गाए हुए भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमे। आशा भोसले की आवाज में द बर्निंग ट्रेन फिल्म का नगमा।

0: लेकर क्या करोगे क्या करोगे
1: मेरी। सुनते हैं अनजाना फिल्म का नगमा, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: अच्छा लग्या तो अनु सब नु मिलके मैनु बहुत अच्छा लग्या। मैं हूं चलदा, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: चेहरा बड़ा जानिया पछाणिया लगदा सी।
1: हां जी मैडम।
2: करदे की ने, वकील ने जग्गी पा?
3: पता नहीं जी, पर एक गल हमेशा बोलते ने कि संविधान कदी फेल नहीं होएगा। जे कदी ऐसा लगे तो समझ लेना कि इनू चलाउन वाले फेल हो गए।
2: हिला के चला गया है बंदा।
1: सही कहा तुसी, बिल्कुल सही।
0: भाई जग्गी पा, कौन ने इस साहब हुरी?
3: चंगी तरह तो नहीं पता साहब जी, एक बारी पुछया था सी, बोले सी बाबा साहेब, ऐदा दा ही कोई ना दस्या सी।
0: जो भी होए है दमदार। चलिए भी हुण आपां।
2: हां जी सर।
1: चलो चलदे आं।
2: बाय द वे, हैप्पी रिपब्लिक डे जग्गी पाजी।
3: मेरे वालों भी शुभ कामनावां मैडम जी।

मेरी बेवफा मुकदी पई, उमर मेरी बेवफा मुकदी पई, रूह मेरी बेचैन है तेरे लई, लिख जा मेरी तकदीर नू मेरे लई, मैं जी रही तेरे बिना तेरे लई। बोल अमृता प्रीतम दे। तुसी सुन रहे सी गीत चंद्रकांता कपूर दी आवाज दे विच। अगला गीत पेश कर रही हैं तुहाडे लई दोस्तो ज्योति बसर दी आवाज च, पूनिया नी पूनिया। और सुनते हैं एक गीत।

तलाश जारी है खुशियां दी, तलाश जारी है खुशियां दी, शायद कदे रस्ता भुल के साडे दरवाजे ते कोई दस्तक दे दे। तो सुन रहे सी दोस्तों ज्योति बासर दी आवाज दे विच गीत, इस नाल सुगम संगीत सिलसिला जेड़ा हुण इत्थे मुकदा है। हुण वारी है तमन्ना दी। तमन्ना सिलसिले दे तहत तुहानू सुनाउण जा रहे हां अमरिंदर गिल दी आवाज दे विच एक गीत। अब सुन रहे हां

अमरिंदर गिल दे गाए गीत ने नाली दोस्तो तमन्ना सिलसिला आदि देश पंजाब प्रोग्राम होने थे मुक्ता है। अपने दोस्त करमजीत नु आज दा प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दो, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम च। तद तक लई नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी की निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को समाधान

0: संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेमजाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने किसान बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषि जगत लेकर के। नीलम बहन, मोटे अनाज यानी कि इनको आजकल श्री अन्न के नाम से जाना जाता है, सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, पोषण की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ हमारे जो किसान बहन भाई हैं उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे किसान बहन भाई जैसे जानते ही हैं कि जो मोटे अनाज में जो अनाज आते हैं जिसमें कि बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, इनके अलावा श्री अन्न में जई है, कोदो है, कुटकी है, रागी है और समा, ये भी मोटे अनाज में ही आते हैं। अब वो बात आती है कि क्या खास बात है मोटे अनाजों में।
1: बिल्कुल शशि भाई, मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा जो बहुत मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है, तो वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है और व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है।
0: बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज यानी कि श्री अन्न उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, इसीलिए इनसे पाचन तो अच्छा होता ही है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो आपने समझा कि जो मोटे अनाज होते हैं, श्री अन्न होते हैं, पोषण की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से उनका क्या महत्व है। लेकिन मोटे अनाज उपभोक्ताओं तक तभी पहुंचेंगे जब आप इनकी खेती करेंगे। तो ऐसे में बाजरा है, मक्का है, जो मोटे अनाजों में ही आते हैं और आप इनकी खेती करना चाहते हैं, तो इसी क्रम में आपको एक जानकारी सुनवाते हैं जिसका विषय है मक्का और बाजरा मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, मक्का वैज्ञानिक, और इनसे बात कर रहे हैं शिव नंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाई नमस्कार। खरीफ की फसलों की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई उसकी बियाई, बीज, खेत की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं, चाहे उसमें गर्मी की जुताई हो, चाहे बीज को बाजार से लेना हो और चाहे उर्वरकों का प्रबंधन। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर खेती वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन अब सिंचाई के साधन भी कहीं कहीं उपलब्ध हो गए हैं, जिसके कारण कुछ हमारे किसान भाई बहुत सी फसलें अगेती भी लगाने लगे।

0: जब हम बात खरीफ फसलों के करते हैं तो उसमें विशेष तौर पे आज हम बाजरा है मक्का की बात करते हैं, जिसको हमारे बहुत से किसान भाई मोटे अनाज भी कहते हैं और ज्यादातर किसान इनको खाने में भी प्रयोग करते हैं और दूसरे उत्पादों में भी इनका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। मक्का और बाजरे की खेती किस तरीके से की जाए जिससे अधिक उत्पादन मिल सके और किसान को लाभकारी खेती सिद्ध हो, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर शंकर लाल जाट, जो कि मक्का विशेषज्ञ हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई मक्का है बाजरा है इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप बताना चाहेंगे जिससे कि हमारे किसान भाई उस पे अमल करके मक्के और बाजरे से अच्छा ही नहीं लाभकारी भी उनके लिए सिद्ध हो।
1: जी बिल्कुल, जो मक्का और बाजरा जैसे आपने कहा कि जो वर्षा आधारित मुख्य फसलों में अपने देश में इस मौसम में आती है, और जो इन फसलों का अगर कोई किसान इसका लाभकारी उत्पादन लेना चाहता है तो इसमें दो चीजें बड़ी मुख्य निकलने बन के आती है। एक तो बुआई का तरीका और दूसरा है उसके अंदर खरपतवार का पूरा अच्छे से प्रबंधन। तो जो शुरू के इसके दोनों फसलों में 30 दिन का खरपतवार का प्रबंधन होता है, उसमें जब बुआई करते ही उसके अंदर जो शाकनाशी हो गया या फिर आपके पास पशु चलित ऐसे इम्प्लीमेंट है या आप उसकी निराई गुड़ाई कर पाते तो अच्छा है। तो शुरू के 30 दिन इनके बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। अब जो इसकी बुआई का तरीका है, हालांकि हम जानते हैं कि सारे किसान बड़े रिसोर्स पुअर हैं, कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में, जैसे आप अलीगढ़ का क्षेत्र लीजिए, आलू बहुत होता है। अब आलू के अंदर तो वो मेड़ बना के बोते हैं और बाजरे को फ्लैट में बोते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको मेड़ बनानी है जो आलू के लिए बना रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप संकर मक्का, हाइब्रिड संकर जो बाजरा है या साधारण बाजरा है उसका आप लगा के देखिए, आपको 30 से 40% आपको उपज का इजाफा मिलेगा। ऐसे ही मैं मक्का में बात करता हूँ, मक्का में भी ये है, आप मेड़ बना के बुआई करिए। जो पानी ज्यादा बरसता है तो भी उसकी नाली में पड़ा रह जाता है, पानी अगर कम बरसता है तो भी नाली में पड़ा रह जाता है, तो वो आगे तक चलता है। और जो छोटा पौधा जब होता है तो कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में 15-20 दिन लगातार बारिशें होती है तो पौधा दब जाता है या तो मर जाता है, नहीं मरता तो भी मरे जैसा होता है, तो उसमें फसल में काफी नुकसान होता है। तो ये आपको जो महत्वपूर्ण काम है, एक तो बुआई का तरीका बड़ा अच्छा करें, दूसरा आप खरपतवार प्रबंधन करें, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अच्छी किस्मों का चयन करें। अच्छी किस्म मतलब जो गुणवत्ता युक्त किस्में हैं और जिनका बीज उपचारित है, तभी आप उसको सबसे अच्छा उपज ले सकते हैं। और क्योंकि ये फसलें दोनों ऐसी हैं जो आप देखिए, बाजरा 70-80 दिन में आ जाता है, 90 दिन में, मैक्सिमम 100 दिन में आ जाता है, ठीक है। ऐसे मक्का भी 80-90 दिन से लेके 110-120 दिन की फसल है, तो कम दिन में आप ये समझिए प्रतिदिन ये फसलें रोज की अगर दिनों का भाग देना तो 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो आपको जो शुरू का जो कृषि कार्य है वो काफी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, और बहुत अच्छे से अगर आप बीज लेंगे उसको उपचारित करेंगे। अगर जैसे मैं आपको बाजरे की बात करूं कैसे उपचारित करना है, तो आप उसके अंदर जो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है उसका 4 प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित करें, या एथेराम जो होता है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उपचारित करें। जो बाजरे का बीज है वो आप 3 से 4 किलो ही लेना, ज्यादा बीज नहीं होना है, क्योंकि इसमें बीज भी छोटा होता है, दूसरे इसमें कल्ले भी फूटते हैं, सभी अपन लोग जानते हैं। तो जब आप 3 से 4 किलो बीज लेते हैं तो बहुत सफिशियंट होता है 1 हेक्टेयर में अच्छी बाजरे की उपज लेने। ऐसे अगर हम मक्का की बात करें तो मक्का का बीज है वो आप लें, जो सर्टिफाइड किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं, उनका आप बीज लें। अगर आप अपने पास खुद बीज पैदा किया है तो बीज उपचारित करना जरूरी है, नहीं तो जो बाजार से ले रहे हैं उन्होंने आपका बीज उपचारित आता।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मक्का का जिक्र किया, जैसे आपने प्रमाणित बीज की बात करी, मक्का में एक शंकर मक्का होती है, संकुल मक्का होती है, तो डॉक्टर साहब इसमें क्या अंतर है और कौन सा बीज अच्छा रहता है?
1: देखिए, संकर और संकुल मक्का है, संकुल मक्का के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे संकर मक्का का एक मिश्रण है, एक बड़े लेवल पर देखा जाए, वैसे साइंटिफिक नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भुट्टे रहते हैं। जैसे उसके अंदर भुट्टे लगना आज से स्टार्ट होंगे तो 10 दिन तक उसके अंदर भुट्टे आते रहेंगे, ठीक है, और हरे भुट्टे भी उतने दिन तक चलते हैं, नर मंजरी भी उतने दिन तक चलती है, तो उसमें आपकी परिपक्वता एक समय नहीं होती है, ये संकुल मक्का हो गई। तो आप इसका बीज अगर एक बार आपने खरीद लिया तो 3 बार तक आप बोल सकते हैं उसी बीज को, वो संकुल मक्का, उसमें पूसा कम्पोजिट 2, पूसा कम्पोजिट 3, 4, ऐसे करके आपका

0: है, उसके बाद में हमारा कंपोजिट वैरायटी भी है, ये होगी संकुल किस्में। और संकर किस्में वो होती है जो दो पेरेंट होते हैं, ठीक है, उनका जो बच्चे होता है उसको संकर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी रहती है, उसमें केवल दो ही पेरेंट इन्वॉल्व है, संकुल के अंदर बहुत सारे पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जब एक जैसी रहती है। जैसे आप कहोगे कि भाई आज जैसे भुट्टा आना स्टार्ट हुआ तो 3 दिन में सबके भुट्टा आ जाएगा। कभी भी क्या होता है, कभी पौधा बाद में जन्मता है, कभी पहले जन्म जाता है, ठीक है, क्यों पानी में डूब गया तो वो उसमें लेट भुट्टा आएगा, लेकिन 2-3 दिन में सबका भुट्टा आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप जितने भी कृषि कार्य कर रहे हैं तो वह एक साथ कर सकते हैं। और जो उत्पादन क्षमता की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता की जो संकर किस्में हैं उनमें ज्यादा रहती है संकुल किस्मों की बजाय।
1: डॉक्टर साहब, हाइब्रिड मक्का कौन से होते हैं?
0: जो संकर अपन कर रहे हैं वही एक हाइब्रिड किस्में हैं। और उसमें यह है कि कभी कभी किसानों के अंदर और सभी के अंदर यह संशय रहता है कि यार मैं हाइब्रिड लूक नहीं लू। अगर मैं कुछ किसानों की बात करूं, फेम टू करके एक हाइब्रिड था, उसको किसान मानते नहीं थे ये हाइब्रिड है, क्योंकि उसका दानों का रंग इतना पीला, इतना आकर्षक था कि लोग कहते थे ये तो हमारी संकुल किस्म है, ये हमारा अपना बीज है। ऐसे ही आजकल मार्केट में काफी हाइब्रिड आ गए। अगर आप IMA 224 लेंगे, IMA 230 लेंगे, 231 लेंगे, DHM 206 लेंगे, इन सबके बीज वैसे के वैसे ही है। आप संकुल और संकर में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये बड़े लेवल पर आया है कि जैसी मक्का हमारी संकुल या अपने पहले खाते थे उस तरह के हाइब्रिड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई मक्का बरसात में लगाते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई मक्का पहले भी लगाते हैं, तो क्या एक ही बीज का प्रयोग करते हैं या इसकी अलग अलग किस्में हैं?
0: देखिए, हर समय जब भी आप बीज का चयन करते हैं तो अमूमन वैसे तो ये रहता है कि आप बीज अगर सही है तो आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं, ये आपके फसल चक्र पर डिपेंड करता है। जैसे आज आपने लगाया और आपको खेत चाहिए 100 दिन बाद खाली, तो आप वैसी किस्म चयन करें जो 100 दिन बाद आपका खेत खाली कर दें। तो मक्का में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ किस्में हालांकि ये रहता है कि एक समय विशेष की होती है, जो प्री खरीफ प्लांटिंग करते हैं और खरीफ में प्लांटिंग करें, दोनों किस्में बराबर है। जो अगर मई जून में स्टार्ट करते हैं, अगर हम हिमालयी क्षेत्र का लें, जो नॉर्थ ईस्ट से मेघालय मिजोरम वहां पे अभी भी मक्का की बुआई हो चुकी है, इधर हमारे जम्मू कश्मीर में भी मक्का की बुआई हो चुकी है, जो ऊपर का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वहां भी हो रखी है, तो वो अप्रैल लास्ट से स्टार्ट कर देते हैं और ये जून लास्ट तक इसकी बुआई चलती है। तो कह रहे हैं जैसे जैसे बारिश चलती है वैसे वैसे मक्का की बुआई होती जाती है पूरे देश में।
1: मक्का जगह डॉक्टर साहब, मैंने देखा कि मक्का खड़ी है इस समय खेतों में।
0: वो जो मक्का अभी खड़ी है खेतों में वो या तो आपकी बसंतकालीन मक्का है, और या कुछ ऐसे मक्का के खेत है जो पकने वाले हैं वो आपकी शरदकालीन मक्का है, जो नवंबर दिसंबर में बुआई की गई है उसका है। ज्यादातर मक्का वो है बसंतकालीन जो फरवरी में बुआई हुई है। कुछ किसान भाई, हालांकि वो प्रैक्टिस काफी गलत है, जो गेहूं को काटने के बाद मक्का बोते हैं साइलेज के लिए, तो साइलेज एक आप देखिए जैसे
1: चारा
0: का अचार होता है वैसा ही, तो आपको मक्का आपके गेहूं के काटने के बाद भी लगाइए तो उसको आप साइलेज के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म की आज की डेट में शिवनंदन जी ये हो गया है, अपने देश में हर दिन मक्का काटी जा रही है, हर दिन मक्का बोई जा रही है
1: जी।
0: तो वैसा हो गया क्योंकि इसको पूरे साल भर आप कहीं न कहीं इसकी कटाई, कहीं न कहीं इसकी बुआई का कार्य चलता रहता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि कोई अमेरिकन मक्का बोलता है, कोई मीठी मक्का बोलता है, और कुछ ऐसे हैं कि हमारे कुछ किसान भाई बेबी कॉर्न के लिए मक्का उगाते हैं, तो ये तीनों की किस्में अलग अलग होती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखिए, जो अमेरिकन भुट्टा या स्वीट कॉर्न बोलते हैं वो एक चीज है, दोनों उसकी किस्म सबसे अलग है। जो मक्का की स्पीसीज होती है GMAs करके बोलते हैं, और आगे अगर उसके सेकर आटा लगा देते हैं इसका मतलब मीठी मक्का है, तो उसका दाना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, जब बुआई करते हैं तो बहुत सिकुड़ा हुआ दाना होता है
1: जी।
0: और उसकी जो बीज दर है वो आपकी 7 से 8 किलो एक हेक्टेयर की होती है, साधारण मक्का 20 किलो एक हेक्टेयर की होती है। तो मिट्टी मक्का अमेरिकन भुट्टा एक ही है लेकिन साधारण मक्का से डिफरेंट है। बेबी कॉर्न क्या करते हैं, साधारण मक्का ही है लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो भुट्टा होता है वो छोटी अवस्था में होता है, 2 से 3 दिन का होता है तभी तोड़ लेते हैं, तो उसकी जो अंदर की जो भुट्टा होता है, गुल्ली जिसको कहते हैं
1: जी,
0: वो गुल्ली बड़ी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है, उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, उसके अंदर आपका राइबोफ्लेविन ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से, और सबसे अच्छा है वो हाइजेनिक है, इसमें कभी पेस्टिसाइड का लोड नहीं होता है। नोट कोई छोटा मोटा ऐसे डाला भी है तो इसके ऊपर 6 से 7 पत्तियां लगी होती
1: जी, जी, जी।
0: तो पत्तियों के अंदर लिपटा रहता है, तो ये बहुत ही हेल्दी सुरक्षित और ऐसे करके सेफ वाला एक स्नैक बनता जा रहा है। इसको आप ऑर्गेनिकली भी पैदा कर सकते हैं अपने घर में। अगर कोई किसान भाई या कोई चाहे कि मैं पैदा करना चाहता हूँ, वो 4 मक्का के दाने लाए, उनको लगाएं और जब भुट्टा आने लगे उस समय उस भुट्टे को 3-4 दिन में तोड़, एक भुट्टा तोड़ेंगे नीचे या ऊपर फिर भुट्टा आएगा, ऐसे 3 भुट्टे एक ही पौधे पे आते हैं। जैसे हम भिंडी की सब्जी तोड़ते हैं ना
1: जी,
0: बैंगन की तोड़ते हैं या भिंडी को तोड़ते हैं, भिंडी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक भिंडी तोड़ी उसके ऊपर फिर भिंडी आ जाएगी, ऐसे ही इसके अंदर भुट्टा आता है, वो बेबी कॉर्न।
1: जैसे बाजरे की बात करते हैं, सब बाजरा पहले होता था कि वो उसको खाते हैं और खाने हुए उसका आटा खराब होता है, क्या नई किस्में कुछ ऐसी निकाली जा रहे हैं जिसमें पौष्टिक गुण भी हों और उसका आटा भी ज्यादा दिन तक रखा जा सके?
0: देखिए जो बाजरा है उसके अंदर नई किस्में जितनी भी आ रही है अपने देश में पिछले 5-7 साल में, उनके अंदर हाई आयरन और हाई जिंक है
1: जी।
0: जिंक है जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जैसे हम कोविड के टाइम में देखा तो जिंक की टेबलेट काफी लोगों को दी गई, तो इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक की और जो ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो आजकल जितने भी वैरायटी हमारी रिलीज हो रही है जिसमें अगर आप देखें राजस्थान पर गुजरात और हरियाणा के लिए KBH 108 है, GHB 558 है, फिर एक बहुत ब्लॉकबस्टर वैरायटी MPMH 17 वैरायटी हाइब्रिड, सबके अंदर हाई आयरन हाई जिंक और बायो फोर्टिफाइड है। जितने भी हाइब्रिड रिलीज हो रहे हैं अभी बायो फोर्टिफाइड है, और अगर कोई चाहे जैसे कम्पोजिट या संकुल वैरायटी लेना चाहे, जैसे आप PC 443 है उसके बाद PC 383 ले सकते हैं। अगर कोई खरीफ के अन्य रीजन में जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बुआई करना चाहता है तो उसमें भी एक MPMS 17 कावेरी सुपर बोस बायो 448 है, MP 78 है, और संकुल किस्म में आपकी राज 171 है, PCB 164 है। संकुल किस्म में बाजरे में या तो कुछ थोड़ी बहुत खाने के लिए या पशु के चारे के लिए ज्यादा उगाई जाती है। जो बाजरा है बेसिकली जो आप कह रहे हैं तो इनके अंदर बायो फोर्टिफाइड किस्मों का विकास हो रहा है, लेकिन जो आटा खराब हो रहा है तो उसमें क्या रहता है, रेंसिडिटी रहती है, वो रेंसिडिटी की वजह से ही खराब होता है। तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन का कार्य जो पूसा संस्थान कर रहा है वो उससे नई नई रेसिपी बना रहा है, उसके अंदर आपको रेंसिडिटी कम करने के लिए उसे प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी रेंसिडिटी कम हुई है उसको, जैसे हम 5 दिन रख पा रहे थे तो अभी 20 दिन रख पा रहे हैं, तो वो प्रयास भी हो रहे हैं लेकिन वो प्रोसेसिंग के ऊपर है। ऐसी कोई किस्म नहीं है जिसके अंदर बाजरे का आटा खराब नहीं हो, तो बाजरे का आटा खराब सब में होता है, अगर लगे वो प्रोसेसिंग आप ठीक कर देते हो तो आपका ठीक रह सकता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या आप कुछ ऐसी भी किस्में निकाले गए हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन होता रहता है, कभी एकदम बारिश हो जाती है और कभी ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, तो इस जलवायु को भी सहन कर सके किस्में निकाली गई कुछ?
0: देखिए अभी क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करें तो एक साल में नहीं होता है, 2 साल में नहीं होता है, 5 साल में धीरे धीरे धीरे धीरे छोटा छोटा होता है। तो जब भी हम कोई किस्म को ब्रीड करते हैं तो उस किस्म को जितने भी उसकी प्रोजिनी है, जैसे 1000 प्रोजिनी लगाई हमने, उनके बच्चे लगाए, 1000 में से अगर 4 बच्चे ठीक कर रहे हैं, दूसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तीसरे साल भी ठीक कर रहे हैं, तब जाके उनको हम लोग कहते हैं कि ये किस्म अच्छी है और किसानों को दी जाएगी। तो वो जलवायु प्रतिरोधन क्षमता हम लोग पहले से डेवलप करते हैं, दोनों जो हमारी फसलें हैं उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, अगर नहीं रहेगा तो आप देखिए पिछले काफी सालों से हमारा मक्का और बाजरे का उत्पादन काफी बड़ा है, स्पेशली मक्का का तो बड़ा है लेकिन बाजरे का भी काफी बड़ा है। तो ये इसलिए बढ़ पा रहा है कि हम लोगों ने एक प्राकृतिक वेरिएशन है उसमें उनके बच्चों में से वो निकाल के ला रहे हैं और वैसी किस्मों को हम लेके आ रहे हैं जो आपकी जलवायु के प्रतिरोधन या सहन क्षमता होती है। दूसरा यह है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश बहुत कम होती है तो वहां एक छोटी ड्यूरेशन की वैरायटी HHB 67 में वो 70 दिन की फसल है और सबसे ब्लॉकबस्टर वैरायटी रही, ये हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से डेवलप हुई, अभी HHB 67 प्लस भी आ गई है उसकी। तो ये चीज उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में आपको रहना है तो उस हिसाब से चीज आनी चाहिए, और ये दोनों फसलें ऐसी जगह हैं, हालांकि आपने ओपनिंग में कहा था कि हमारे यहाँ पानी का बढ़ता जा रहा है, इरिगेटेड एरिया बढ़ता जा रहा है, पर 20% से ज्यादा इरिगेटेड एरिया नहीं है इस मौसम में इन फसलों में
1: जी।
0: ये उसी जगह होती है, बाजरा वहां होगा जब 500 mm से कम रेनफॉल होगी, मक्का वहां होगा जब 500 से 700 mm रेनफॉल होगी, दोनों का एरिया अलग है।
1: तो डॉक्टर साहब, हम तो ये चाहेंगे कि आप किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो धान की फसल लगाते हैं उसको छोड़ के मक्का और बाजरा की लगाएं जिससे पानी की भी बचत हो।
0: देखिए हम किसानों को ये सलाह देंगे कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक संभावना है, अगर आप धीरे धीरे इनको करना स्टार्ट करेंगे मक्का और बाजरा को, जहाँ पे मक्का हो सकता है वहाँ मक्का करिए, ज्यादा रेतीली जमीन है वहाँ पे आप बाजरा करिए। और वहाँ पे जैसे जैसे आप पानी को बचाएंगे, आप देखिए 3 से लेकर 5 इरीगेशन लगती है मक्का और बाजरे में
1: जी।
0: और आप चावल में लेंगे तो आपकी 25 से कम कहीं नहीं लगती। तो आप देखिए जो आप पानी नीचे से डाल के ऊपर लेके आ रहे हो,

0: और उसके अंदर आप चावल के अंदर भी काफी पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो पेस्टिसाइड आपके नीचे जा रहे हैं। किसान भाई ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास जो पैदा हो रहा है, अब नीचे का जो पानी है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड से, उसको जरूर आप एक अंदाज में देख करके देखें। और इन फसलों की तरफ आप जाएंगे तो धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा, मार्केट क्योंकि इन दोनों फसलों का काफी है। ये जैसे बायो फर्टिफाइड हो गया, मिलेट का भी अपना है पूरा दौर है तो उससे है, और मक्का एक औद्योगिक फसल है, 95% से ज्यादा मक्का उद्योगों में प्रयोग होती है, बायो इथेनॉल के लिए भी प्रयोग बढ़ रहा है। तो अगर इससे छोड़ के निश्चित रूप से वहां जाते हैं तो आपका सेहत, फिर मिट्टी का सेहत, ठीक है, और तीसरा पर्यावरण, तीनों की सुरक्षा होगी, और चौथा जो मैंने आपको बताया जो आपकी मिट्टी के अंदर जाके पानी प्रदूषित हो रहा है जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी फैल रही है, उससे भी हमें निजात मिल सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया किस तरीके से मक्का और बाजरे की खेती कर सकते हैं अगर इसमें भी तकनीक का किसान भाई प्रयोग करें। जैसे सिंचाई के नए नए साधन आए हैं, उसमें बूंद बूंद सिंचाई है, आपकी फवारी सिंचाई है, उसके द्वारा भी अगर करते हैं उसमें भी पानी की बचत होगी और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत में भी कमी आएगी। डॉक्टर शंकर लाल जाट जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान बहन भाइयों, आप सुन रहे थे बातचीत, विषय था मक्का और बाजरा, मोटे अनाज की खरीफ की बिजाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर शंकर लाल जाट और इनसे बात कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: नीलम बहन, आज का जो समय है वो इंटरनेट डिजिटल मीडिया का समय है और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर बैठे ही कोई भी जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है अगर वो अपने फोन का इंटरनेट का सदुपयोग करता है तो। और देखिए, आजकल तो हर क्षेत्र में तरह तरह के ऐप आ चुके हैं, हर विभाग के अपने अपने ऐप हैं और उनका बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे पीछे छूट सकता है। तो हमारे जो किसान बहन भाइयों को घर बैठे ही जरूरी जानकारियां हैं वो मिल जाए, इसके लिए किसान सुविधा ऐप भी आ चुका है और हमारे जो किसान बहन भाई हैं इसका उपयोग भी कर रहे हैं। किसान सुविधा ऐप कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है जो आप किसान भाइयों को मौसम, मंडी के भाव, खाद की उपलब्धता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, कृषि सलाह, इस तरह की 22 से अधिक आवश्यक सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करता है।
2: बिल्कुल शशि भाई, किसान सुविधा ऐप की विशेषताओं की अगर बात करें तो ये ऐप मौसम की जानकारी, वर्तमान तापमान, बारिश और नमी के साथ साथ अगले 5 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान बताता है और इस ऐप के माध्यम से देश भर की मंडियों के भाव और फसलों की दैनिक और नवीनतम मूल्य की जानकारी मिलती है और इस ऐप के माध्यम से स्थानीय डीलरों के पास खाद की उपलब्धता और कीमतों की जानकारी आसानी से मिल जाती है और साथ ही इस ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान भाइयों को आसानी से मिल जाती है और इसके अलावा किसानों के सवालों का समाधान और किसान कॉल सेंटर से सीधे जुड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: बिल्कुल, तो अब बात आती है कि हमारे वो किसान बहन भाई जो अभी तक इस किसान सुविधा ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और अब वो करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास जो स्मार्टफोन है तो उस पर आप आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाकर के या एप्पल ऐप स्टोर में जाकर के आपको सर्च करना है किसान सुविधा, और जब सर्च करेंगे आप तो कृषि मंत्रालय के लोगो वाले ऐप को आप पहचान करके इंस्टॉल कर लें और फिर जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन सब का फायदा आप किसान सुविधा ऐप के जरिए ले सकते हैं। तो नीलम है ना, ये तो जानकारी रही किसान सुविधा ऐप की, और देखिए अब समय हो चला है कि अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति ली जाए, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको आज का ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, नई दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति, सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 7:30 हुए हैं।
1: मन की बात है जन जन के, सभी के कुछ अपने से, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। श्रोताओं, वक्त शाम के 7:30 हो चुके हैं और गजलों के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले की आवाज से।

श्रोता, आप सुन रहे हैं गजलों का कार्यक्रम। अभी आपने आशा भोसले की आवाज में इस गजल को सुना। वो कौन है उसे सूरज कहूं कि रंग कहूं, करूं का जिक्र तो खुशबू जुबान से आएगी। जी हाँ, एक ऐसी खूबसूरत आवाज के साथ अगली गजल है जगजीत सिंह से

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गजलों के कार्यक्रम में मुझे यानी चेतना को, और अभी आपने जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल को सुना। सभी श्रोताओं के घड़ी के अनुसार शाम के 7:45 हो चुके हैं और गजलों के सफर में सिर्फ इतनी ही गजलें, लेकिन कुछ अनमोल शब्दों के साथ जगजीत सिंह की आवाज के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। समय शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्लीवासियों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और दिल्ली में जल आपूर्ति की बढ़ती मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने न्यूनतम 1,000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई जल और सीवेज परियोजनाओं से यमुना स्वच्छता अभियान को नई गति मिलेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है। उन्होंने नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, आधुनिक सीवेज व्यवस्था और वर्षा जल संचयन जैसे प्रयास स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और अविरल यमुना के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य राजधानी को देश और दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक बनाना है।
3: हमारी ये राजधानी देश में और विश्व में सबसे अव्वल शहर बने, ऐसा शहर बने जहां रहने वालों का दिल खुश हो, जहां रहने वालों को ये लगे कि हाँ, हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सबके दुख में अपना दुख देखते हैं और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते। और ये सुख तब बढ़ेगा और ये दुख तब कम होगा जब हम इसे शेयर करना शुरू करें।
2: दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत पहले स्थान पर है और इस क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है वो एक असाधारण उपलब्धि है।
3: हर आदमी पेटीएम जैसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा होगा। भारत नंबर 1 है डिजिटल पेमेंट्स में, सबसे आगे है। तो ये तकनीक का इस्तेमाल जो हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज, इन सब में आप सबका रोल प्ले है।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगामी कांवड़ यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय कांवड़ समिति का पुनर्गठन किया है। दिल्ली सरकार के संस्कृति और कानून मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विधायक अजय महावर, अनिल शर्मा, कर्नल सिंह, संजय गोयल और उमंग बजाज को समिति का सदस्य बनाया गया है।
4: नवगठित समिति के अध्यक्ष कपिल मिश्रा के नेतृत्व में जल्द ही जिला अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में यात्रा मार्गों के प्रबंधन, शिविरों में वाटरप्रूफ टेंटों की व्यवस्था

0: चिकित्सा सुविधाओं, निर्बाध बिजली पानी आपूर्ति तथा सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और जन आस्था का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कांवड़ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबोट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिणी के सहयोग से विकसित ये चैटबोट नागरिकों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। एक रिपोर्ट।
2: संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने बताया कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करती है और अतिरिक्त क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषाओं को शामिल करने के प्रयास जारी है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष दर्ज की जाने वाली लोक शिकायतों की संख्या 2014 से पहले लगभग 2 लाख थी जो आज बढ़कर लगभग 25 से 30 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीका के कई देशों ने भारत के शिकायत निवारण मॉडल का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। समाधान दीदी वॉयस आधारित और बहुभाषी शिकायत पंजीकरण प्रणाली है। ये नागरिकों को उचित विभाग या प्राधिकरण से शीघ्र और कुशलतापूर्वक जुड़ने में मदद करती है। नागरिक कई भारतीय भाषाओं में आवाज या संदेश के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने कहा कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का काम सौंपा गया था।
3: इसमें मुंबई से दो, उससे पहले 2 और हम लोगों ने पुणे से और झारखंड से लोगों को उठाया। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में अटैक के लिए कुछ मुंबई अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का इनको हैंडलर बनके सामान जमा करा रहे हैं और टारगेट कैरेटी करने के लिए उतर रहे हैं।
1: दिल्ली यातायात पुलिस के सड़क सुरक्षा जागरूकता ग्रीष्मकालीन शिविर 2026 के दूसरे चरण का आज सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये शिविर बाबा खड़क सिंह मार्ग, राष्ट्रीय बाल भवन, पंजाबी बाग और रोशनारा बाग स्थित 4 ट्रैफिक प्रशिक्षण पार्कों में आयोजित किया गया। यातायात पुलिस ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर के दूसरे चरण में लगभग 750 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पुलिस ने कहा कि शिविर के दौरान सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, ट्रैफिक ड्रिल तथा चित्रकला प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल आपूर्ति की बढ़ती मांग के चलते हरियाणा सरकार ने मुनक नहर के माध्यम से राजधानी को न्यूनतम 1000 क्यूसेक जल आपूर्ति बनाए रखने का आश्वासन दिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साझा की। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार राजधानी में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में जल आपूर्ति को लेकर 11,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के 980 से अधिक टैंकर प्रतिदिन 6,000 से अधिक फेरे लगा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत उपायों और दीर्घकालीन जल प्रबंधन योजनाओं पर कार्य करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक जटिल तकनीक विकसित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभापुर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक 300 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हों। निरीक्षण के दौरान दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग और एमसीडी के अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: ये दोनों को मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणी की। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
4: दंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
1: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता द्विशताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में आज शाम बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ बारिश और बिजली कड़कने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और

0: तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया। तेरी मर्जी की बहू तो आ गई, माँ तेरा बेटा अकेला हो गया। सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया। सच बहुत सचता था मेरी जात पर, आज ये कपड़ा भी छोटा हो गया। एक ही दुश्मन था सारे शहर में, एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया। एक ही दुश्मन था सारे शहर में, और कल उससे भी झगड़ा हो गया। पहले मेरी बेगुनाही देख ली, और फिर कानून अंधा हो गया। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत खूबसूरत
0: दोस्तों। इस समा खराशी के बाद अब मैं उस मोहतरम शख्सियत के हुजूर चलता हूँ कि जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो बेक वक्त शायर भी हैं, अदीब भी हैं, मुतरजिम भी हैं, मुदर्रिस भी हैं। तर्जुमे का इतना बड़ा काम है उनका, कई जबानों के आशना मोहतरम नसीब खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे आज इस्तफादा करें, उन्हें सुने और इस खूबसूरत मौके का फायदा उठाएं। नसीब खान साहब।
2: बहुत शुक्रिया शकील साहब। दो नज़में पेश खिदमत हैं। पहली नज़्म का उन्वान है कच्ची उम्र की दुल्हन।
0: क्या बात।
2: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा।
0: क्या बात।
2: रात ख्वाब में देखा खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा, चिन मने हैं सतरंगी कच्ची उम्र की दुल्हन और किताब हाथों में गुंजलत पहेली की, दामनों में सफहों के बेल और बूटे कुछ मुख्तसर फसाने भी है, सरे वरक भी कुछ सरगुजश्त परियों की, तेल और दिया बाती कांपती दुलाई की, मलगजे से कोनों में है कशीदा रूसाए।
0: क्या बात।
2: दो कहार एक डोली एक मुश्तैल मरघट, आखिरी वरक पर है नौजवान एक बेवा लाल सुर्ख पैराहन, अजमरी किनारों पर कोपले है नौ रुस्ता और दमकता मुखड़ा भी है गुलाल आलूदा।
0: क्या बात।
2: लकड़ियां है चंदन की उड़ रहे हैं अंगारे, नौजवान बेवा एक नौजवान है बेवा एक तरफ है बिस्मिल की, डोमनी से जेरे लब बोलती है जाने क्या,
0: क्या बात,
2: और
0: क्या
2: चिता पे चढ़ती है डाल किर्म खुर्दा सी, डोमनी उठाती है और निगाह एक फासिद डालती है बेवा पर,
0: क्या बात,
2: ढेर है कि लकड़ी का राख एक मुट्ठी भर, बेपलक है दो आंखें ढूंढती हैं पलकों ढूंढती हैं नौहागर, डोमनी रुदाली को दूर अलग थलग बैठी तौकदार कुमरी एक भूखती उबलती है, नींद टूट जाती
0: है। बहुत अच्छा।
2: नींद टूट जाती है।
0: बहुत खूब।
2: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा, खुशनुमा सी डोली में नक्श एक नगीना सा ख्वाब मैंने दोहराया।
0: बहुत अच्छा।
2: बरघटों के सीनों पर हैं अघोर पंथी कुछ, राख से चिताओं की हड्डियां उठाएंगे मस करेंगे गालों से, गर्म राख से अक्सर रकलदार मांजेंगे और नाफ रगड़ेंगे हड्डियों से एड़ी की, बूढ़ा सोच कर बोला। कांच की सुराही में नाचता हुआ इंसान बेबसी की शहनाई तालियां बजाएगा, शोभदे कलंदर के है नजूल सहबा का, जिस मुजा के उतरन भी तार हाय सीमो जर, होंगे शहद के छत्ते होंगे शहद के छत्ते, रात ख्वाब में देखा।
0: क्या बात है, क्या
1: बात है। मंदर निगारी का तो कमाल है।
2: दूसरी नज्म का उन्वान है एक सियाह मरज होगा। रात ख्वाब में देखा नीम जान करगस एक ना उम्मीद कुछ तरसा,

0: चलता है पर अपने पास गोरकन बूढ़ा नीम जान करगस से जेरे लब मुखातिब है। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सरमगी सी चादर के। शाम है जमिस्ता की और दबीज है कोहरा सुरमगी सी चादर एक दूर आसमानों से अब उतरने वाली है। माबदों के जीने सब बांग देने वाले हैं रात मुर्गो माही के खान सजने वाले हैं। आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के वक्त के सलासिल के मुनहनी से कैदी हो। चाहते हो गर्दिश क्यों राह एक बेगानी लाल जानवर वहशी मुश्क नाप की खातिर तुमको नोच डालेंगे शहर में खमोशा के। आना सहल कितना है पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं ऊँघते शराबों से मुस्तरद मकानों से झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: शहर में खमोशा के आना सहल कितना है पर यहाँ से जाने के रास्ते गुजरते हैं ऊँघते शराबों से मुस्तरद मकानों से झाग जिस्म पानी से कल अदम जमानों से। राहगीर भी गुमसुम हापते झपटते हैं शाहिबा सफा हूँ मैं काजिए जहाँ हूँ मैं। बात मान लो मेरी आज तुम यहीं ठहरो वरना बाव के झोंके वरना बाव के झोंके और बगुले शोरीदा सारी खाक कब्रों की डाल जाएंगे तुम पर। अब जमीन की गहराई रास आती जाएगी तेवरों की दुनिया से दूर एक दुनिया में चौबदारों के दस्ते और संतरी सारे धारदार कतबों के बेशुमार टुकड़ों से संगसार कर देंगे या कि जबह कर देंगे। आज तुम यहीं ठहरो शहर में खमोशा के बस पलक झपकते ही झिलमिलाने लगता है और एक नया मंजर नीम जान करगस फिर तौलता है पर अपने अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में नीम जान करगस की। अधमरी सी कुमरी एक झूलती है गर्दन में नीम जान करगस की। माबदों के जीने सब बांग देने लगते हैं नींद टूट जाती है नींद टूट जाती है।
1: बहुत
0: आओ भाई आओ तुम बोलो ख्वाब क्या देखा नींद जान करगस सिख ना उम्मीद कुछ तरसा तौलता है पर अपने ख्वाब मैंने दोहराया।
1: बहुत अच्छा।
0: सख्त जहाँ दरिंदे हैं और वो होश जिन्नाती करवटें तो बदलेंगे दांत कटकटाएंगे हुक्मरान शेरों के फील्बा सजीले सब सैद होंगे हाथी के और असीर पंजों के आजमाएंगे जादू बूढ़ा सोच कर बोला। और गजा में शेरों की हाथियों के बच्चों की ताजियानों के टुकड़े धारदार अनी होंगी हाथियों के पैरों में आबले पड़े होंगे जंगलों के राजा को एक सियाह मरज होगा एक सियाह मरज होगा।
1: बहुत अच्छा।
0: रात ख्वाब में देखा रात ख्वाब में
1: बहुत
2: खूबसूरत।
1: दोस्तों ये थे नसीब खान साहब जो बहुत खूबसूरत नज़्मों से हमें नवाज रहे थे। आज की ये नशस्त यही इख्तिताम पज़ीर होती है। आज की इस नशस्त में जो शोराए किराम हिस्सा ले रहे थे उनमें जनाब नसीब खान साहेब जनाब परवेज शहरियार जनाब आसिफ अमन सैफी और मैं आपका खादिम शकील जमाली। इजाजत दीजिए शुक्रिया।
2: सामईन कराम अभी आप सुन रहे थे बज्म मुशायरा। इस बज्म में शामिल थे परवेज शहरियार आसिफ अमन सैफी अब्दुल नसीब खान और निजामत के फरायज अंजाम दे रहे थे जनाब शकील जमाली। तो सामईन कराम हमें उम्मीद है और यकीन है कि आप इस बज़्म में लुत्फ अंदोज हुए होंगे इस बज़्म का लुत्फ उठाया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके लिए ऐसे ही बज़्म सजाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही शोरा को स्टूडियो में हम बुलाते रहेंगे और आपको उनके अशआर सुनवाते रहेंगे। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस प्रोग्राम की तरतीब पेशकश इंतजार सैफी की थी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान شاہنواز ہاشمی کو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. خدا حافظ.
3: یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرست چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. ابھی آپ نے مشاعرہ سنا, اور اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی ٹھیک 8:30 پر آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کاریکرم. کرپیا ہمارے اگلے کاریکرم کی پرتیکشا کیجیے. یہ آکاش وانی دلی کا دلی کیندر ہے اور اب پرستت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم. سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت جسے گایا ہے پریا نے.

आज बरसा तो है और इश्क की स्याही नहीं लेकिन बहुत खूबसूरत बूंदे जरूर पड़ी हैं जिसने मौसम पर असर डाला है और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है।

गाने में एक लाइन थी कि तेरा मेरा प्यार हुआ है और जमाने को ना हो खबर, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल है कि इश्क पर मुश्क छुपाया नहीं छुपता, तो इश्क को चाहे जितना छुपाइए वो छुपता नहीं, जाहिर हो जाता है और कई लोग तो इसकी दावत तक दे देते हैं। तो दावत इश्क फिल्म का अब आप अगला गीत सुनेंगे जिसे गाया है जावेद अली ने, और ये होगा इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। आपसे फिर मुलाकात होगी 11:10 पर। फिलहाल इस गीत के साथ तलत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनेंगे आप इवनिंग न्यूज और 9:15 पर समय होगा उर्दू में खबरों का, 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती कार्यक्रम। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडलेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
4: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
5: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं।

0: जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउन जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाह मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक

0: में इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। आप प्रोफेसर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली के शुभाय हड्डी में।
1: स्पाइन की जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो जन्म से ही शुरू हो सकती हैं। अच्छा। जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार उनकी बनावट ऐसी होती है कि रीढ़ की हड्डियां जो पीछे हैं वो पूरी अच्छे तरीके से बनती नहीं है, तो अंदर की जो स्पाइनल कॉर्ड है, नसें जो हैं, वो कई बार बाहर रह जाती हैं। तो बचपन से ही शुरू हो सकती है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो रिकेट्स की बीमारी में टेढ़ापन आ सकता है। जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें भी रीढ़ की हड्डियां में टेढ़ापन आ जाता है, आपने देखा हो कई लोग की कमर बिल्कुल टेढ़ी होती है या आगे बहुत ज्यादा झुके हुए होते हैं बच्चे। इसके अलावा यंग एज में एक्सीडेंट से हड्डियां टूट सकती हैं, तो रीढ़ की हड्डियां भी टूट सकती हैं। लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जो लोग ऑफिस में बहुत समय तक बैठ के काम करते हैं उन लोगों को कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये भी बहुत आम पाया जाता है आजकल। और इसके अलावा जब उम्र बढ़ जाती है तो फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस जो होती है, जो उम्र की वजह से बदलाव आ जाते हैं, उसकी वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और महिलाओं में तो हड्डियां कमजोर भी हो जाती हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, जैसे कि टीबी है, टीबी भी रीढ़ की हड्डियों में हो सकती है। तो ये कि हर चीज हो सकती है, जो भी किसी भी शरीर के अलग और किसी भाग में हो सकती है, वो सारी चीजें स्पाइन में भी हो सकती है। आपको अपने स्पाइन का ख्याल रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, क्योंकि जो हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो एकदम बीच में है, उसके साइड्स में जो है मसल्स होती हैं, और हमारा पूरे शरीर का जो आकार है, जो वजन है, वो सब रीढ़ की हड्डियों के से ही जा रहा होता है। अगर आसपास की मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो वो जल्दी थक जाएंगी, जल्दी थक जाएंगी तो फिर वो दर्द करेंगी। तो कमर का दर्द या पीठ में जो दर्द होता है लोगों को, वो सिर्फ रीढ़ की हड्डियों की वजह से नहीं होता है, वो कई बार मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से भी हो जाता है। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि चाहे जितनी भी लाइफस्टाइल बिजी हो, लेकिन अगर वो 10 मिनट 15 मिनट रोज हम सब अगर एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डियों की जो एक्सरसाइज होती है, कमर की जो एक्सरसाइज होती है, अगर ये 10-15 मिनट भी रोज अगर हम रोज करेंगे तो हमारे धीरे धीरे वो मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। मसल्स स्ट्रांग होंगी तो जल्दी थकेंगे नहीं, जल्दी थकेंगे नहीं तो वो दर्द नहीं करेंगी। और आजकल एक्सरसाइज के अलावा उनको विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने वजन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप बैठ के काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपका वजन भी बढ़ता जाए धीरे धीरे। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, स्पोर्ट्स खेलने हैं, वजन बढ़ने नहीं देना, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो सिर्फ वही वजन आपकी रीढ़ की हड्डियों के जरिए नीचे जाएगा और फिर उसमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ओल्ड एज में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, उसके लिए इन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही है। और ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, तो उसके लिए शुरू से ही अगर हम ख्याल रखेंगे और टेस्ट करा लेंगे तो हम उससे भी बच सकते हैं। लंबे समय तक बैठने के लिए पोस्चर इम्पोर्टेंट होता है, और स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डेफिनेटली जो इंडोर्स काम करते हैं, रीढ़ की हड्डी स्पाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। हम उसकी वजह से ही बैठ पाते हैं, उसकी वजह से ही खड़े हो पाते हैं, उनकी वजह से ही हमारा आकार होता है, हमारी हाइट होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या इलाज होता है, वो हम चर्चा कर ही चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, कि हमें ये समस्याएं हो ही ना। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। अगर आप रीढ़ की हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, मसल्स आपकी बैक की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, गर्दन की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी, तो वो आपको आगे प्रॉब्लम, बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड। इसके अलावा आपको नियमित एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, जिसमें विटामिन डी भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन्स भी हो, और अपने वजन का ख्याल रखें, वजन ना बढ़ना दें। शरीर का वजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रीढ़ की हड्डियों पे जोर पड़ेगा। बच्चों को मैं खासकर एडवाइस देना चाहूंगा कि खूब आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, धूप में खेलें, ताकि उनको विटामिन डी मिलता रहे, उनकी मसल स्ट्रांग रहे। और बस यही बोलना चाहूंगा, पोस्चर का बहुत जरूरी है, कि पोस्चर वर्क प्लेस पे बहुत आम प्रॉब्लम आ रही है आजकल, तो उसके लिए भी पोस्चर अपना सही मेंटेन रखें, बीच बीच में ब्रेक्स लें।
0: सामीन, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब की बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने मुफीद मशवरों से नवाजने के लिए हम

0: अपना वली अहद मंसूब करते हैं।
1: शाह अकबर शाह सानी ने शाहजादा मिर्जा जहांगीर को वली अहद तो मुकर्रर कर दिया, लेकिन ब्रिटिश रेजिडेंट सीटन ने मिर्जा की आवारा गर्दी और बदतमीज से तंग आकर मिर्जा को कैद कर लिया और अलाहाबाद की जेल में भेज दिया। बेटे के गम में अकबर शाह सानी परेशान हो उठे। बेगम मुमताज महल भी गमजदा रहने लगी। सिराजुद्दीन बहादुर शाह सब कुछ देखकर भी खामोश थे। उनकी बेगम ताजमहल भी मिर्जा की रिहाई के लिए कोशिश करने लगी।
2: मेरे सरताज,
3: ताजमहल, बेगम आप इस कदर परेशान दिखाई दे रही हैं।
2: मेरे मालिक, हमसे अम्मी जान का ये दुख नहीं देखा जाता। हर वक्त पागलों जैसी बातें करती हैं। आप ही सिपुन साहब से मिलकर मिर्जा की रिहाई के लिए कुछ कीजिए ना।
3: ये तुम कह रही हो ताज, ये जानते हुए भी कि ये क्या हो रहा है?
2: मैं जानती हूँ मेरे हुजूर, लेकिन
3: हमने सितन साहब से बात की थी बेगम, लेकिन वो मिर्जा को रिहा करने के हक में नहीं है। वो तो एक ही रट लगाए हैं।
2: वो क्या मेरे मालिक?
3: बड़ा बेटा होने के नाते हमें वली अहद बनाया जाए। उन्हें तो मिर्जा की काबिलियत पर भी शक है। फिर मिर्जा उनके साथ बदतमीजी से पेश आए, सरेआम उनका मजाक उड़ाया और उन पर तमंचा दागा। उसी का नतीजा है कि आज भाई भाई से अलग कर दिया गया।
2: मिर्जा का कसूर तो वाकई मामूली नहीं है।
3: ठीक कहती हो ताज, लेकिन मेरी और मिर्जा की रगों में एक ही खून हरकत कर रहा है। हम खुद इस मसले से परेशान होते हैं। भाई आखिर भाई है बेगम।
2: ताज, आदाब अम्मीजान।
3: अम्मीजान, आज सलूनों का त्योहार और आप?
4: गम में इंसान को किसी बात की खबर नहीं रहती। गम में एक ऐसी बेहोशी तारी कर देता है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है।
2: मलका आलिया, आप कब तक ही वही सोगवार रहेंगे?
3: अम्मीजान, हम फिर से उनसे बात करते हैं।
4: तुम नहीं जानती ताजमहल, एक दर्द ऐसा भी होता है जो रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जाता है।
2: अम्मी जान,
4: हमारा बेटा जहांगीर कैदोपन की मुसीबतें झेल रहा है।
2: अम्मी जान, दरअसल मिर्जा जहांगीर ने खुद ही बैल को दावत दी कि आ और मुझे मार। जबान फपती और मजाक की तो बात ठीक थी अम्मी जान, लेकिन मिर्जा ने तो सीतन साहब पर गोली चला दी और मामला इस हद तक बढ़ गया।
4: बहु बेगम, इस गम में हमें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। दुआ करो कि हमारा बेटा परवरदिगार आलम ये गुनाहगार नाचीज बंदी तेरी दरगाह में सजदा रेज है और गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ करती है कि अगर मेरा बेटा जेल से रिहा होकर बखैरियत वापस आएगा तो मैं तेरे नेक बंदे हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अला रहमत के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाऊंगी।

0: हम उसके एहसान का बदला उम्र भर नहीं उतार सकते।
1: हमें एहसास है आलम बना।
0: जानती हो बेगम, अब्बा जान के वालिद बुजुर्गवार शाह आलमगीर, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, रियाया को उनसे कितना प्यार था। हमें आज भी याद है वो वाकया, दादा जान को फकीर के बहाने बुलाकर नमक हराम गाजीउद्दीन ने कत्ल करवा दिया और उनकी लाश नाहंजार ने जमुना की रेत पर फेंक दी। हमारी फूफी राम कुंवर ने अपने बादशाह की लाश को देखा और वो सारी रात मरहूम का सर अपनी गोद में लेकर रोती रही, उनकी मैयत की हिफाजत करती रही। फूफी जान तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और वतन प्रस्ती की एक जाविदा यादगार थी, और हमारी बहन शाम कुंवर तो उनसे भी बढ़कर है।
2: मुबारक हो मलका आलिया, मुबारक हो। अभी अभी महमूद बेग खबर लाए हैं कि सिट्टन साहब ने मिर्जा की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया।
1: अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: आ गई श्याम कुंवर?
1: सुखी तो है मेरे भैया।
0: आओ बहन, हम तुम्हारे ही मुंतजर थे।
1: जुग जुग जियो मेरे भैया।
0: बहन, हम देख रहे हैं कि बहन के कदम कितने मुबारक होते हैं। नेक और प्यारी बहन जब भी भाई के घर आती है तो अपने साथ एक मुजदा जाफजा लाती है। तुम्हारे आने से पहले अभी अभी मिर्जा की रिहाई की खबर हमें मिली। आज तुम जो भी चाहो हमसे मांग लो।
1: मेरे अच्छे भैया, बहन अपने भाई से अपने प्यार का बस इतना ही बदला चाहती है कि उसका भैया जुग जुग जिए और अपनी बहन की रक्षा करता रहे। अपनी कलाई इधर लाओ भैया, मैं राखी बांध दूं।
0: हम इस राखी की कदर कीमत जानते हैं बहन। ये वही राखी है जो हमारे जदे अमजद जन्नत मकानी नसीरुद्दीन हुमायूं को उनकी बहन करमवती ने बांधी थी। ये वही राखी है जो तुम्हारी मां ने कौमी इत्तेहाद का सबूत बनाकर अब्बा जान की कलाई पर बांधी थी और आज तुमने हमें बांधी है। ताजमहल, वो थाल इधर लाओ।
1: ये लीजिए अब्बा जान।
0: ये लो शाम कुंवर।
1: भैया इतना कुछ?
0: ये भाई की मोहब्बत और प्यार का हकीर नजराना है बहन। हम जानते हैं कि बहन धन दौलत की भूखी नहीं होती, लेकिन भाई इस अदना से नजराने से ये जताना चाहता है कि वक्त पड़ने पर भाई अपनी बहन पर धन दौलत ही नहीं बल्कि अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है।
1: सदा सुखी रहो मेरे भैया, अब मुझे इजाजत दीजिए।
0: अच्छा शाम कुंवर।
2: ठहरो बहन।
1: भाभी जान,
2: ये लो, ये मेरी तरफ से।
1: ये हार?
2: शाम कुंवर, तुम ऐसी मुकद्दस सरजमीन की बेटी हो कि इस घर में तुम्हारी आमद हमेशा मसर्रत का पैगाम लेकर आई है। तुम आई तो मेरा दुख सुख में तब्दील हो गया। इस घर में हमेशा राखी आती रहेगी और बहनें अपनी छोलियां भर भर कर जाती रहेंगी।
1: भाभी,
2: ऐ खुदाए बुजुर्गो बेहतर, तू रहीमो करीम है। फरियाद अगर सुनता है तो बस तू ही सुनता है, आरजू तू ही पूरी करता है। ऐ वालिये दो जहां, आज तूने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपनी मानी हुई मन्नत पूरी कर सकूं। मैं हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। आज मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है।
3: अमीजान।
2: निर्सा।
3: अमीजान, ये आपकी दुआओं का असर है कि आज मैं फिर आपके कदम चूम रहा हूँ।
2: उठो बेटा, मुझे जरा अपनी सूरत तो देखने दो। ओह, मेरे बेटे का गुलाब सा चेहरा कुमला गया है। किसी ने सच कहा है कि फूल बादे सरसर के एक भी छोंके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, नाजुक शाख फूल का बोझ भी नहीं उठा सकती।
3: अम्मी जान, आपकी शफकत की छांव में मुरझाया हुआ गुलाब फिर खिल उठेगा।
2: निस्सा।
3: लेकिन अम्मी जान, ये मौजूदा हुआ कैसे? मेरा जुर्म तो बहुत ही संगीन था। मैं तो सोच रहा था कि अब मैं उन्हीं सलाखों के पीछे गल सड़ जाऊंगा। सिटन ने जिस कार्य तारीख में मुझे धकेला है उससे उम्र भर नहीं निकल सकूंगा।
2: सिटन ने ही तुम्हें उस अंधेरे कुएं से निकाला है बेटे।

0: उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया।
1: क्या क्या मैं उनके हुक्म से रिहा कराया हूँ?
2: हाँ बेटे, इस मुकद्दस धरती की मट्टी में रवादारी, सुकून और माफी का खमीर है। इसकी फजा में हर तरफ खैर सिगाली, दोस्ती और मुसालहत की नसीम चलती है। ये सरजमीन तुंदखू हुक्मरानों का मिजाज भी बदल देती है।
0: यहाँ दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है बेटे।
1: नहीं नहीं नहीं, ये हमारी अम्मी जान की दुआओं का असर है कि हमारे पांव में पड़ी जंजीरें टूट गईं।
0: ये हमारी ही दुआओं का नहीं बेटे, बल्कि बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत इस शहर के तमाम लोगों की दुआओं का असर है, और उन दुआओं में श्याम कुंवर की दुआएं भी शामिल है।
1: कौन? फूफी जान?
0: हाँ मिर्जा।
2: हमारी बहन, वो तुम्हें कितना प्यार करती है।
0: वो राखी बांधने आई तो तुम्हारी रिहाई की खुशखबरी भी साथ लाई।
1: अम्मी जान, ये इतना एहतमाम क्या हो रहा है?
2: आज तुम्हारी रिहाई की खुशी में इजहार तशक्कुर का फर्ज अदा किया जा रहा है।
1: इजहार तशक्कुर?
0: आज मैं महरोली जा रही हूँ, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाने।
2: और मिर्जा, आज एक ऐसे मेले की बुनियाद रखी जा रही है जो अब तक कायम रहेगा। हमारी हिंदू रियाया ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्हें भी इस मुबारक मौके पर योग माया जी के मंदिर में फूलों के पंखे चढ़ाने की इजाजत दी जाए। इसलिए ये मेला शहर गुल फरोशा के नाम से मौसूम होगा और तमाम खास अवाम के आपसी इत्तेहाद का आईनागार होगा, और एक ऐसे कौमी इत्तेहाद का आलमबरदार होगा जो मुल्क और कौम को मजबूत

योग माया का मंदिर भी रोशनी से जगमगा उठा। शंख घंटे घड़ियाल बज उठे। बादशाह की बहन श्याम कंवर ने बड़ी श्रद्धा से फूलों के पंखे और देवी को

0: आलम बना, शहर से तो उमरा तशरीफ लाए हैं, जहाँ पना की खिदमत में पेश होने की इजाज़त चाहते हैं।
1: इजाजत है, आलम पना का इकबाल बुलंद हो।
2: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
3: कहिए, मिजाज तो अच्छे हैं ना?
1: जहाँ पना का करम है।
4: जिले सुभानी, हम फूल वालों की सैर मनाने की इजाजत चाहते हैं।
1: अलीजा, आप तारीख मुकर्रर कर दें तो मेहरौली में फिर बाहर आ जाए।
3: सुभान अल्लाह, सैर गुल फरोशा तो हमारी अम्मी और अब्बा जान की जाविदा यादगार है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की वो यादगार जो हर वक्त हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है। ठीक है, 24वें को जुमे की नमाज के बाद हम मेहरौली को रुखसत हो जाएंगे।
5: बादशाह सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर की मुकर्रर की गई तारीख पर सहर गुल फरोशा के लिए लाल कले से काफिला रवाना हुआ। पहले एक तोप दागी गई, इसे रवानगी का हुक्म समझा गया। आगे आगे घोड़ों पर सवार फौज के सिपाही, पीछे ऊंटों पर लदा सामान और हाथी पर शाह बहादुर शाह जफर, उनके पीछे डोलियां, बैलगाड़ियां। गर्जन की दिल्ली मेहरौली की तरफ उमड़ पड़ी। उधर मेहरौली के ठाठ ही निराले हैं, जहाज महल खूब सजा है, शमसी तालाब पानी से भरा है, झरना भी लबरेज है, अमराइयों में झूले पड़े हैं, आतिशबाजी का पूरा इंतजाम है। मेले में कहीं तीतर बटेर डड़ रहे हैं तो कहीं कुश्तियों के दंगल हो रहे हैं, कहीं कबूतरबाजी तो कहीं पतंगों की पेंच रड़ रहे हैं, कहीं पर नट कलाबाजी दिखा रहे हैं तो कहीं बाजीगर अपना कमाल दिखा रहे हैं। गर्जे के जंगल में मंगल

0: और फिर एक अरसे के बाद,
1: कौन है, कौन है उधर?
2: कोई नहीं, मैं हूँ।
1: कितनी बदल गई है दुनिया। कहता है कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं, ये मैं ही इंसान को खा जाती।
2: मैं चंदन हूँ बाबा, जहाज महल देखने आया था। तुम कौन हो?
1: मुझे नहीं जानते। क्या जानोगे तुम? मैं रखवाला हूँ इस जहाज महल का।
2: इस महल का?
1: हाँ।
2: खंडरों का?
1: इन्हीं खंडरों का, इसी जहाज महल का, जो खंडरों में बदल गया।
2: ये कैसे हुआ बाबा, मुझे बताओ ना।
1: क्या बताऊं तुम्हें, चले जाओ यहां से, चले जाओ। जो भी आता है हम खा परेशान करता है मुझको।
2: गुस्सा ना करो बाबा,
1: खुदा के लिए चले जाओ। मैं कहता हूँ चले जाओ। क्यों मेरे जख्मों को कुरेदते हो? फूट जाएंगे मेरे दिल के पपोले। जाओ जाओ, किसी गमजदा को यूं सताया नहीं करते।
2: जाओ, अपना गम मुझे दे दो बाबा।
1: क्या गम दे दूं तुम्हें? मेरा जहाज महल खंडरों में तब्दील हो गया। कभी यहाँ फूल वालों की सैर मनती थी, अब क्या रखा है यहाँ? अब तो मैं, मेरी वीरानिया।
2: एक बात बताओ बाबा।
1: बोलो।
2: इस साल फूल वालों की सैर नहीं होगी क्या?
1: अब कैसी फूल वालों की सैर? किसके लिए, कौन मनाएगा?
2: अपने बादशाह की याद के लिए हम दोनों ही मनाएंगे बाबा। लोग आएंगे, सब आएंगे, सब कुछ होगा बाबा,
1: इंशाल्लाह।
0: वक्त ने फिर करवट ली। भारत के हरदिल अजीज प्रधानमंत्री आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेक ख्वाहिशात से अंजुमन सैर गुल फरोशा ने इस मेले में फिर से एक नई रूह भोंकी। और अब ये मेला हर साल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का जीता जागता सबूत बनकर हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है।

सुरेंद्र वर्मा का लिखा ड्रामा मन्नत आप अभी सुन रहे थे। पेशकश जनाब प्रेम वोहरा की थी। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लिए सामने पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामीन की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

साल करने में राहट गांव के में अमरावती से श्याम किटे वंदना किटे कार्तिक किटे ने फरमाइश में भेजी है। बांदा उत्तर प्रदेश से फई मंसूरी फातिमा मंसूरी शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, और ये फरमाइश स्वीटी छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, तरह गार्डन नई दिल्ली से। ये फरमाइश हमें इस साल की है। सफी मुल्ला जी, विदिश मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी ने भगत बेलहुबली कर्नाटका से, मुताला महाराज से विजय सुरलकर, तंगमाला सुरलकर कुमकुम जीन के साथ है, वर्ली मुंबई से नवाब खान, अजहर खान, इशरत जहां और इनके साथ है, इनके घर के एक और फर्द है। हमें फरमाइश इस साल करते हैं। अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं और उनके नाम है निजामगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूख शबनम शहनाज। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू। बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत गुहाकर, लाड लाड टुक टुक गुहाकर। आदर्श नगर मलोड़ पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, निवान शर्मा। सौराष्ट्र राजकोट से जुड़ी जगदीश गुजराती, जनेश गुजराती और लड्डू कुमारी। ये फरमाइश हमें इस साल की है। राहुल मनवर, सरला मनवर, बीबी प्रियांशी शाहनगर यवतमाल से। ऐसे में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फरेब फिल्म का ये दो गाना, जिसे कलमबंद किया मजरूह सुल्तानपुरी ने और मौसीकी तरतीब दी अनिल विश्वास ने। इस नगमे को सुनना चाहा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और इनके साथ एक और साथी हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। ये फरमाइश हमें हमने इस साल की है। आइए अब और भी फरमाइश शामिल करते हैं और उसके बाद आप सबकी पसंद का नगमा आप सबकी खिदमत में है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा नायाब। और ये फरमाइश सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीली मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। गांव डाकघर निमनाबाद, जिला जींद, हरियाणा से जसवीर सिंह और जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और उनके साथ इनके दोस्त अहबाब। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रेहान। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, उत्तम जमदाड़े। और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है नर्मदा पार्क मंगल वेढ़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजहद पटेल, नदीम पटेल की। मसलम सैफी, जाहिद अली सैफी, आबाद खान। एटागंज टुडवारा से वैसे ही फरमाइश करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपना पता शायद लिखना भूल गए। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे, नारायण कमल। वरवट बकाल बुल्ढाना से दिव्या इनके साथ हैं और इनके साथ इनकी एक और साथी शास्त्री नगर। माल ढेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे। अमीर खुसरो रोड गंजड़वारा से डॉक्टर दबीर उल हसन, बेगम शबन अनवार, भुवन प्रकाश गौतम। और पटियाला चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। तो ये सब मैंने आप सबकी पसंद पर आप सबकी खिदमत में है।

शमीम मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना, फिल्म थी बेटी बेटे। शैलेंद्र नगमानिगार थे और मौसीकार शंकर जयकिशन। फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई थी कर्नाटका गुलबर्गा से, मोहम्मद नुकरुद्दीन मंथाल, शब्बीर बनाटी, आसिफ इकबाल ने से नगमे को सुनना चाहा था, और इनके अलावा और भी फरमाइशें हमें मौसूल हुई हैं। उनके नाम हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर मनोहर कुमार, बिट्टू कुमार, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया, महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे, महेंद्र सरकटे बरुड जावलका से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं, और शास्त्री नगर बीशहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया, विशाल सबकाल, कपचड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीनाजाद, अस्मा परी राविया, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूरा शामिद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, और ये फरमाइश विजय चौहान मराना शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं, तेजस्वी चौहान अंकिता अनिकेत चौहान इनके साथ है, नागचुन रेडियो रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अंजल हक डावर, जियाउल हक डावर और इनके साथ और भी साथी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भरत, श्वेता भगत, किशु दाशु, और ये फरमाइश किशोर नगर अमरावती के राम शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोंडा ने, गायत्री कॉलोनी खंडवा से फैज अहमद अफसाना और हसन लाला, जगीर सिंह ठाकुर अनिलेश शर्मा कैथल हरियाणा से, और ये फरमाइश हमें इरशाल की है, पहले रोड गुंजुड़वाला से मोहम्मद कलीम जख्मी, बेगम नाज, बीबी फातिमा गाजी ने, ये फरमाइश है मोदी चौक मोदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी की। फरमाइश इरशाल करने वालों के नाम है कोड़ी सेक्टर 516 नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। फरमाइश इरशाल की है सुब्रत चौधरी ने कोलकाता से, गांव नथारा पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्ती सीता गीता, खतीगढ़ खंडवा से मोहम्मद कासिम और हनीफ पेंटर बाबू, मुताला बाजार से बाबू ठेकेदार शेख शागिर, शेख वजीर सुहेल शेख इनके साथ है, सलिया खानम, फरीदा शबनम, रईसा खातून, चमनपुरा उदयपुर से फरमाइश उन्होंने भेजी है, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, शराव्या राम टेके और जमानिया गाजीपुर से सूरज जायसवाल और मेरा जायसवाल दीपक जायसवाल। फरमाइश बेलटाउन का नाम से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है

Dar acolo și eram pur maestru Sein Nasir Sheikh. Mazi Nasir Sajide Shahide. Deras pro raj course madhe sudan bhat arti bhat aur prayagraj bhat. ऐसा मैंने आपको दिल्ली का ठाकुर फिल्म का ये दो गाना सुनाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में. चलेंद्र ने बोनो कलमत किया मौसे के तरतीब दी है रवि ने और फरमाइश में मौसूल हुई है सतीश अनिजा और बिमला अनिजा की चंडीगढ़ से. इसी नगमे को हमें हमसे सुनना चाहिए रजावत कॉम्प्लेक्स नेचुरल कैंप पिछाने पुरुष मनमोहन रजावत राज मधु रजावत और राशि रक्षित ने. फरमाइश हमें इस साल की है रामगढ़ के एंस महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने. फरमाइश साल करने वालों के नाम है मोहम्मद शराफ अंग्रेज आसिफ अंग्रेज सादिक अंग्रेज वसई ईस्ट मुंबई से. और ये फरमाइश हमें इस साल की है फरमाइश साल करने वालों के नाम जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा दिशानी और इनके साथ और भी साथी सिंगार तलाई खंडवा से राधेश्याम यादव प्रभा यादव शालिनी यादव और साथ में और भी कुछ साथी परानगर बड़वा से भारती कुशवाहा मनीष कुशवाहा पार्थ कुशवाहा समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति सिंह अनामिका सिंह और फरमाइश है पंडाना जिला खंडवा से संतोष जायसवाल मधु जायसवाल और अमन जायसवाल की आवासीय कास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर तन्मयपुरी गौर सुरेश आशीष गौर. और ये फरमाइश ताज लिसनर्स क्लब कल्याणगंज खंडवा से कौशल बी पवार हसीना बी पवार हिना सईद खोकर अस्तपुरा जिला मऊ से मजहरी अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवान परवीन अब्दुल्ला आजाद. फरमाइश साल करने वाले हैं एम खलील कुरैशी पटियाली रोड गंजुड़वा उत्तर प्रदेश से साथ में इनके हैं नुसरत बेगम बेबी अरिबा हबीबा. फरमाइश इस साल की है खराला शरीफ जिला खंडवा से सलीम चौधरी माहिनूर और सुल्ताना ने. रघुवीर नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख और तबस्सुम शेख बेबी अलिशबा शेख. और ये फरमाइश हमें इस साल करते हैं ऑक्सीजन पर राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडा ने अर्चनताई गुंडा ने हिरामन शेंडे और इनके साथ इनके कुछ और साथी हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमी बेगम

0: बांद्रा में मुंबई ईस्ट से शाहीन परवीन सोनम भाई आयश शेख मोहम्मद अरीब शेख ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन सारे फरियाद हुसैन अंसारी शकील अहमद रिशी और इनके साथ इनके कुछ और साथी तहसील रोड गंजुड़वार से इशराही गुड़िया बेगम वो कीड़ी प्रेमी अजमेर शरीफ राजस्थान से गुलनाज बेगम हाशमी सैयद आलम हाशमी मोहम्मद आलम हाशमी बाजापुर शिगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल मोहम्मद दानिश मोहाल मोहम्मद रिजवान मोहाल तो ये सामने आप सबकी पसंद भरे हम आप सबकी खिदमत में है।
1: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये

0: तैयार करता है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजियों में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में तैयार किया जाए और उसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूनी मुल्क तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबिकत रखते हुए लोहाम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा गिरोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मजदूरों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते दिल्ली पुलिस के खुसूसी शोबे के खुसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाका खेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने आला मुशीरों के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ इमकानी समझौते पर तबादला ख्याल किया गया। इस समझौते का मकसद जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना है। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी और आइंदा के लाहे अमल के बारे में सूरत हाल वाजे नहीं है। मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी समझौते के तहत ईरान को आमना हमस फिर से कोई होगी। इस बात का ऐद करना होगा कि कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा और अमरीका को उसके असूबे यूरेनियम का जखीरा हटाने की इजाजत होगी। अफगानिस्तान में अफगान पनाह गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक के उलट जाने से 22 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा लुखबान सूबे में एक शाहरा पर पेश आया। ये ट्रक पाकिस्तान से वापस आ रहा था। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 10 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। इस वाकये में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सैफ आमा के सूबाई डायरेक्टर अमीनुल्लाह शरीफ ने बताया कि मालूम हुआ है कि इस ट्रक सड़क से फिसल कर एक खाई में जा गिरा। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियो सियोंगजी और किम वोहू को 21-19, 21-18 से हराया। इससे पहले ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की मिक्स डबल की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल मैच में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 21 से हार गई। केरल में मानसून से पहले की बारिश होने के तनाजे में भारतीय महकमा मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। म्यांमार के सदर ओ मिन ओंग लाइन भारत के 5 रोजा दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। वो पीर क्रूज वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। अमरीका के वजीर दिफा पेट हिक्स ने भारत को इलाकाई इस्तेहकाम का एक अहम सुतून करार दिया है और अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कलीदी साझेदारी को उजागर किया है। अफगानिस्तान में अफगान पनाह गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक के उलट जाने से 22 अफराद की मौत हो गई और बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत। لسامنا بيشي فرماشي في من المغمور مبني برنامج تعمل إرشاد كي باقي النخمه

चुकी प्रमोद कुमार दुद्दी, पुष्पेंद्र कुमार दुद्दी और राजकुमार दुद्दी गांव फरन से हिसार से, सहारनपुर चंदनगर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, जयमहेश सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया, संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव, विदर्भ आकोट से गांव के श्रीरामपुर के मनोज जेठवा, अष्ट जेठवा भी शामिल हुए हैं और ये फरमाइश हमेर साल की है। रोहिदास चौक बंदरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, कृष्णा घोड़के, वडिंगेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस, पिंकी अरोड़ा और छोटी भैया करजत मुंबई से, अहमद भाई फुलवाले, फुलवाले लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमी अहमद राइन, इमरान अहमद फूलवाले और उनके अमले खाना, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सुपन ताड़े, वसंत राव ने पी एस नहाओ कर, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावकर, इंद्र नावकर, विशाल नावकर, सरलाई सुगना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और अहले खाना, फजलगा कृष्ण विनायक बंडे, मंगला बंडे, शुभम बंडे, ऐसा मीन अब आपको सुनवाते हैं उजाला फिल्म का ये नगमा, मन्ना डे का गाया हुआ, शैलेंद्र नगमानिकार, मौसीकार शंकर जय किशन और फरमाइश हमें इरसाल की है। ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है स्टेट बैंक किशोर कॉलोनी नंगली डेयरी नजफगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक की जानिब से। फरमाइश इस तरह से है, पीली पट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाग्य कुमारी और इनके साथ इनके कुछ और साथी, ग्राम पुरुषपुर मटकली जिला बरेली से शारुनू नंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील मदीदरीसी और इनके साथ और भी इनके दोस्त अहबाब है। ग्रुप रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से एक झाजी अमोल मानकर जी, दुर्गा प्रसाद सैनी जी, जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार सिंगर और अर्पिता जी है, वार्ड नंबर एक पुफाली जिला यवतमाल से, गंजड़वाला उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बिलंगराज नवाजी शेख और इनके साथ इनके कुछ और साथी, कल्पना मदन झा, मयंक मानव, निर्मला अपार्टमेंट कलाड़ वापी गुजरात से ये फरमाइश इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा ये फरमाइश हमें भेजी है शबनम अकरम और इनके दोनों बच्चों ने, ठीक है, मध्य प्रदेश से इम्तियाज इमाम, आतिश ताहिरा परमीर, आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, आतिश रेडियो रिसर्च क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से फरमाइश उन्होंने हमें भेजी है। नई दिल्ली के उत्तम नगर से जॉन सिन्हा बियाटर, सुमन सरिता और ये फरमाइश है हमीदा बानो आशोधरी और सीधा बानो की सहेली रेडियो लिसनर्स क्लब खंडवा से। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नौमान शेख और मोहम्मद सुलेमान शेख, ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज अब्बासी भी शामिल हुए हैं और ये फरमाइश हमें भेजी है विजय पाटिल, पद्माबाई पाटिल, चिरंजीव न्यानेश्वर पाटिल, जालना महाराष्ट्र से ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से सुरेंद्र

हैं तो संधू, प्रीतिशा संधु भी शामिल हुए हैं प्रोग्राम में, और इनके अलावा और भी कुछ नाम शामिल करते हैं, फिर आप सबकी पसंद कराऊंगा आप सब तक। खान मंजिलगंज उडवारा से आगा खान आगा, बेगम नीता खान बेगम, अमल खान, रमेश नाचानी नाचानी मिथिल नाचानी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से आगा कई बार जग राव से सुनील पाठक, सुनील पाठक कमल पाठक गफिया मल्होत्रा, और ये फरमाइश हमें इस साल की है कोल सिटी बरका खाना से अफजाल ताज शाहीन सुल्ताना सोनू तस्मीम, और इनके साथ और भी इनके कुछ

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियाँ और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
2: सभी को मेरा नमस्कार
1: जी। आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ

0: है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
1: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये छठा सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक है उनमें क्या प्रगति हुई है उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है। हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं तो पूर्व टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्टनेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, सभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक समस्या रहती है उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है। 41% से बढ़कर वो 60.2% हुआ। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ है, PM जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
0: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
1: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं। और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे। अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए NCDs हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं।
0: और सभी आयु वर्ग,
1: मुझे खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत PMJ आ गया
0: जी,
1: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन्स ऑथराइज हुए हैं। और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
0: जी।
1: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात करें तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे PM जनमन, जो हमारे

0: ओनली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है, क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो सीएचसी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन आधार मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
0: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, उसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है, जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 1-44-16, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है। और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है, उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके एनएचएम के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे एमएमआर कम करने की बात हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा यूविन पोर्टल है, तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है, तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए, तो ये रिमाइंडर भी जाता है। वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल से, एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है, तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाहें कि मरीज तो एक है, उसको 3 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है, वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है, तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे

0: करते, तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है। तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो एनपीएमसीडी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस पीएमजे के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं जिसमें योगा, जुम्बा ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयास है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में, आशा बहने उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इकोसिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सामीन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लेकिन सामीन, अब पेश है प्रोग्राम बज़्म मौसीकी। इस प्रोग्राम के तहत कुमुद दीवान का गाया राग भैरवी विलंबित में जत

0: नवीन कुमुद दीवान का गाया राग भैरवी में आप विलंबित जत ताल सुन रहे थे। इसके साथ ही बजरी मौसीकी का प्रोग्राम खत्म होता है। आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 12 बजे ये समय अब पेश है आलमी खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। अमरीका के वजीर दिफा पेट हेक्स ने भारत को इलाकाई इस्तेहकाम का एक अहम सुतून करार दिया है और अमरीका और भारत के बीच बढ़ती कलीदी साझेदारी को उजागर किया है। म्यांमार के सदर ओमिन ओंग लाइन भारत के 5 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। वो फिर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में अफगान पना गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक के उलट जाने से 22 अपराध की मौत हो गई। और बैडमिंटन में सत्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। अमरीका के वजीर दिफा पेट हेक्स ने भारत को इलाकाई इस्तेहकाम का एक अहम सुतून करार दिया है और अमरीका और भारत के दरमियान बढ़ती कलीदी साझेदारी को उजागर किया है। सिंगापुर में शंगरी ला मुज़ाकरात के दूसरे दिन इजारे ख्याल करते जनाब हेक्स ने बहर हिंद के खित्ते में भारत के बढ़ते रोल और दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम बनाने की उसकी कोशिशों की सताइश की। उन्होंने भारत के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तारीफ भी की और इस बात को उजागर

कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वृद्धि है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बहामी इश्तराक को मुस्तकम करने के तहत म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली के खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर है। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी, दूरदर्शन, तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर, इत्तला नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने आला मुशीरों के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ इम्कानी समझौते पर तबादला ख्याल किया गया। इस समझौते का मकसद जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना है। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी और आइंदा के लाहे अमल के बारे में सूरत हाल वाजे नहीं है। मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी समझौते के तहत ईरान को आबनाए हुरमुस फिर से खोलनी होगी। इस बात का ऐलान करना होगा वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा और अमेरिका को उसके अफजूदा यूरेनियम का जखीरा हटाने की इजाजत होगी। अलबत्ता ईरान अपनी इस बात पर कायम कि उसका एटमी प्रोग्राम महज गैर फौजी मकासद के लिए है। जनूबी कैलिफोर्निया की साबिक मेयर एलेना वांग ने खुद को इस बात का कसूरवार गर्दाना है कि चीन की हुकूमत के गैर कानूनी एजेंट के तौर पर काम करती रही हैं। वांग ने इस महीने शुरू में मेयर के ओहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने यह बात भी तस्लीम की कि चीन के हुक्काम की जानी से पीछिंग की हिमायत में मजामीन तैयार करती रही हैं, जिसकी जानकारी अमरीकी सरकार को भी नहीं दी गई, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने लॉस एंजलिस की वफाकी अदालत में अपना जुर्म तस्लीम किया और उन्हें 25,000 अमरीकी डॉलर के एवज 6 अक्टूबर तक जमानत दे दी गई, जबकि उन्हें सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली पुलिस के खुजीज शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा गिरोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते दिल्ली पुलिस के खुसूस शोबे के खुसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में आम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि मुलजिम सड़क पर अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे से गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान में अफगान पनाह गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक के उलट जाने से 22 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा लुकमान सूबे में एक शाहरा पर पेश आया। ये ट्रक पाकिस्तान से वापस आ रहा था। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 10 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। इस वाकये में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सेहत आम्मा के सूबाई डायरेक्टर अमीनुल्लाह शरीफ ने बताया कि मालूम हुआ है कि यह ट्रक सड़क से फिसल कर एक खाई में जा गिरा। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहाम का दौरा किया, जो पायदार आम मादानियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजियों में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और उसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूनी मुल्क तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबिकत रखते हुए लोहाम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स ABHA का तारीखी संगे मील हासिल किया गया है।
صحت و خاندانی بہبود کی وزارت نے کہا کہ ایک مضبوط مشترکہ طریقہ کار اور شہریوں پر مرکوز ڈیجیٹل صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک

बांसुरी पर बजाई भैरवी धुन आप सुन रहे थे प्रकाश एन सक्सेना से क्लासिक मौसिकी प्रोग्राम के तहत। आइए अब मांद धुन सुनते हैं बांसुरी पर बजाई हुई

स्वामी वासु पर विजयामान धुन आप सुन रहे थे प्रकाश एंड सक्सेना से। इसके साथ ही क्लासिकी मौसमी का ये प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात, जिसमें मैंने पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब्द।

शामिल मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म का दोगाना आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आइए अब तरत महमूद और आशा भोसले को सुनते हैं, फिल्म है लाडला।

बात खुल जाता है शर्माने से, शर्माने से, शर्माने से।

लेडी ऑफ द लेक फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और गीता दत्त की आवाजों में। सामिन आइए अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं सुरेंद्र और शमशाद बेगम का गाया हुआ अनोखी अदा फिल्म का ये दुकाना।

0: जरूरी है। म्यांमार के सदर ओ मिन ऑनलाइन भारत के 5 रोज दौरे के तहत कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। खारजी उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल कल म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में अर्चना पूजा की। उनके हमरा मुख्तलिफ काबिनी वुजरा सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतह वत भी है। म्यांमार के सदर का अहदा संभालने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खाजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर डॉक्टर शाहिद शक्कर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तकम करने के तहत म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन तरक्की और खुशहाली खाते शराकत दारी की पेशरफ के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ लाइन की मीटिंग के मुंतजर है। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तकम करने खातिर पीर को रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्याल का इजहार करेंगे। यह महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। यह प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। अमरीका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने आला मुशीरों के साथ 2 घंटे तक मीटिंग की, जिसमें ईरान के साथ इम्कानी समझौते पर तबादला ख्याल किया गया। इस समझौते का मकसद जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाना है। ये मीटिंग सिचुएशन रूम में हुई थी और आइंदा के लाहे अमल के बारे में सूरत हाल वाजे नहीं है। मीटिंग से पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने के किसी भी समझौते के तहत ईरान को आबनाए हुरमुस फिर से खोलनी होगी। इस बात का ऐद करना होगा वो कभी एटम हथियार नहीं बनाएगा और अमरीका को उसके अफजूदा यूरेनियम का जखीरा हटाने की इजाजत होगी। अलबत्ता ईरान अपनी इस बात पर कायम के उसका एटमी प्रोग्राम महज गैर फौजी मकासद के लिए है। कैलिफोर्निया की साबिक मेयर एलिन वांग ने खुद को इस बात का कसूरवार गर्दाना कि चीन की हुकूमत के गैरकानूनी एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। वांग ने इस महीने शुरू में मेयर के अहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि चीन के हुक्काम की जानिब से पीछे की हिमायत में मजामीन तैयारी करते रहे हैं, जिसकी जानकारी अमरीकी सरकार को भी नहीं दी गई, जबकि कानून के मुताबिक ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने लॉस एंजलिस की वफाकी अदालत में अपना जुर्म तस्लीम किया और उन्हें 25,000 अमरीकी डॉलर के एवज 6 अक्टूबर तक जमानत दे दी गई, जबकि उन्हें सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराम पेशा गुरु के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में आम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकेखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पर अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे से गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अफगानिस्तान में अफगान पना गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक के उलट जाने से 22 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा लुकमान सूबे में एक शाहरा पर पेश आया। ये ट्रक पाकिस्तान से वापस आ रहा था। हुक्काम ने बताया कि मरने वालों में 10 बच्चे और 5 खवातीन शामिल हैं। इस वाक़े में 35 अफराद जख्मी भी हुए हैं। सेहत आम्मा के सूबाई डायरेक्टर अमीनुल्लाह शरीफ ने बताया कि मालूम हुआ कि यह ट्रक सड़क से फिसल कर एक खाई में जा गिरा। इलेक्ट्रॉनिक और इत्तलाती टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने जुमे को ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार आम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजियों में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में तैयार किया जाए और उसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूनी मुल्क तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबिकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA का तारीखी संग मील हासिल किया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि एक मजबूत मुश्तरक तरीकाकार और शहरी पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि सन 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा ABHA अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आंध्र प्रदेश गुजरात केरला माहे लक्षद्वीप और मुल्क के शुमाल मशरक हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड विदर्भ खत्ते में आज आंधी और झालावारी के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तर प्रदेश बिहार मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खत्ते में भी आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों की डबल्स की भारतीय जोड़ी कल सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जुनूबी कोरिया की जोड़ी सिउ सोंग जी और किम वू हू को 21-19 21-18 से हराया। इससे पहले ध्रुव कपिला और तनिषा कास्टेल की मिस डबल की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21 21-17 21 से हार गई। खास खबरें एक बार फिर। अमरीका के वजीर दिफा पेट शेक्स ने भारत को इलाकाई इस्तेहकाम का एक अहम सुकून करार दिया है। अमरीका और भारत के दरमियान बढ़ती कलीदी साझेदारी को उजागर किया। म्यांमार के सदर ऊ मिन ऑंग भारत के 5 रोजा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। पीर के रोज वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में अफगान पनाह गुजीनों को ले जाने वाले एक ट्रक को लट जाने से 22 अफराद की मौत हो गई। और बैडमिंटन में सत्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सावन शब का एक विजय चाहता है उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की यह नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
3: सन 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश

0: दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्त धारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the designation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution of AICC General Secretary, K.C. Venugopal made the official announcement. Later briefing the media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should need a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Min Aung Hlaing to India in his current capacity. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Mr. Hlaing. In a social media post, Dr. Jayashankar appreciated the Myanmar president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, the AIR News website and the News on AIR mobile app.

आगे तो श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म चांदनी रात से शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं गीत फिल्म अमर से लता मंगेशकर की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहां पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा

पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, प्रातः के 4 बजने को है, कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: 2014 से पहले कि केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ओ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देशभर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत

0: भावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

मैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत प्रस्तुति पन्नू कन्नम राम चंद्रन की है। मृदंगम पर संगत की है खुजल मन्नम और केजी रामा कृष्ण ने राग मध्यवती आदि ताल में।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 31 मई 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:59 होने को है, इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: श्रोताओं, प्रातः के 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: वाहे गुरु चतयावे, चतयावन का सदका सर्व सुख होवा, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रत से आर आए तो देख तेग फतेह, दर्द की पैज पंत की जीत श्री साहेब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे, सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाहा दान प्रोसा दान, दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान, चौंकिया झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, बोले जी वाहे गुरु बोले जे, सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो, श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नु वसोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार तैसे बासंबार दादान, खालसा जी नु बगसो हे नवानिया दे मान, नतानिया दे तान नियोटिया दी ओट, तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान, सच खंड श्री हर मंदर साहेब जी विखे, तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर, सबद चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास, पुल चुक मुआफ करनी सच्चे पात सहजियो, जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करह प्रसाद भेटा कीता गया है, तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास, सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरों करो, सिखी सिदक भरोसा नाम दान बगसना, सोभ भावनाव पूरिया करनिया आप जी दे हजूर, कराह प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवा, परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बगसो, सुख होवा नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

0: फल फिके फल बग बगे कम नया बेपत मिटत जीवी नानका गुण जिंगिया तत सब को नेवे आपको पर को नेवे ना कोए तर्द राजू तो लिए नेवे सुगोरा होए अपराधी दूना नेवे जोहंता बिरगा है शीस नवाए क्या थी जाए जार दे कुछ होते जाहे
1: मल्ला बैला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिर पूजस बगल सम

अरे वारो वाह झूठे झूठा मुखो से नितिन को होए खुआर सूचे ना के बन जमना तो सूचे सही नानका जिन मन वस्या सोए।